0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के अश्वनी मास की छठी तिथि के तदनुसार 28 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:53 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 5:57 हो चुके हैं। आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें। ठीक 6 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 6:02 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुप्रभात।

सात बजे एक बार फिर से आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। 7:02 का समय रहेगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का। आठ बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 8:02 पर जारी रहेगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। ठीक 9:00 एक बार फिर से सुन सकेंगे आप हिंदी में समाचार। 9:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने। ठीक 10:00 का समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का। 10:02 पर होगा प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक।

11:02 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स। ठीक 12 बजे होंगे अंग्रेजी में समाचार। 12:02 पर आप सुन सकेंगे वेस्टर्न म्यूजिक। ये थी जानकारी आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। अब से कुछ ही देर बाद लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार।

नमस्कार, 6 बज चुके हैं। पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में आज पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समय सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल से मंगलवार तक कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। फेयरफोर्ड में रॉयल एयरफोर्स बेस के पास आतंकवादी हमले की साजिश रचने के शक में कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद लंदन स्थित अमरीकी दूतावास ने ब्रिटेन में अमरीकी नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। एशियाई खेलों में भारत ने महिला लंबी कूद, पुरुष ऊंची कूद और दोनों स्क्वाश एकल स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डीकैथलॉन महिला स्पीचलेस और 200 मीटर स्पर्धाओं में कांस्य पदक हासिल किए। और एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। ये थे आकाशवाणी पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

हे लिसनर्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत सभी का कार्यक्रम सुप्रभात ज्योति के साथ। और आज की सुबह फिर से हमें मौका दे रही है फिर से एक नई शुरुआत करने का, और एक जो खाली पन्ना है ना अपनी ज़िंदगी का, उसको अपनी मर्जी से भरने का। मंडे की प्यारी सी सुबह है ज्योति के साथ, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6। 6:07 हो चुके हैं और दिल तो हमारा बहुत कुछ चाहता है, मगर हाँ, आज के दिन ने हमें फिर से मौका दिया है कि हम नई सोच के साथ, नए एक्शंस के साथ, कल की पिछली गलतियों को भुलाने के साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं, कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तभी ज़िंदगी जो है ना वो ऐसी होगी कि हम चाहते हैं, हमारा दिल चाहेगा कि ज़िंदगी यूं ही चलती रहे। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो सुप्रभात ज्योति के साथ, एंजॉय करते हैं और खूबसूरत सा गाना, और फिर देखते हैं कि आज के दिन को थोड़ा सा और खूबसूरत, थोड़ा सा और खुशनुमा कैसे बना सकते हैं।

0: लगता है।
1: बिल्कुल, हम सबका दिल यही चाहता है कि हमारे जो दिन है वो हमेशा अच्छे रहें, हम हमेशा खुश रहें, हम जो फैसले लें उसका आउटकम बिल्कुल हमारी मर्जी का आए और कभी भी कुछ गलत ना हो। मगर अगर लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होगा ना, तो अच्छे का मज़ा आना बंद हो जाएगा। जैसे रात के बाद दिन आता है और दुख के बाद सुख आता है, तभी उसकी हमें इंपॉर्टेंस पता लगती है। तो ज़िंदगी, जी हाँ, आज की ज़िंदगी, आज की मॉर्निंग हर सुबह हमें एक नई शुरुआत करने का एक मौका देती है। कल क्या हुआ था, कहाँ गलती हुई थी, किसने गलती की, हमने की, किसने हमारा साथ छोड़ दिया, ये सब अपनी अपनी जगह है। लेकिन आज का दिन एक खाली पन्ने की तरह है, एक साफ सा खुला सा आसमान आपके पास है और उसमें आप कितना भी ऊंचा उड़ सकते हैं। और ये जो खाली पन्ना है ना आपकी ज़िंदगी का, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि नई शुरुआत के लिए पूरी ज़िंदगी बदलनी पड़े, कभी कभी बस एक नया फैसला, एक नई सोच और एक छोटा सा कदम ही काफ़ी होता है। जी हाँ, छोटे से कदमों से ही बड़े बड़े नतीजे सामने आते हैं।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

थोड़ी सी मर्जी उसको अपनी करने देते हैं, मगर अपने दिमाग को हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो बतानी है। और आज की ज़िंदगी भी हमें बहुत कुछ कह रही है। वो कह रही है कि मैंने तुम्हारे लिए फिर से एक नया दरवाज़ा खोला है, बस तुम्हें उसे ढूंढना है। एक रास्ता अगर बंद हो जाए तो ABCD बहुत सारे दरवाजे हैं जिन्हें आप खोल सकते हैं। तो ज़िंदगी रोज़ दरवाज़ा खोल कर कहती है कि जो बीत गया उसे जाने दो, आज फिर से शुरू करो, शायद इस बार तुम्हारी कहानी तुम्हारी पसंद की हो जाए, नतीजे तुम्हारी पसंद के हो जाए। और हम सब एक स्टोरी ही तो हैं एट दी एंड ऑफ द लाइफ, हम सब एक स्टोरी हैं, तो क्यों ना एक अच्छी कहानी, एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छी एक्सपीरियंस हमें हम बने। और ये आपको मैं एक म्यूज़िकल ब्रेक के बाद एक बहुत प्यारी सी स्टोरी भी सुनाऊंगी, जिसमें हमें एक सीख मिलेगी। और हमारे लिसनर्स जो अलग अलग जगहों से, दूर दूर से, हर जगह से हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत अच्छी अच्छी हमें बातें लिख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। देहरादून से आलोक पवार और मिनी लिखते हैं कि सकारात्मक सोच रखो और कल क्या हुआ भूल जाओ, आज को जियो, और यही स्वस्थ और मानसिक जीवन का गुड़ मंत्र है। बिल्कुल सही बात है। और ये भी एक मंत्र है कि मतलब इन सब चीज़ों को करने से हमें जो मेंटल पीस है हमारी वो बनी रहती है, नहीं तो हम परेशान रहेंगे। तो ज़िंदगी ने हमें आज फिर से एक नया मौका दिया है। और आपको पता है ना कि हमारी ज़िंदगी फूलों से भरी हुई है, लाइफ इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स। हम अपना बुके खुद बना सकते हैं, उसमें हमें क्या फूल रखना है, कौन सा फूल रखना है, कौन से कलर का रखना है, वो सब हम डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि हमारे डिसीजंस, हमारे एक्शंस, हमारी नए थॉट्स हम किसी भी टाइम क्रिएट कर सकते हैं। और उनको करने के बाद हम आसमान में उड़ेंगे, मतलब हमारी लाइफ जो है वो हैप्पी होगी और हम हमेशा खुश रहेंगे। और आपको पता है, एक खुश मन और एक खुश दिमाग बहुत अच्छे फैसले लेता है और बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करता है। तो बस आप यूं ही अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते रहें, सकारात्मक बनाते रहें और सुप्रभात सुनते रहें ज्योति के साथ एक और बहुत खूबसूरत सा गाना आपके और हमारे बीच में, जिसे आप भी इंजॉय कीजिए और मैं भी करती हूँ।

आज का दिन हमें क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इसे हम अच्छा बना रहे हैं अपनी अच्छी सोच से. हम मान रहे हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा है और उसे हम आज आने वाले पूरे टाइम में बहुत खूबसूरत और बेहतर और अच्छा बनाएंगे. और एक बहुत प्यारा सा मैसेज हमारे साथ जुड़ा है कि मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है. कोई क्योंकि वहाँ पर हम जो कुछ भी बोएंगे ना वो बढ़ता ज़रूर है. जहाँ आप अपना फोकस करेंगे वो चीज़ बढ़ेगी, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो. तो मन में जिसे जगह देंगे वही बढ़ता जाएगा. इसलिए अपने विचारों और भावनाओं का हमें बहुत सोच समझ कर चुनाव करना चाहिए, अपने एक्शंस का, अपने थॉट्स का, अपने प्लान्स का. और अगर कभी कोई चीज़ काम ना करे तो उसे चेंज कर देना चाहिए. यही तो लाइफ है. लाइफ हमें हमेशा मौका देती है, हर मोमेंट, हर दिन, हर सुबह, कि हम उसको चेंज कर सकते हैं. जब हमें लगे कि कुछ सही नहीं है तो बिल्कुल उसको हम चेंज कर सकते हैं. और जैसे कि इस बहुत प्यारे से गाने में भी हमने एक लाइन सुनी कि जैसा हो दिल चेहरा वैसा लगता है. तो जैसा आपके दिल के अंदर के भाव होंगे ना वो आपके चेहरे पर नजर आएंगे. तो इसीलिए हर किसी के साथ हंसते मुस्कुराते हुए खिले हुए चेहरे के साथ मिलें. और आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिन्हें मैं शामिल करूंगी, मगर जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक प्यारी सी स्टोरी सुनाऊंगी, तो बताती हूँ आपको. एक छोटे से शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मीरा. और बहुत ज़्यादा मेहनती थी और उसके सपने भी बहुत बड़े थे. बड़े बड़े सपने थे इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करती थी. लेकिन कुछ टाइम से ज़िंदगी ना उसकी रुक गई थी. कुछ ऐसा हो रहा था ज़िंदगी में जो उसकी पसंद का नहीं था. एक दिन उसकी नौकरी चली गई. कुछ दिन बाद एक बहुत करीबी दोस्त से भी उसका मनमुटाव हो गया. तो बस मीरा को लगा कि शायद अब मेरे लिए कुछ अच्छा बचा ही नहीं है. वो रोज़ सुबह खिड़की के पास बैठकर चाय पीती थी और सोचती थी कि उसकी जिंदगी कहां गलत हो गई है. एक सुबह उसकी नजर सामने रहने वाले एक बुजुर्ग माली पर पड़ी और वो सूखे हुए पौधे

गड्ढे की मिट्टी खोद रहे थे। तो मीरा ने उनसे पूछा कि बाबा, ये पौधा तो सूख गया है, फिर इसे क्यों संभाल रहे हो? तो माली मुस्कुराए और बोले कि बेटा, पौधा सूखा है, जिंदगी नहीं। और मीरा चुप हो गई और सोचने लग गई। और माली ने कहा, देखो बेटिया, पेड़ की एक टहनी सूख जाए तो पूरा पेड़ नहीं काट देते, उसे हटाकर नई कोपल का इंतजार करते हैं। इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही है। तो बस उस दिन मीरा ने पहली बार अपनी परेशानियों को एक मुसीबत और अंत नहीं समझा, बल्कि एक नई शुरुआत की तरह देखा। और उसने अपनी पुरानी डायरी खोली और उसमें एक वाक्य लिखा। क्या वाक्य लिखा बताऊंगी इस गाने के बाद।

हौसलों की वजह से ही तो बिना पंखों के भी हम आसमान को छू लेते हैं। कमाल की बात है ना कि धरती पर रहकर भी हम आसमान तक पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। और वो कैसे होता है? वो हमारी पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें हमारी सोच बदलने की ज़रूरत है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मीरा की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, उसने क्या समझा ज़िंदगी से, वो हम बात कर रहे थे। तो जैसे ही उसने अपनी डायरी खोली, भागकर पुरानी डायरी खोली और उसमें उसने एक वाक्य लिखा। वो क्या वाक्य था? वो वाक्य था कि जो खत्म हुआ वो मेरी पूरी कहानी नहीं थी, वो सिर्फ एक पार्ट था, वो सिर्फ एक अध्याय था। और अगले दिन उसने एक नया काम सीखना शुरू किया, फिर उसने एक छोटा सा काम मिला और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। और कुछ महीनों के बाद वही मीरा एक दिन फिर से उन माली बाबा के पास गई और बोली कि बाबा, आपका पौधा तो फिर से हरा हो गया है। तो माली बाबा मुस्कुराए और बोले कि बेटा, पौधा तो उसी दिन हरा होना शुरू हो गया था जिस दिन हमने उसे सूखा हुआ मानना बंद कर दिया था। यानी कि हमारी ज़िंदगी में जब कोई परेशानी आती है और कोई हमें लगता है कि बस अब अंत हो गया, हमें इसका कोई सोल्यूशन, इसका निकलेगा ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता है, तो उस टाइम हमें ये समझना होता है कि वो ज़िंदगी का सिर्फ एक पार्ट है और हम उसको बदल सकते हैं, एक नया दरवाज़ा खोल सकते हैं। तो ये नए दरवाजे हमें ही खोलने हैं। तो कई बार जैसा हमें लगता है कि ख़त्म हो गया सब कुछ, लेकिन ज़िंदगी शायद उसी टाइम हमसे ये कह रही होती है कि एक बार फिर कोशिश करो, एक बार फिर उठो, एक बार फिर शुरू करो, क्योंकि नई शुरुआत के लिए नया साल नहीं बस एक नया फैसला और एक नई सोच और नया एक्शन चाहिए होता है। इसी से मुझे याद आया कि नया साल बस कुछ 3 महीनों में आने वाला है और हम फिर से नए रेजोल्यूशंस लेंगे, तो उस वक्त का वेट ना करते हुए आज से ही कुछ नया करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। आप सुन रहे हैं सुप्रभात ज्योति के साथ और सुनते हैं एक और बहुत खूबसूरत सा गाना। बस आप यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहिए।

जी हाँ, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते ज़िंदगी कटती जाएगी, कटेगी नहीं, उसे मज़े से जिएंगे। और आज की दिन, आज की ज़िंदगी में आपके लिए क्या क्या है, एफएम रेनबो आप सारा दिन सुनेंगे और आपके लिए बहुत खास कार्यक्रम होंगे। रेनबो के अलग अलग रंग आपके साथ आएंगे, अपने अलग अंदाज में आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। तो मैं अभी हूँ आपके साथ सुप्रभात में, मगर 7:02 से आपके साथ होंगी रेणु भट्ट लेकर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। एंड ऑफकोर्स 8:02 से मैं फिर रहूँगी आपके साथ उसी सेगमेंट, उसके अगले सेगमेंट के साथ और विद अनदर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद आपके साथ 9 बजे फिर जुड़ेंगी रेणु भट्ट लेकर दिल के तनाने, गाने नए पुराने, और रेनबो पर गानों का सिलसिला, खूबसूरत गानों का सिलसिला चलता रहेगा। और उसके बाद 10:02 से अदिति बिष्ट होंगे आपके साथ लेकर मैचलेस म्यूजिक आर्ट। थोड़ा सा आपका टेस्ट बदलेगा, आप वेस्टर्न म्यूजिक का मजा ले सकेंगे। और उसके बाद 11:02 से रश्मि गुप्ता आपके साथ होंगे लेकर बॉलीवुड ट्रेल्स। तो बस अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपके साथ यूं ही जुड़ती रहेगी। आप सुनते रहें आकाशवाणी रेनबो, मैं हूं आपके साथ ज्योति। फिलहाल 6:50 हुए हैं और कार्यक्रम सुप्रभात चल रहा है। बस कुछ ही समय शेष है, मगर इस खूबसूरत से एक और

वेलकम बैक लिसनर्स, आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम सुप्रभात में बस कुछ मिनट शेष हैं और आपके मैसेजेस हमारे साथ बहुत खूबसूरत से जुड़े हैं। और एक मैसेज है, अपना तजुर्बा बता रही हैं डॉली, हमारे साथ जुड़ी हैं और लिखती हैं कि पहले लगता था कि सब खत्म हो गया, लाइफ जब तक है नया शुरू किया जा सकता है, और अब ऐसी सोच रखती हूँ। बिल्कुल, अपनी सोच भी हम कभी भी बदल सकते हैं। और जो हमारे दो नैना है ना, जो आँखें हैं, इसमें हम कितने भी सपने देख सकते हैं, नए सपने हर रोज़ देख सकते हैं। तो बस एक नई शुरुआत, एक नई सोच की ज़रूरत होती है और ये ज़िंदगी यूं ही खूबसूरत बनी रहेगी। तो बस आपसे यही कहती हूँ चलते चलते कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात पता क्या है और सबसे खूबसूरत सच क्या है, वो ये है कि ज़िंदगी हमें गिराकर ख़त्म नहीं करती है और कभी कभी गिराकर ये सिखाती है कि अगली बार फिर से कैसे उठना है। हर सुबह अपने साथ एक नया मौका लेकर आती है। बीता हुआ कल चाहे कितना मुश्किल रहा हो, आज की कहानी अभी भी हमारे हाथों में है। तो हमारे हाथों में, हमारे आँखों में सब कुछ है और हम कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं। तो बस आज के इस मंडे मॉर्निंग में सुप्रभात में इतना ही और मैं आपसे फिर मिलती हूँ 8:02 से। फिलहाल रेणु आ चुकी हैं जो आपके साथ जुड़ेंगी 7:02 से। इंजॉय करते हैं एक और खूबसूरत सा गाना चलते चलते।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने इसकी पुष्टि की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में आज पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समय सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कल भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते और एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल्स में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। तो ये थे इस घंटे के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं रेनू भट्ट अपने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। और अब आपको सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लग गई होगी ना, दो तीन दिन से थोड़ा मौसम थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। दिन की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो कहीं कहीं पर तो बारिश की बूंदें भी आई हैं और सुबह में ठंडक भी आई है। तो क्या हम सर्दी के और कदम बढ़ा चुके हैं, इस बारे में बोलना थोड़ा जल्दी होगा। लेकिन हाँ, ये जो थोड़ा चेंज ऑफ वेदर है ना, अच्छा तो लगता है, सुहावना वेदर सबको अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा ना प्रिकॉशन लेने वाला हो जाता है। तो आप प्रिकॉशन लेते रहें और आप अपनी सेहत को लेकर भी अलर्ट रहें, कहीं बीमार ना पड़ जाए, क्योंकि सर्दी जुकाम और वायरल बहुत ज़्यादा हो जाता है इस समय पर। तो अपनी प्रिकॉशन के साथ साथ हमारा साथ बने रहें। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, रेणु भट्ट के साथ ये बेहद खूबसूरत ट्रैक सोनू निगम की आवाज़ में आप सभी के लिए।

आपको कहीं भी खोने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इनको जो खोई हुई चीज थी वो गाने के बाद मिल जरूर जाती है। तो हम आपको बता दें कि आज ऐसा क्या कुछ हुआ था जिसने आज के दिन को इतिहास में खास बनाया। आज के दिन कई मायनों में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि हम बात करें पिछले पन्नों की तरफ, अगर हम पलटें इतिहास के पन्ने पलटें, तो 2004 में विश्व बैंक ने भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा था। आज के दिन जयंती है महान स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की, और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की भी, जिनके बारे में हम आगे प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। लेकिन आप हम आप सभी के सामने जिस व्यक्तित्व के बारे में बात साझा करेंगे, उनका आज जन्मदिन है और उनको ढेर सारी जन्मदिन की हम शुभकामनाएं देते हैं। और आज जन्मदिन है अभिनव बिंद्रा का, वो भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज हैं। अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम आयु के खिलाड़ी भी रहे। इन्होंने 11 अगस्त सन 2008 को बीजिंग में आयोजित 29वें ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच डाला था। और ओलंपिक में इंडिविजुअल स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले वे भारत के पहले निशानेबाज बन गए थे। और इस अगर हम गोल्ड की बात करें तो भारत को 28 साल बाद ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला था। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है उस गोल्ड की। और हमारे जो प्लेयर हैं अभिनव बिंद्रा, इनकी इन्होंने भारत के निशानेबाजी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हुआ क्या था, कैसे इनका इंटरेस्ट आया कि ये स्पोर्ट्स में जाएं और यही गेम खेलें। 1996 में उन्होंने अपने परिवार के साथ अटलांटा ओलंपिक देखने गए थे। तब उन्होंने पहली बार शूटिंग रेंज देखी और उन्हें इस गेम ने उन्हें अट्रैक्ट किया और बहुत अट्रैक्शन हुई। और इस बात को उनके परिवार ने एक्सेप्ट किया और खेल के प्रति उन्हें पूरा पूरा सहयोग दिया। और बहुत अच्छे से तरह से सोच समझ कर उन्होंने एयर राइफल प्रतियोगिता को चुना और इसमें वो भाग लेने लगे। और 15 वर्ष की आयु में निशानेबाजी प्रतियोगिता में भी वो आने लगे। और गोल्ड मेडल के बारे में तो हमने आपको बताया, हम ये भी बताएं कि इन्होंने लगातार 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले वो पहले शूटर बने थे जब उन्होंने म्यूनिख लेक के 2001 यूरोपियन राइफल सर्किट चैंपियनशिप में पदक जीते थे। आज इनका जन्मदिन

हैं, हम इन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और हम ये भी बता दें कि गोल्ड तो ये बहुत लेकर आए हैं हमारे देश के लिए, एक बेहतरीन ट्रैक हम लेकर आते हैं। गोल्ड लाने की बात कर रहे हैं लेकिन गोल्ड ये काफी काफी लेकर आए हैं। आप बने रहे हमारे साथ यूं ही आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

28 सितंबर सन 1907 को एक बच्चा पैदा हुआ था लायलपुर पंजाब में। किसे पता था यह बच्चा बड़ा होकर अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा देगा। 23 साल, सिर्फ 23 साल की उम्र में जिसने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया उसका नाम था भगत सिंह। वो डरता नहीं था, डराता था। उसने बम फेंका तो लोगों को मारने के लिए नहीं बल्कि सोई हुई जनता को जगाने के लिए। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, एक सोच थे। वे कहते थे कि मैं चाहता हूं मेरे देश के लोग किताब पढ़ें, सवाल करें और गुलामी की हर जंजीर को तोड़ दें। जेल की अंधेरी कोठरी में भी वो आजाद थे क्योंकि उनके दिल में इनकलाब था। उन्होंने अपनी जवानी, अपना प्यार, अपना सब कुछ इस देश पर लुटा दिया ताकि हम आज खुली हवा में सांस ले सकें। आज उनकी जयंती है और हम उनके बारे में आपको और भी बातें बताना चाहेंगे। शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर सन 1907 को पंजाब के जिला लाहौरपुर में बंगा गांव में, जो उस समय पर पाकिस्तान में था। एक देशभक्त सिख परिवार में उनका जन्म हुआ था जिसका अनुकूल प्रभाव उन पर पड़ा था। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और उनके दोनों चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले मूवमेंट के कारण जेल में बंद थे। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए उनके पिता और चाचा को जेल से रिहा किया गया और इस शुभ घड़ी के अवसर पर भगत सिंह के घर में खुशी और भी ज्यादा बढ़ गई तो उनकी दादी ने उनका नाम रखा भागा वाला, यानी कि अच्छे भाग्य वाला। फिर बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। वे 14 वर्ष की आयु से ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे थे। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में जब पूरे देश में भारत में प्रदर्शन हो रहे थे तो इसी वर्ष 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था और इस कांड का समाचार सुनकर भगत सिंह लाहौर से अमृतसर पहुंचे। देश पर मर मिटने वाले बलिदानियों के प्रति श्रद्धांजलि दी और रक्त से भीगी मिट्टी को उन्होंने एक बोतल में रख लिया जिससे सदैव उन्हें ये याद रहे कि अपने देश और अपने देशवासियों के अपमान का बदला लेना है। इसके बाद समय में आगे बहुत ही गंभीर विचार विमर्श के बाद 8 अप्रैल 1929 का दिन असेंबली में बम फेंकने के लिए तय हुआ था और इस कार्य को करने के लिए भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त निश्चित हुए थे। भगत सिंह और उनके साथियों पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा भी जेल में रहते हुए ही चला था। भागे हुए क्रांतिकारियों में प्रमुख राजगुरु पूना से गिरफ्तार कर लिए गए और अंत में अदालत ने वही फैसला दिया जिसकी पहले से ही उम्मीद थी और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मृत्युदंड की सजा मिली थी। 23 मार्च सन 1931 की रात को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। शहीद आजम है और हम जानते हैं कि हमें इनकी जीवन से बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है और सोच को हमें बरकरार रखना है और अपने देश के प्रति ऐसे ही प्यार रखना है जैसे प्यार हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर था। हम इस महान व्यक्तित्व को, शख्सियत को नमन करते हैं, नतमस्तक होकर नमन करते हैं और अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपसे हम यही कहेंगे कि आप यूं ही हमारे साथ बने रहें।

कहते हैं ईश्वर जब बहुत खुश होता है तो वो किसी किसी के गले में अपना घर बना लेता है। 28 सितंबर 1929 को ऐसा ही हुआ था। एक छोटी सी बच्ची के रूप में ऐसा लगा माँ सरस्वती खुद धरती पर उतर आई। वो बच्ची बड़ी हुई तो माइक के सामने खड़ी हुई और फिर जो हुआ वो 6 दशकों तक रुका नहीं। हम बात कर रहे हैं भारत की भारत रत्न सम्मानित मशहूर पार्श्व गायिका लता मंगेशकर की, जिनकी आज जयंती है। और जैसा हमने आपको बताया कि 6 दशकों से भी ज़्यादा समय उन्होंने संगीत को दिया और संगीत की दुनिया को शुरू से नवाजा। और इन्होंने 20 भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा गाने गाए। और इस आवाज़ ने क्या नहीं किया, उन्होंने सैनिक की शहादत पर देश को रुलाया, उन्होंने प्रेमियों को प्रेम करना सिखाया, उन्होंने भगवान को भी भजन सुनाए। उनकी आवाज़ स्टूडियो की चार दीवारी से बाहर निकलकर हर दिल हर इंसान के दिलों में बस गई। उन्होंने गाने नहीं गाए, उन्होंने पीढ़ियों की यादों को अपनी आवाज़ दी है। और अगर हम कुछ फिल्मों की बात करें, वैसे कुछ फिल्में तो कैसे ही बात करें, कई फिल्में आपके दिमाग में भी जहन में भी तुरंत आ गई होंगी, लेकिन फिर भी हम कुछ अगर फिल्मों के नाम लें तो मदर इंडिया, मुगले आज़म और ना जाने कौन कौन से फिल्म जो आपने वीर ज़ारा और रंग दे बसंती तक सुनी आवाज़। एक बहुत बहुत लंबा दौर उन्होंने अपनी आवाज़ से इस संगीत को दिया। और अगर हम उनके बारे में कुछ बातें आपके साथ साझा करें तो उनके पिता का देहांत तो बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था, उनकी छोटी उम्र में हो गया था। 13 वर्ष की अल्पायु में ही इन पर परिवार की सारी जिम्मेदारियां आ गई थी और इन्हें काम करना पड़ा था। और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उन्होंने 1942 से काम करना शुरू कर दिया। हिंदी और मराठी फिल्म में तकरीबन 8 फिल्मों में उन्होंने काम किया, जैसे पहली मंगला गोर और मांझे बाल, गजा भाव, छिमू कला संसार, बड़ी माँ जीवन यात्रा, छत्रपति शिवाजी और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इनकी मंजिल जो है वो तो संगीत ही थी। और इन्होंने अपना पार्श्व गायन की शुरुआत की 1942 में मराठी फिल्म कीति हसाल से, लेकिन दुर्भाग्यवश इस गीत को हटा दिया गया, काट दिया गया और ये फिल्म में शामिल नहीं हुआ। कहते ना कि सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती, इनको अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो शुरू शुरू में इनको इनकी पतली आवाज़ होने के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था कि और उनकी तुलना की जाती थी उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूर जहां से। लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर इन्हें काम मिला और फिर उनका जो दौर शुरू हुआ वो हम सभी को बताएं। एक गीत है उनका, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है कर याद रे। इस गीत को लोग भूल नहीं सकते और जब इस गीत को सुनते हैं तो जिसकी याद हमें आती है, जिसकी आवाज़ है, जिनकी आवाज़ है, लता जी की आवाज़ है, उनका व्यक्तित्व भी इस गीत से झलकता है। ऐसा लगता है कि ये गीत इन्हीं के लिए बनाया गया है। और चेहरा बदल जाए, नाम गुन जाए, लेकिन आवाज़ कोई नहीं भूलेगा। हम इन्हें नमन करते हैं, इनकी श्रद्धांजलि पर, इनके जयंती पर हम श्रद्धांजलि देते हैं और नमन करते हैं और हमेशा हमेशा ये हमारे दिलों में बसी रहेंगी। इन्हीं की फिल्म रंग दे बसंती से इनका गाया आखिरी गीत हम आप सभी के लिए प्ले कर रहे हैं। आप यूं ही हमारे साथ बने रहे। गुड मॉर्निंग दिल्ली, NCR सुन रहे हैं आप रेणु भट्ट के साथ आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर।

0: सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज हम आपके साथ बातें साझा करेंगे और जानकारी देंगे स्टार्टअप इंडिया की। अजय, भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य है देश में नवाचार, इनोवेशन, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना, यानी कि स्टार्टअप इंडिया। इसे 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और इसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों आया यह अस्तित्व में, वो भी हम आपको बताएंगे। युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहिए, इस उद्देश्य के साथ, मकसद के साथ इसे लॉन्च किया गया था। क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, क्या क्या लाभ हैं, इसके हम आपको बता दें कि स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के जरिए सीड फंड स्कीम और निवेशक नेटवर्क तक पहुंच मिलती है। योग्य स्टार्टअप को शुरुआती वर्षों में इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। नियमों के बोझ को कम करना और सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा भी देता है। पेटेंट आवेदन के लिए फास्ट ट्रैक परीक्षा और शुल्क में भी भारी छूट मिलती है। तो कई तरह के इसके फायदे हैं, आप इसके फायदों को जरूर, इसके बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन लें, इनके पोर्टल पे जाएं startupindia.gov.in पर, और आप जा करके सारी चीज़ें जान सकते हैं। और हम ये भी बताना चाहेंगे यहाँ पर आपको कि इसके लिए कुछ निश्चित एलिजिबिलिटीज़ भी हैं जो आपको पूरी करनी है, कुछ क्राइटीरिया भी रखा हुआ है। जैसे अगर हम एक दो क्राइटेरिया आपके साथ शेयर करें कि बिज़नेस नया होना चाहिए और जो किसी उत्पाद या सेवा में सुधार या फिर नया नवाचार करे, यानी कि इनोवेशन करे, यूनिक होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, और कंपनी का गठन पिछले 10 साल के भीतर भीतर ही होना चाहिए। तो ये कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं जिसके डिटेल में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और बहुत ही, अगर हम इसे ब्रीफ में क्रिस्प करके आपको बताएं, तो अगर आपके पास कोई भी नया आइडिया है तो सरकार कहती है तुम शुरू करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। जब आपका साथ देने के लिए सरकार है तो इस चीज का लाभ लें, फायदा लें, और जो भी आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है, कुछ नया करना चाहते हैं, एक ऐसा बेहतरीन आइडिया आपके दिमाग में पड़ रहा है, तो उसे साकार करें, उसे हकीकत में लेकर आएं, और फिर देखें सबकी चांदी चांदी है, आपकी भी, आपका सपना पूरा होगा और फिर समाज को भी आपसे, आपके द्वारा काफी चीजें मिलेंगी। बेहद खूबसूरत ट्रैक आप सभी के लिए प्ले करूं, ऐसा करते एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं। कमर्शियल ब्रेक के बाद गाने, फिर लौट कर आएंगे, तब ढेर सारी बातें करेंगे।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
4: केले का छिलका सड़क पे, ना भाई ना। चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर, ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, रेणु भट्ट के साथ। और आप हमसे जुड़े हुए, हमें पता चल रहा है आपके ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आपके मैसेजेस का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको स्टार्टअप की जानकारी अच्छी लगी और आप विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं शहीद भगत सिंह को और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से। और इसके साथ साथ डॉली का मैसेज भी हमें आया है दिल्ली से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आपके साथ एक बहुत महान व्यक्तित्व के बारे में बातें साझा करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। हम आपसे बात साझा कर रहे हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की, जो भारत के महान कृषि वैज्ञानिक और आनुवंशिकीविद हैं थे, और इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक के तौर पर जाना जाता है, माना जाता है। इनका आज इनकी पुण्यतिथि है, हम इन्हें नमन करते हैं। और किस वजह से हम इन्हें याद कर रहे हैं वो भी हम आपको बता दें कि 1960 के दशक में भारत गंभीर खाद्य संकट और अकाल से जूझ रहा था। इन्होंने अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बारलोक के साथ मिलकर गेहूं और चावल की उपज, उच्च उपज वाली किस्में विकसित की थी। और इसके साथ साथ मैक्सिको के, जो हमने आपको बताया कि इन नए बीजों और आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग से देश में गेहूं और चावल के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिससे भारत कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। ढेर सारे इन्हें सम्मान और पुरस्कार मिले हैं, और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से तो इन्हें सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 में मरणोपरांत इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। हम इस महान व्यक्तित्व को नमन करते हैं और अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। और गीत के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, क्योंकि शिवेंद्र आ गए हैं स्टूडियो में स्पोर्ट्स पल्स लेकर के, तो आप उनके साथ भी बने रहे। और ठीक 8 बजे ज्योति आनंद दोबारा मिलने आएंगे आपसे, उनके 1 घंटे बाद यानी कि 9 बजे मैं दोबारा मिलने आऊंगी आपसे, और ढेर सारे गीत और ट्रैक्स लेकर आएंगे और जो आपको बहुत पसंद है। आपको जाते जाते ये भी मैं कहना चाहूंगी कि यदि कोई भी फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं, कैसे लगते हैं आपको हमारे प्रोग्राम्स, क्या कहना चाहते हैं, आप मैसेजेस करते, थैंक यू सो वेरी मच आपके मैसेजेस का। लेकिन

आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमें ईमेल करेंगे हमारे ईमेल एड्रेस पे जो है feedback@feedbackfmrainbow@gmail.com पर। आप हमें ईमेल करके बताएं कि आपको हमारे सभी कार्यक्रम कैसे लगते हैं। इसी के साथ मैं रेणु भट्ट लेती हूं आप सभी से इजाजत, और इस बेहद खूबसूरत ट्रैक के साथ जो रेखा भारद्वाज की आवाज़ में थी, मिलने आऊँगी आपसे कुछ समय बाद। गुड बाय, टेक केयर।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
1: भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन।
2: हिस्ट्री मेड इन टैम्परे, हिमा दास हैज डन इट। इंडिया विन बाय 137 रन्स, दे गो 2-1 अप इन द सीरीज।
3: स्पोर्ट्स पल्स।

0: ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, रोम ओलंपिक खेलों को हम कैसे भूल सकते हैं, जहां पर मिल्खा सिंह भारत के लेजेंडरी रनर, उन्होंने, स्वर्गीय मिल्खा सिंह, उन्होंने चौथा स्थान हासिल किया था। और 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में पीटी उषा भी चौथे स्थान पर रही थी। तो एथलेटिक्स में कुछ मेडल ऐसे हैं जो भारत से बड़े करीबी अंतर से ओलंपिक खेलों में छूटे हैं। चूंकि रो ओलंपिक का जिक्र आ गया था तो उसका जिक्र करना ज़रूरी था, मिल्खा सिंह साहब के करिश्मे का या फिर पीटी उषा के करिश्मे का 1984 के। लेकिन एशियाई खेलों में पीटी उषा, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो और इस समय नागोया में मौजूद हैं जापान में, एथलीट्स का उत्साह वर्धन करती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने एशियाई खेलों में एक ही संस्करण में मल्टीपल मेडल्स जीतने का करिश्मा करके दिखाया था। खैर, जापान में टोक्यो में, नागोया में माफ कीजिएगा, जो मुकाबले चल रहे हैं वहां पर भारतीय खिलाड़ी अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रहे हैं मेडल टैली में ऊपर आने का। लेकिन एक इंटरेस्टिंग इनफैक्ट एनालिसिस हम आपके साथ जरूर शेयर करना चाहेंगे। जब पिछले एशियाई खेल हुए थे हांगझू में 2022 में, एक्चुअली 2023 में हुए थे, और उस समय 8 दिन की स्पर्धाओं का जब समापन हुआ था, जैसे कल 8 दिन की स्पर्धाओं का समापन नागोया में हुआ, तब भारत ने 37 पदक जीते थे, 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य। और 4 साल पहले या 3 साल पहले फॉर दैट मैटर, पिछले एशियाई खेलों में 8वां दिन जब समाप्त हुआ था स्पर्धाओं का, तब भारत ने 53 मेडल जीते थे जिसमें 13 स्वर्ण थे, 21 रजत और 19 कांस्य पदक। तो 8वां दिन जो था 2023 में, उसमें भारत पदकों का अर्धशतक पूरा कर चुका था और 13 स्वर्ण पदक थे। लेकिन कल जब स्पर्धाएं समाप्त हुई तब भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल मिलाकर के 37 पदक जीते थे। उस लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा एक स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग टोन आ सकता है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि 3 साल में या 4 साल में हर एक जगह पर बहुत परिवर्तन होता है और खेलों का मैदान उसका अपवाद नहीं है। और जब आप तैयारी करते हैं, अपनी ओर से आप बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन करके जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ तैयारी करके जाते हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि जो बाकी देश हैं वो तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आपकी तैयारी 1, 2, 3, 4 के हिसाब से हो रही है तो उनकी तैयारी हो सकता है 1, 2, 4, 16 के हिसाब से हो रही हो। और बहुत सारे इवेंट में, बहुत सारे स्पोर्ट्स में, यहाँ पर एशियाई खेलों में देखने में मिल रहा है कि भारत ने जिस अंदाज में उम्मीद की थी वो दरअसल उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है भारत का प्रदर्शन। और ऑफ कोर्स कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ सुपरलेटिव परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन शूटिंग में सिर्फ 1 स्वर्ण पदक मिल पाया है। अभी शूटिंग की अगर हम बात करें तो 25 मीटर पिस्टल के मुकाबले इस समय चल रहे हैं जब हम आपसे बात कर रहे हैं। वहां पर मनु भाकर हैं, ईशा सिंह हैं, और आज, कल प्रिसिशन राउंड था और आज रैपिड फायर राउंड है। उसके बाद जब दोनों के पॉइंट जोड़े जाएंगे, यानी प्रिसिशन में 300 अंक लेने का मौका होता है खिलाड़ियों के पास, और रैपिड फायर में भी 300 पॉइंट्स, कुल मिलाकर के 600 पॉइंट के आधार पर इंडिविजुअल जो क्वालिफिकेशन है वो उसका निर्धारण होगा। और इसके बाद चूंकि 3 खिलाड़ी भारतीय टीम में हैं तो उनके टोटल स्कोर को जोड़ा जाएगा और उसे टीम स्वर्ण या रजत या कांस्य पदक का फैसला होगा। इसका परिणाम आना अभी बाकी है, इवेंट अभी चल रहा है नागोया में। इसके अलावा और जो इवेंट चल रहे हैं, आर्चरी का इवेंट चल रहा है, वहां पर भारतीय उपस्थिति बहुत ही सशक्त है और भारतीय खिलाड़ी आगे प्रोग्रेस भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट हमारे पास आया था कंपाउंड में इंडिविजुअल सीरीज में, नगोया के समय के अनुसार 8:15 वो मैच हुआ था, वहाँ पर साहिल राजेश जाधव ने अपने मुकाबले को जीता। उन्होंने मंगोलिया के खिलाड़ी जय म्यांगबो को पराजित किया था 137 के मुकाबले 149 के स्कोर थे, अगले दौर में प्रवेश कर लिया था। उसके अलावा भारत के गणेश मणिरत्नम ने भी कंपाउंड मेंट इंडिविजुअल के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी इंडोनेशिया के रेनाल्डी सोस्टर अंड्रारू को पराजित किया 142 के मुकाबले 144 के स्कोर से, तो काफ़ी नज़दीकी मामला रहा। लेकिन 2 सकारात्मक परिणाम भारत के लिहाज से आज सुबह आए हैं और अन्य बहुत से भारतीय तीरंदाज हैं जो कि बड़े नामचीन तीरंदाज हैं। इनफैक्ट
1: साहिल राजेश का जो मुकाबला है वो अपने ही देश के गणेश से हो रहा है और वो मुकाबला भी अब से कुछ ही देर पहले समाप्त हुआ है और वहां पर साहिल को हार का सामना करना पड़ा है गणेश मणिरत्नम से, जो कि उनके ही देश के खिलाड़ी हैं, यानी भारत के ही खिलाड़ी हैं। तो कई मर्तबा ऐसा होता है इंटरनेशनल मुकाबलों में, जो कि आपकी रैंकिंग होती है, ग्रुपिंग बनती है, उसके हिसाब से हो सकता है कि आप अपने ही देश के खिलाड़ी से खेलें,

0: बैडमिंटन में भी इस बार एशियाई खेलों में हमें ऐसा देखने को मिला था। भारत की चितिका तनिपर्थी भी कंपाउंड विमेन इंडिविजुअल मुकाबलों में अपना मैच खेलती हुई नजर आएंगी कुछ देर के बाद। इसके अलावा एक बहुत ही नामचीन भारत की तीरंदाज हैं ज्योति सुरेखा वेनम, वो कंपाउंड विमेन इंडिविजुअल में खेलती हुई नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर के अभी काफ़ी चैलेंजेस हैं भारतीय खिलाड़ियों के पास। कल का दिन लेकिन ये कह सकते हैं कि खास तौर पर अगर हम स्क्वाश के कंटेक्स्ट में बात करें तो उम्मीद थी जिस अंदाज में अनहद सिंह ने खेल का प्रदर्शन किया था, जिस अंदाज में अभय सिंह ने पाकिस्तान के अपने प्रतिद्वंदी को 3-0 से हराया था, लेकिन संयोग की बात है कि अनहद और अभय सिंह दोनों का ही मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से हुआ। और आज की तारीख में साथियों इंटरनेशनल स्क्वाश में भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मलेशिया एक ऐसा देश है, एक और देश है इजिप्ट, ये दो देश ऐसे हैं जहां से बड़े बेहतरीन खिलाड़ी स्क्वाश में उभर करके सामने आ रहे हैं और सर्किट पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अनहद और अभय इन दोनों ही को मलेशिया के अपने अपोनेंट्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। और इनफैक्ट अनहद का तो मुकाबला बहुत ही वन साइडेड सा रहा, जिस अंदाज में उन्होंने सेमीफाइनल जीता था जब वो दो मैच पॉइंट इन्होंने बचाए थे, इनफैक्ट दो गेम बॉल जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद उन्होंने वापसी की थी, अगले दोनों गेम जीत करके उन्होंने फाइनल में प्रवेश किया था। और स्वर्ण पदक की बड़ी उम्मीदें थी, अनहद जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हैं, बहुत ही शानदार उनका सर्किट पर लगातार प्रदर्शन रहा है, लेकिन संयोग की बात है कि उनको रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा, जहां शायद डेफिनेट एक स्वर्ण पदक की उम्मीद भारतीय खेल प्रेमी कर रहे थे। स्क्वाश में वैसे टीम मुकाबले भी शुरू हो गए हैं, उसमें क्या कुछ होने वाला है जरूर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अनहद सिंह का रिएक्शन सुन लेते हैं कि सिल्वर मेडल हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया किस तरीके से व्यक्त की।
1: I'm very happy. I mean, not very happy. I'm happy with my match yesterday. I'm happy that, you know, I got a silver medal. But, you know, today was quite disappointing not getting to go over the line and get the gold. I mean, my opponent played pretty well today and I don't think I played my best. But, I mean, there's going to be a lot more opportunities for me to come back to the Asian Games and represent India at the highest stage.
0: जी हाँ, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में लगातार रिप्रेजेंट कर रही हैं अनहद सिंह, और अभी टीम के मुकाबलों का भी आगाज हो रहा है। आज ही स्क्वाश में टीम चैंपियनशिप के लिए भारत चीन से खेलेगा पुरुष वर्ग में ग्रुप ए में। महिला वर्ग में भारत अभी चीन से खेल रहा है नगोया में, भारत और चीन की महिला टीमों के बीच स्क्वाश टीम चैंपियनशिप में मुकाबला हो रहा है। वहां पर तन्वी खन्ना अपना मैच हार गई है, भारत 0-1 से पिछड़ रहा था। उसके बाद भारत आज जापान से खेलेगा महिला वर्ग में। और टेनिस में सुमित नागल भारतीय चुनौती को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, कोरिया के होंग सियान चौन से खेलेंगे। रुतुजा भोसले और अंकिता रैना डबल्स में पहले दौर का मैच खेलेंगी। काफी कुछ है अभी, एथलेटिक्स में भी बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जिनके आज फाइनल्स होने बाकी हैं, शूटिंग में है, बैडमिंटन में इनफैक्ट इस साल कह सकते हैं कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट रहा। टीम चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल मिला भारतीय टीम को, लेकिन 12 साल बाद ऐसा हुआ एशियाई खेलों के इतिहास में कि कोई इंडिविजुअल मेडल भारत को नहीं मिल पाया। तो फिलहाल एथलेटिक्स में तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने सिल्वर मेडल जीता, मैराथन में 44 साल के बाद भारत को मेडल हासिल हुआ, शूटिंग में सुरुचि और कमलजीत एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो ऑफकोर्स ये कहा जा सकता है, इनफैक्ट अगर स्क्वाश के पंडवों से बात करें तो जोशना चिनप्पा और सेंथिल कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। जोशना चिनप्पा 7वां एशियाई खेल खेल रही हैं, 40 साल की हैं, 6 मेडल थे उनके पास, इनफैक्ट ये 6ठा मेडल था जो इस बार उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता सेंथिल के साथ मिक्स डबल्स में। तो बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी कुछ हमें सोच विचार करने के लिए भी है कि क्या कुछ आगे करना बाकी है। एशियाई खेलों की गाथा चलती रहेगी, आकाशवाणी पर आप लगातार अपडेट्स के माध्यम से, स्पेशल प्रोग्राम्स के माध्यम से उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। अगले सप्ताह स्पोर्ट्स पल्स में जब हम आपसे मिलेंगे तब एशियाई खेलों का संपूर्ण विवरण आपके सामने रखेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्दी से आते हैं, अन्य खेलों की ओर चलेंगे। हाँ।
2: इस समय आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत स्पोर्ट्स पल्स में। तो खेलों के बारे में हम बात कर रहे थे, चेस ओलंपियाड चल रहा था साथियों समरकंद में, और वहां पर भारतीय टीम, आपको याद है कि पिछली बार दोनों वर्गों में यानी ओपन कैटेगरी में भी भारत ने स्वर्ण जीता था और महिला वर्ग में भी भारत ने स्वर्ण जीता था, लेकिन समरकंद में 46वें चेस ओलंपियाड में रविवार को 2 मेडल भारत ने अपने नाम किए, ओपन में सिल्वर मेडल और महिला टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रही। ओपन में वर्ल्ड चेस चैंपियन डी कुकेश

0: को हंगरी के ग्लेब डुडेन के खिलाफ हार मिली। वहीं टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे उज्बेकिस्तान को ओपन में गोल्ड मेडल हासिल हुआ। चीन ने महिला वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। कल एक और मेजर स्पोर्टिंग इवेंट था। क्रिकेट ऐसा खेल है जो हम सभी जानते हैं कि सबकी दिलचस्पी का सबब बनता है। तो भारत और वेस्टइंडीज की टीमों के बीच तीन वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल तिरुवनंतपुरम में खेला गया। 8 विकेट से भारत ने जीत दर्ज की। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी की, 50 ओवर में 7 विकेट पर 295 रन बनाए। जवाब में भारत ने 41.4 ओवर में 8 विकेट पर 300 रन बना करके मैच में जीत हासिल की और 1-0 की बढ़त बना ली। भारत की जीत के हीरो रहे विराट कोहली, कप्तान शुभमन गिल। विराट कोहली ने 139 रन की पारी खेली। वनडे में 55वां शतक, इंटरनेशनल क्रिकेट में 86वां शतक, वनडे में सबसे तेज 15,000 रन, 303 पारियों में कारनामा। सचिन को पीछे छोड़ा। सचिन ने 2007 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 377 पारियों में 15,000 रन पूरे किए थे। शुभमन गिल ने वनडे करियर का 10वां शतक लगाया, 110 रन की पारी खेली और कप्तानी पारी खेलने के बाद जीत को शब्द देते हुए शुभमन गिल।
1: Honestly, when I got out, I thought, should I finish the game? Would have been nice to be there in the end. But yes, very satisfying inning for me. We would want an eighth batting option, someone who can contribute at least 25-30 runs. Many times we had been in good positions at 250 for five, and then we weren't able to get scores that we wanted. So number eight becomes a crucial position for us.
0: जी हाँ, ये एक ऐसा तथ्य है जिसकी ओर शायद कुछ विचार करने की आवश्यकता होगी, लेकिन फिलहाल तो भारतीय टीम जीत के रथ पर सवार है। 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। हाई स्कोरिंग मैच रहा कल और वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप क्या कह रहे थे, उनकी टीम ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, कहाँ कमी रह गई, आइए सुने शाई होप को।
2: Definitely put more runs on the board, you know, when you're coming on surfaces at such as good surfaces here in India, you got to make sure you put a good score on the board, maybe 60 to 80 runs short to be fair. Then, you know, when you're bowling, trying to defend a target as low as 290, I think it was that we got. You got to make sure everything goes right for you.
0: तो शाही होप कह रहे थे कि 60 या 80 रन कम रह गए जीत हासिल करने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वनडे क्रिकेट का जो कलेवर और चरित्र है कितना बदल चुका है कि आज की तारीख में जब आप 50 ओवर का मुकाबला खेलने जाते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि आपके बल्लेबाज अगर एक फ्लैट पिच है तो कम से कम 380 रन बनाएंगे, जैसा शाई होप ने कहा। कल के मैच में भारतीय टीम की बल्लेबाजी बेहतरीन रही, गेंदबाजी भी शानदार रही। कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और प्रसिद्ध कृष्णा को 2 और नीतीश रेड्डी को 1 विकेट मिला। कुलदीप यादव को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन कुलदीप मैन ऑफ द मैच मिलने के बाद क्या कह रहे थे, आइए सुने।
3: I actually love the batting from Shubman and Virat Bhai. It was special inning from them, and sometimes it feels awkward to receive the Man of the Match award. You know, seeing the way Virat Bhai batted was outstanding inning.
0: तो कुलदीप कह रहे थे कि विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और कई बार मैन ऑफ द मैच रिसीव करना बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, लेकिन सच्चाई यही कि कल के मैच में मैन ऑफ द मैच वही थे। और बर्थडे का जिक्र कर लेते हैं, अभिनव बिंद्रा आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। अभिजीत गुप्ता चेस खिलाड़ी, उनका आज बर्थडे है 22 सितंबर को। इनफैक्ट 29 सितंबर को सर सेबेस्टियन कुक का बर्थडे होता है। 30 सितंबर को दीपा मलिक, भारत की पैरा एथलीट, अपना बर्थडे मनाती है। मार्टिन गप्टिल, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर, अपना बर्थडे मनाते हैं। मार्टिना हिंगिस, स्विट्जरलैंड की टेनिस प्लेयर, फॉर्मर प्लेयर, अपना बर्थडे मनाती हैं। 2 अक्टूबर को लवलीना बोरगोइन का बर्थडे है जो एशियाई खेलों में मौजूद हैं, मेडल हंट में शामिल हैं। आप सभी को मुबारकबाद देते हैं। स्पोर्ट्स पल्स में समय हो रहा है समाप्त, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। आप एंजॉय करिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।
4: स्पोर्ट्स पल्स।
5: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।

नमस्कार, 8 बज चुके हैं। पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने इसकी पुष्टि की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार

से अब तक आंधी और बारिश से 56 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में आज पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समय सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। राष्ट्र आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के अंतर्गत काबुल के सरकारी अस्पताल के लिए जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा सामग्री की एक खेप भेजी है। पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कल तिरुवनंतपुरम में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते और एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। ये थे आकाशवाणी FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6। इस रेबीज अवेयरनेस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कॉर्निंग इंडिया। हेलो लिसनर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। 8:54 हो चुके हैं और आज बहुत ही खास दिन है। आज बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिन है, 28 सितंबर यानी कि विश्व रेबीज दिवस। हर साल 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे यानी कि विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रेबीज के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इससे बचाव के उपायों के बारे में जानकारी देना है। तो बस आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। और भी गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी बातें होंगी, इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए, साथ ही साथ खूबसूरत गाने भी। तो शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गाने के साथ।

0: बच्चों को एक इम्पोर्टेंट रूल सिखा दें, डॉग या कोई जानवर काट ले या स्क्रैच कर दे तो छुपाना नहीं,
1: तुरंत घाव को साबुन और चलते पानी से 15 मिनट तक वॉश करो और बिना डिले नियरेस्ट हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर जाओ। रेबीज वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है।
0: बाइट या स्क्रैच छुपाओ नहीं, वॉश करो, हॉस्पिटल जाओ। कॉर्निंग इंडिया द्वारा जनहित में जारी।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: पेट या कोई स्ट्रीट डॉग काट ले या

0: स्क्रैच कर दे, घबराना नहीं, बस दो काम तुरंत करो।
1: पहला, घाव को साबुन या चलते पानी से 15 मिनट तक धोएं। दूसरा, बिना डिले नियरेस्ट हॉस्पिटल जाओ और रेबीज वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स कंप्लीट करो।
0: बाइट हो या स्क्रैच, वॉश करो, हॉस्पिटल जाओ। कॉर्निंग इंडिया द्वारा जनहित में जारी।
2: तो सुना आपने कि अगर आपको कोई स्ट्रीट डॉग या फिर आपका पेट ही किसी भी वजह से अगर आपको स्क्रैच कर देता है या बाइट कर देता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हम तब नहीं घबराते हैं जब हमारे पास सटीक जानकारी होती है। तो आज का दिन बहुत खास है, 28 सितंबर, क्योंकि आज है विश्व रेबीज दिवस। और आज का दिन इसीलिए मनाया जाता है, इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोगों के बीच में इसकी जागरूकता को बढ़ाना और इसके जो भी बचाव के तरीके हैं, जो भी उपाय हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, उन तक पहुँचाना। तो हम बात कर हैं, जिसका नाम सुनते ही काफी लोग डर भी जाते हैं, सीरियस भी हो जाते हैं, यानी कि रेबीज। एक छोटा सा डॉग बाइट या फिर एक इनोसेंट सा दिखने वाला कोई भी स्क्रैच आप को लगता है, आप सोचते हैं कि अरे कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा ही तो है, ठीक हो जाएगा। लेकिन रेबीज के मामले में थोड़ा सा भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको क्लिनिकल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं तो रेबीज फेटल हो जाता है, यानी कि जानलेवा हो जाता है और फिर जान भी जा सकती है। मगर अच्छी बात यह है कि यह प्रिवेंटेबल है। तो आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। साथ ही साथ आपको मौसम की जानकारी भी दूंगी, क्योंकि फिलहाल मेरे यहां तो मौसम बहुत अच्छा है। तो एक और गाना सुनते हैं, खूबसूरत सा, मौसम के जितना प्यारा है, और उसके बाद मैं आपसे और बातचीत करूंगी इसी चीज के बारे में।

0: बच्चों को एक इम्पोर्टेंट रूल सिखा दें, डॉग या कोई जानवर काट ले या स्क्रैच कर दे तो छुपाना नहीं,
1: तुरंत घाव को साबुन और चलते पानी से 15 मिनट तक वॉश करो और बिना डिले नियरेस्ट हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर जाओ। रेबीज वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है।
0: बाइट या स्क्रैच छुपाओ नहीं, वॉश करो, हॉस्पिटल जाओ। कॉर्निंग इंडिया द्वारा जनहित में जारी।
2: बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है जिसके बारे में सबको अवेयरनेस होनी चाहिए, और हमें ऐसा लगता है कि हमें तो सब कुछ पता है और हम रूल्स बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहते हैं, मगर यहीं पर हम गलत होते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पता होती हैं और निरंतर हमें उसके बारे में पढ़ते रहना चाहिए, जानते रहना चाहिए। तो आज मेरी यही कोशिश है कि आपको मैं रेबीज़ के बारे में हर वो जानकारी दूँ जिससे कि अगर कभी फ्यूचर में ऐसी कोई बात हो जाती है, ऐसा इवेंट हो जाता है, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो जैसे ने कहा कि रेबीज इज प्रिवेंटेबल, यानी कि अगर अवेयरनेस है और टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाता है और वैक्सीनेशन आप ले लेते हैं, तो ये तीनों चीज़ें आपके और आपके परिवार की जान बचाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और रूल्स तो हमें वैसे अच्छे नहीं लगते हैं, अक्सर हम रूल्स तोड़ते हैं, मगर ये कुछ रूल्स हैं जिनको आपको बाय हार्ट याद कर देना है और समझदारी से इनका उपयोग करना है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं इन रूल्स के बारे में। तो सबसे पहला रूल क्या है, वो ये है कि जो बाइट है ना, वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, जैसे आपको किसी पेट ने अगर काट लिया है, तो वो जो भी घाव है वो आपको कितना भी छोटा लगे उसको आप सीरियस

0: ले लीजिए, एक्शन को छोटा मत रखिए। सबसे पहले आप उस जख्म को, उस वुंड को आपको तुरंत साबुन और बहते हुए पानी से कम, जी हाँ, 15 मिनट तक धोना है। पूरे 15 मिनट आपको उस साबुन और पानी से उसे धोना है, और फिर आपको मेडिकल फैसिलिटी पर जाकर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनसे आपको दिखाना है, असेस करवाना है, और वो जो भी आपको सजेस्ट करते हैं ना, प्लीज़ आप उसे फॉलो कीजिए, और इसका पूरा ट्रीटमेंट होता है, आपको उसको पूरा करना है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर, मैं हूँ ज्योति आपके साथ, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर के अपडेट्स आपके लिए हैं। बस आप यूँ ही बने रहे हमारे साथ FM रेनबो 102.6 पर।
1: पेट या कोई स्ट्रीट डॉग काट ले या स्क्रैच कर दे, घबराना नहीं, बस दो काम तुरंत करो।
2: पहला, घाव को साबुन या चलते पानी से 15 मिनट तक धोएं। दूसरा, बिना डिले नियरेस्ट हॉस्पिटल जाओ और रेबीज वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स कंप्लीट करो।
1: बाइट हो या स्क्रैच, वॉश करो, हॉस्पिटल जाओ। कॉर्निंग इंडिया द्वारा जनहित में जारी।

0: बच्चों को एक इम्पोर्टेंट रूल सिखा दें, डॉग या कोई जानवर काट ले या स्क्रैच कर दे तो छुपाना नहीं,
1: तुरंत घाव को साबुन और चलते पानी से 15 मिनट तक वॉश करो और बिना डिले नियरेस्ट हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर जाओ। रेबीज वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है।
0: बाइट या स्क्रैच छुपाओ नहीं, वॉश करो, हॉस्पिटल जाओ। कॉर्निंग इंडिया द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
4: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
6: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
7: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: पेट या कोई स्ट्रीट डॉग काट ले या स्क्रैच कर दे, घबराना नहीं, बस दो काम तुरंत करो।
1: पहला, घाव को साबुन या चलते पानी से 15 मिनट तक धोएं। दूसरा, बिना डिले नियरेस्ट हॉस्पिटल जाओ और रेबीज वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स कंप्लीट करो।
0: बाइट हो या स्क्रैच, वॉश करो, हॉस्पिटल जाओ। कॉर्निंग इंडिया द्वारा जनहित में जारी।
9: वेलकम बैक लिसनर्स, आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर। और मैंने सोचा थोड़ी मौसम की बात कर ली जाए। मैं एक्चुअली इंतज़ार कर रही थी कि बारिश की बूंदें पड़ जाएं और फिर मैं आपसे बात करूं मगर बाहर का मौसम देखा मैंने तो बादल भी हैं, फिर थोड़ी सी धूप आ जाती है, फिर हवाएं तो चल ही रही हैं, बस बारिश का इंतज़ार है। मगर अगर आज मौसम विभाग के अनुमान की बात माने तो बारिश की कोई खास चेतावनी या अनुमान नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और आपको याद है ना कि पिछले दो दिनों में बारिश हो रही है, मौसम फिर से नहीं ठंडा हो गया है और वो जितनी गर्मी लग रही थी ना उससे राहत मिल गई है। और आज का टेम्परेचर मिनिमम जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम जा सकता है 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में। फिलहाल जो भी है मौसम बदल रहा है और अच्छा वक्त आ रहा है, आगे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, हम सब इंजॉय करेंगे। और लाइफ को यूँ इंजॉय करते करते बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिनके बारे में हमें अक्सर जानते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। तो ही सुनाने और बताने के लिए मैं यहाँ पर हूँ आपके साथ। और आज हम बात कर रहे हैं रेबीज की, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है और बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। और वैसे मैंने देखा है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, शायद थोड़े बड़े या पुराने ज़माने के, जिनको अपने घरेलू नुस्खों पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है और कुछ भी हो जाए वो कहीं भी प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प के लिए नहीं जाते हैं। मगर रेबीज के मामले में आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, आप इसके भरोसे, घरेलू नुस्खों के भरोसे आप बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डॉग ने बाइट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रैच है हल्का सा, तो क्या रेबीज का रिस्क नहीं है? तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, बिल्कुल रिस्क हो सकता है। रेबीज वायरस जो है वो इन्फेक्टेड एनिमल की सलाइवा के जरिए बाइट, स्क्रैचेस या फिर जो ब्रोकन स्किन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स के कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट हो सकता है। इसीलिए स्क्रैच को छोटा मत समझिए, मतलब अगर वो छोटा भी है तो भी वो उतना ही सीरियस है और उसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो जैसा मैंने कहा, उसको वॉश कीजिए, उसको क्लीन कीजिए और मेडिकल एडवाइस ज़रूर सीख कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि आपका जो पेट है वो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है, आपको हेल्दी दिख रहा है, फिर भी एक्सपोजर होने पर मेडिकल प्रोफेशनल से एडवाइस लेना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपके पेट की सारी वैक्सीनेशन कंप्लीट है और फिर भी उसने बाइट कर दिया है या उसके दांतों से स्क्रैच आ गया है, तो भी आपको मेडिकल प्रोफेशनल से एडवाइस लेनी ज़रूरी है। ये मत समझिएगा कि वैक्सीनेटेड है तो हमें रेबीज का रिस्क नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं और भी ज़रूरी बातें करेंगे गुड मॉर्निंग डेली NCR में। फिलहाल जैसे मैंने कहा कि मौसम बहुत अच्छा है और कभी धूप है, कभी हवा चल रही है, कभी बादल आ जाते हैं, खट्टा मीठा सा मौसम है। इंजॉय करते हैं खूबसूरत सा गाना श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

एब्सोल्युटली, मौसम में यही वाला फील है जो आपने फील किया है, तो जो आप फील करते हैं ना आपको वैसा ही लगता है सब कुछ. वैसे मौसम बहुत अच्छा है और जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कि रेबीज के बारे में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मुझे लगता है कि बड़ों को तो इसकी जानकारी, मतलब बड़े सुन लेते हैं, जान लेते हैं, मगर बच्चे कहीं ना इतने सीरियस नहीं होते हैं और उनको पेट से बहुत ज़्यादा प्यार भी होता है, पेट से बहुत खेलते भी हैं. इनफैक्ट कुछ बच्चे तो स्ट्रीट डॉग्स के साथ भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं. तो मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह से खेलते तो हैं, मगर अगर कोई स्क्रैच आ जाए या कुछ

0: ज़ख्म हो जाए तो वो भूल जाते हैं अपनी मस्ती में और पेरेंट्स को नहीं बताते हैं। तो पेरेंट्स, आपके लिए एक ज़रूरी बात है कि अपने बच्चों को अवेयर कीजिए और आज ही उनसे पास बिठाकर उनसे पूछिए कि अगर कभी उनको डॉग बाइट कर ले या उसका दांत लग जाए और स्क्रैच आ जाए तो तुम क्या करोगे। तो बच्चों से ये सवाल अगर आप करेंगे ना, तो पहले तो उनके जवाब सुनिएगा कि वो क्या कहते हैं, क्या उन्हें पता है, क्या वो अवेयर हैं, उनको इन्फॉर्मेशन है। तो उससे आपको पता लग जाएगा उनके जवाब से कि उनको कितनी इसके बारे में जानकारी है और वो कितने स्मार्ट हैं। वैसे तो आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन है, मगर फिर भी आपका ये कर्तव्य है बड़े होने के नाते कि आप उनसे सवाल पूछें। तो अगर आप उनको बिठाकर पूछेंगे ना कि देखो ऐसा हो जाए तो ऐसा करना ऐसा करना, वो इतने ध्यान से नहीं सुनेंगे। तो इसलिए उनसे ना सवाल पूछना और फिर उनका जवाब जो आए ना उसके बाद उन्हें करेक्ट करना कि हाँ या तो आपने बिल्कुल सही कहा, आपको कहाँ से पता लगा, उन्हें अप्रिशिएट करना। और अगर उन्होंने गलत जवाब दिया तो उन्हें इस जो प्रॉब्लम है, जो ये बीमारी है रेबीज़ है, उसके बारे में पूरी जानकारी देना, इसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं और इसके हम कैसे बचाव कर सकते हैं, जितनी जल्दी हमें ट्रीटमेंट मिले, जितनी जल्दी उसे हम पानी से धोएं, साबुन से धोएं 15 मिनट तक, जी हाँ। तो ये सारी बातें बच्चों को आप बताइए, क्योंकि जो अवेयरनेस है ना वो घर से ही शुरू होती है।
1: पेट या कोई स्ट्रीट डॉग काट ले या स्क्रैच कर दे, घबराना नहीं, बस दो काम तुरंत करो।
2: पहला, घाव को साबुन या चलते पानी से 15 मिनट तक धोएं। दूसरा, बिना डिले नियरेस्ट हॉस्पिटल जाओ और रेबीज वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स कंप्लीट करो।
1: बाइट हो या स्क्रैच, वॉश करो, हॉस्पिटल जाओ। कॉर्निंग इंडिया द्वारा जनहित में जारी।
0: और आप जानते हैं जैसे हमें एक चीज़ एक बार में याद नहीं होती है या फिर हम भूल जाते हैं कुछ टाइम के बाद, इसी तरह से बच्चों का भी हाल है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा बिजी हैं, इतने ऑक्यूपाइड हैं, इतनी मस्ती और खेल में बिजी रहते हैं कि इसलिए उनसे ये सवाल और ये जानकारी उन तक बार बार पहुँचाइएगा, उनसे बार बार इस बारे में बात कीजिएगा और उनको बताइएगा कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें और फिर हॉस्पिटल जाके मेडिकल जो एडवाइस है या ट्रीटमेंट है उसको सीख करें और उनको भी सारी चीज़ें याद करवा दें कि 15 मिनट जो ये नंबर है इसे याद रखना है, 15 मिनट तक अपने घाव को आपको धोना है साबुन से अच्छी तरह से और उसके बाद प्रॉपर वैक्सीनेशन और जैसे भी आपके डॉक्टर आपको कहें वैसा करना है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर ज्योति के साथ और अभी समय हुआ है 8:38 बाय द स्टूडियो क्लॉक। और भी बहुत सारी काम की जानकारी आपके लिए यहाँ पर आपको मिलती रहेगी गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में।
1: बच्चों को एक इम्पोर्टेंट रूल सिखा दें, डॉग या कोई जानवर काट ले या स्क्रैच कर दे तो छुपाना नहीं,
2: तुरंत घाव को साबुन और चलते पानी से 15 मिनट तक वॉश करो और बिना डिले नियरेस्ट हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर जाओ। रेबीज वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है।
1: बाइट या स्क्रैच, छुपाओ नहीं, वॉश करो, हॉस्पिटल जाओ। कॉर्निंग इंडिया द्वारा जनहित में जारी।

0: एब्सोल्युटली सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सारी काम की जानकारी यहाँ मिलेगी। हम हैं यहाँ पर आपके लिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन और सारी अपडेट्स देने के लिए। और जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं रेबीज के बारे में, और जानकारी दूंगी आपको उसके बारे में, मगर उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे दिल्ली NCR में, नोएडा की बात कर रही हूँ, वहाँ पर सिटी बस सेवा के रूप में जो चल रही है ना ई बसें, उनकी संख्या जो है वो बढ़ने वाली है। और 25 बसों के लिए मांग की गई थी, मगर परिवहन निगम ने फिलहाल 15 बसें जल्द उपलब्ध कराने की जानकारी दे दी है। और 15 अक्टूबर से पहले पहले इनका संचालन भी शुरू हो जाएगा। सहूलियत आपको मिल जाएगी, ज़्यादा बसेस और ज़्यादा आसानी। और इससे पहले 50 ई बसें ऑलरेडी चल रही हैं, तो उनको मिलाकर 15 और 50 दोनों को मिलाकर 65 बसें आपको मिलेंगी। ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि डेंगू के जितने भी केसेस होते हैं, जो पॉजिटिव केसेस हैं, उनकी आपको जानकारी देनी होगी। डेंगू और जितने भी और इस तरह के संचारी रोग होते हैं, उनकी रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अस्पतालों में, पैथोलॉजी सेंटर्स में और स्थानीय निकायों में समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ अस्पतालों में और जो सेंटर्स हैं, पैथोलॉजी सेंटर्स, वहाँ पर अगर डेंगू का पॉजिटिव केस सामने आता है तो उसकी जो सूचना है वो स्वास्थ्य विभाग को देना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने से, बताने से, हम उसकी रोकथाम में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं, प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अवेयरनेस हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी जानकारी हमारे पास होगी, जितनी इन्फॉर्मेशन होगी, उतने ही हम सेफ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और मेरा आपसे एक सवाल है जो अभी आपसे मैं पूछती हूँ।
1: बच्चों को एक इम्पोर्टेंट रूल सिखा दें, डॉग या कोई जानवर काट ले या स्क्रैच कर दे तो छुपाना नहीं,
2: तुरंत घाव को साबुन और चलते पानी से 15 मिनट तक वॉश करो, और बिना डिले नियरेस्ट हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर जाओ। रेबीज वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है।
1: बाइट या स्क्रैच छुपाओ नहीं, वॉश करो, हॉस्पिटल जाओ। कॉर्निंग इंडिया द्वारा जनहित में जारी।
0: हम बड़े ना अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो बड़े हैं, हमको सब कुछ पता है, हमको सब कुछ याद रहता है, और कोई प्रॉब्लम आ जाए हम उसका सलूशन ये चुटकियों में दे सकते हैं। ऐसा मैंने अपने घर में भी देखा है कि हमारे बड़े कहते हैं कि अरे हमें सिखाओगे, हम तो बड़े हैं। पर एक सवाल अपने आप से

0: नहीं किया गया तो ये फेटल होती है, जानलेवा होती है। सुनते रहे आकाशवाणी रेनबो, मैं हूँ आपके साथ ज्योति।
1: पेट या कोई स्ट्रीट डॉग काट ले या स्क्रैच कर दे, घबराना नहीं, बस दो काम तुरंत करो।
2: पहला, घाव को साबुन या चलते पानी से 15 मिनट तक धोएं। दूसरा, बिना डिले नियरेस्ट हॉस्पिटल जाओ और रेबीज वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स कंप्लीट करो।
1: बाइट हो या स्क्रैच, वॉश करो, हॉस्पिटल जाओ। कॉर्निंग इंडिया द्वारा जनहित में जारी।

0: बच्चों को एक इम्पोर्टेंट रूल सिखा दें, डॉग या कोई जानवर काट ले या स्क्रैच कर दे तो छुपाना नहीं,
1: तुरंत घाव को साबुन और चलते पानी से 15 मिनट तक वॉश करो और बिना डिले नियरेस्ट हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर जाओ। रेबीज वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है।
0: बाइट या स्क्रैच छुपाओ नहीं, वॉश करो, हॉस्पिटल जाओ। कॉर्निंग इंडिया द्वारा जनहित में जारी।
2: गुड मॉर्निंग, दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप ज्योति के साथ। और एक लिसनर का मैसेज हमारे पास आया है और उन्होंने वही बात बोली कि बच्चे जो है ना वो डर के मारे बताते ही नहीं हैं कि उनको कोई स्क्रैच लग गया है या किसी भी पेट ने काट लिया है। और एक और बात कि हम पेट में हमेशा समझते हैं डॉग, मगर हाँ कैट के काटने से भी ऐसा हो सकता है। तो बिल्कुल बच्चों को इतना अपना फ्रेंड बना लीजिए कि वो आपसे कुछ ना छुपाएं। और अगर आप उसको अपने बच्चों को इस रेबीज की जो इसकी सीरियसनेस है और कितना फेटल है अगर वो बता देंगे ना, तो बच्चों का माइंड ऑलरेडी अलर्ट हो जाएगा और जैसे ही कुछ ऐसा होगा वो सबसे पहले आके आपको बताएंगे। तो वो रिस्क तो ख़त्म के बच्चे भूल जाते हैं या बताते नहीं हैं डर के मारे, तो वो हम पॉइंट्स को एकदम रूल आउट कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में और बाजारों में और कॉलेजेस के पास पिंक बूथ को एक्टिव करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती शुरू कर दी है। और आपको अब पिंक दिल्ली पुलिस जो है वो पिंक फोर्स आपको नजर आएगी स्कूल्स, मार्केट, मेट्रो स्टेशन में। और ये तो आपकी हेल्प करेंगे ही, मगर इसके साथ साथ आपको अपनी खुद की सुरक्षा करनी है। और कुछ ऐसी बातें हैं इंपॉर्टेंट जो एक महिला होने के नाते आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि सुनसान इलाके में ना जाएं और अंधेरा होने के बाद बहुत देर तक बाहर ना रुकें और ऐसी बहुत सारे। और अपने साथ आप सेफ्टी मेजर्स भी रख सकते हैं क्योंकि ज़रूरी काम है और बदलता ज़माना है। तो हम भी बाहर निकलते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो डर कर तो घर नहीं बैठ सकते, मगर हाँ कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग अपने साथ आप चीज़ें रख सकते हैं, कुछ अटैक करने वाली चीज़ें रख सकते हैं, कुछ स्प्रे रख सकते हैं और सेल्फ फ्रेंड्स तो आप सीख ही सकते हैं। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आप सुन रहे हैं, मैं ज्योति आपके साथ। और 8:54 हो चुके हैं और आपसे जुड़ती हूँ फिर बस कुछ ही देर में।

0: गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप ज्योति के साथ और 8:58 हो चुके हैं। रेनू आ चुकी हैं स्टूडियो में और लेकर दिल के तराने गाने नए पुराने, मगर चलते चलते फिर से रिवाइज कर लेते हैं जैसे हम स्कूल में एग्जाम्स के टाइम से पहले रिवाइज करते हैं ना। तो रेबीज़ के बारे में सबसे पहले अवेयर हो जाइए, रेबीज़ बहुत फेटल है और ये फैल सकता है एक छोटे से बाइट से या फिर स्क्रैच से जो कि डॉग और कैट से हो सकता है। नंबर दो, बाइट या स्क्रैच को कभी भी कैजुअली मत लें, बहुत सीरियस लें। नंबर तीन, जो घाव है उसको तुरंत आपको पानी से और साबुन से धोना है 15 मिनट तक। नंबर चार, जल्द से जल्द हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मेडिकल असेसमेंट करवाएं। और नंबर पाँच, जो भी आपको वैक्सीनेशन रेबीज की रेकमेंड की जाती है और जो ट्रीटमेंट आपको रेकमेंड किया जाता है उसमें आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, उसको आपको जल्द से जल्द करना है। तो बस आज के लिए इतना ही गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे फिर इन्हीं एयरवेज पर, तब तक बाय बाय, टेक केयर।
1: पेट या कोई स्ट्रीट डॉग काट ले या स्क्रैच कर दे, घबराना नहीं, बस दो काम तुरंत करो।
2: पहला, घाव को साबुन या चलते पानी से 15 मिनट तक धोएं। दूसरा, बिना डिले नियरेस्ट हॉस्पिटल जाओ और रेबीज वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स कंप्लीट करो।
1: बाइट हो या स्क्रैच, वॉश करो, हॉस्पिटल जाओ। कॉर्निंग इंडिया द्वारा जनहित में जारी।
0: इस रेबीज अवेयरनेस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कॉर्निंग इंडिया।

नमस्कार, पेश है अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने इसकी पुष्टि की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से अब तक आंधी और बारिश से 56 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में आज पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समय सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2000 से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है।

इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। राष्ट्र आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती पर भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सुश्री लता जी ने अपने दिव्य गायन प्रतिभा से दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के अंतर्गत काबुल के सरकारी अस्पताल के लिए जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा सामग्री की एक खेप भेजी है। पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कल तिरुवनंतपुरम में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की एक श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते और एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। तो ये थे इस घंटे के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं रेणु भट्ट, दिल के तराने गाने नए पुराने में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारे ऐसे नगमे, ऐसे डांसिंग बीट्स, नंबर्स जो आपको थिरकने पर मजबूर करते हैं। आप इस समय जहाँ पर भी हैं, अगर आप रास्ते में हैं या फिर आप घर पर हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आपको ज़रूर मजा आएगा ये सभी गाने सुन के। और तीन ऐसे रेट्रो गानों का हम तड़का ज़रूर लगाते हैं जो आपके इस आनंद को और ज़्यादा बढ़ाते। तो बिना किसी देरी के आप सभी के लिए सोना महापात्रा की आवाज़ में बेहद खूबसूरत ट्रैक लेकर आए, प्ले कर दिया। आप इस गाने को एंजॉय करें और जब लौट कर आएंगे तब हम ढेर सारी बातें करेंगे और ढेर सारे गाने भी हम सुनेंगे।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज़ एक अंडा।
9: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
10: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
11: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
10: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
12: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
13: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल, मेरे यानी कि रेणु भट्ट के साथ, और आप सुन रहे हैं दिल के तराने गाने, नए पुराने कहाँ पर। जी हाँ, और इसी तरह आप हमसे बने रहे, हम बस यही चाहते हैं। और आपको हम फटाफट बताना चाहेंगे कि हमसे जुड़ने के कई सारे माध्यम हैं और उन सभी माध्यमों का आप उपयोग करते हैं, उसको आप यूज़ करते हैं, आपके थ्रू ऑनलाइन और फ्रीक्वेंसीज के थ्रू तो आप हमसे जुड़ते हैं, हम चाहते हैं आप मेल के थ्रू भी हमसे जुड़ें। अपने फीडबैक्स आप हमें बताएं, हमें ज़रूर ज़रूर अपने बहुमूल्य समय से थोड़ा सा समय निकाल के बताएं कि आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, आप उसमें क्या बदलाव चाहते हैं, कोई सजेशन है आपका, आपकी कोई शिकायत है तो उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले हाँ, बेवजह शिकायत ना करें, कोई अगर कंप्लेंट है तो आपकी बातों का बहुत बहुत स्वागत है। feedback@fmrainbow@gmail.com पर आपको मेल करना है, और feedback@fmrainbow@gmail.com पर आप मेल करेंगे, हमें बताएंगे कि आपको हमसे क्या कहना है। एक बहुत खूबसूरत ट्रैक है लता मंगेशकर की आवाज़ में, आप सभी से 1960 में आई फिल्म मुगले आज़म से है ये ट्रैक, और इसके बारे में कुछ बातें मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ, लेकिन पहले ट्रैक सुनते हैं उसके बाद बात करेंगे।

लता जी द्वारा गाया गया ये सबसे महंगा गाना है। मुगले आसम 1960 में आई थी फिल्म और अमर गीत हम इसे कह सकते हैं। और इस गाने से जुड़ी हुई कुछ ख़ास बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये इसकी जो लागत है बहुत बहुत ज़्यादा थी उस समय पर, यानी कि 1960 में इस गाने पर खर्च हुए थे 1 करोड़ रुपये, जो कि पूरी फिल्म के बजट से ज़्यादा था। और इसमें जो सेट लगा था वो बहुत ही शाही सेट था और उसे बनाने में कम से कम 2 साल लग गए थे। और इसके साथ इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इस गीत को लिखा भी बहुत बार था, 105 बार इस गीत को लिखा गया, इसमें बदलाव किए गए, तब जाके ये गीत फाइनल हमारे सामने आया। परफेक्ट बनाने के लिए इसमें ढेर सारी चीज़ें जोड़ी गई और मिटाई भी गई, तब ये कह सकते हैं कि इतने मेहनत और एफर्ट्स के बाद इतना खूबसूरत गीत और इतना आइकॉनिक एपिक मूवी है ये, इतना आइकॉनिक गीत हमारे सामने आया। तो आप सुन रहे दिल के दौरान गाने नए पुराने रेणु भट्ट के साथ, और अभी आप सभी के लिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में बेहद खूबसूरत ट्रैक है। ट्रैफिक से जुड़ी हुई कोई भी बात आप हमसे कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो 9868107070 पर आप मैसेज करके बता सकते हैं।

अगर आप नोएडा रोड पर हैं तो आप डेफिनेटली ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, और अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पर हैं तो भी वहाँ पर आपको ट्रैफिक मिल रहा है। और इसके बाद अगर हम और जगह की बात करें तो मेहरौली बदरपुर रोड पर भी आपको हल्का ट्रैफिक मिल रहा होगा। इको पार्क रोड पर भी आपको 9 मिनट का डिले है। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर 13 मिनट का डिले है, और करियप्पा मार्ग पर 8 मिनट का डिले है। और इसके अलावा भी अगर आप कोई भी जगह हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आपके मैसेजेस का बहुत बहुत स्वागत है। व्हाट यू नीड टू डू, आपको हमें व्हाट्सएप करना है 9868107070 पर। आपको हमें व्हाट्सएप करके बताना है दिल्ली की सड़कों का हाल। और इसके बाद ये बेहद खूबसूरत ट्रैक जो हम आपके लिए प्ले कर चुके हैं, सोनू निगम, अलका याग्निक और नरेश की आवाज़ में आप सभी के लिए।

0: अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: सुप्रभात, स्वागत आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताज़ा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं विदुषी वत्स। तो चलिए आज की पहली अपडेट की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। कुराश में भारतीय जुडोका 2018 एशियाई खेलों के सिल्वर मेडलिस्ट पिंकी बलहारा ने कुराश के महिला 78 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की एशियाई चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता लिम गारम को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ ही पिंकी ने भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। यह एशियाई खेलों के इतिहास में कुराश में भारत का तीसरा पदक होगा।
3: Let's talk about the continuing good news streak from this morning, coming in from a second consecutive win for India in the men's volleyball at the Asian Games. So, after opening their Pool C campaign with a straight sets victory over Vietnam yesterday, the Indian team has continued its winning run today, defeating Hong Kong China by 3-0. So, India took the first set 25-22, followed by a 25-19 win in the second, before closing out the match 25-21 in the third. It was another composed performance from the Indian side. Two matches, two wins for India in Pool C. The team's next pool match is against Qatar tomorrow, where we will look forward to maintain our unbeaten start.
2: स्क्वैश की बात कर लेते हैं। जैसा कल दो पदक स्क्वैश से हमें मिला था, महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने चीन को 2-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। निर्णायक मुकाबले में अनुभवी ज्योत्सना चिनप्पा ने चीन की ल्यू जी को लगातार 3 गेम में 12-10, 11-4, 11-6 से शिकस्त दी। इससे पहले दोनों टीमों के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर था। ऐसे में ज्योत्सना चिनप्पा पर निर्णायक मुकाबले में जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने दबाव के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबला

0: अबला अपने नाम किया और भारत को महत्वपूर्ण जीत दिलाई।
1: Let's have a look at the exciting news coming in from surfing, where Kishore Kumar has booked his place in the quarterfinals of the men's shortboard event. Kishore was in action in the round of 16 against China and produced a strong performance, edging past his Chinese opponent 9.76 to 8.80. That victory takes Kishore into the last eight and keeps India's hopes alive in surfing. I have to tell you here that he is now the only Indian surfer remaining in the competition with the quarterfinal stage still to come.
0: शूटिंग से कुछ अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही विदुषी। देखा जाए तो एशियाई खेल 2026 का जो 25 मीटर पिस्टल भारतीय टीम जो टीम इवेंट था उसमें पदक से चूक गई। महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के टीम इवेंट में भारत पांचवें स्थान पर आ और पदक से चूक गया। व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन में ईशा सिंह 580 अंकों के साथ आठवें स्थान पर रही और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, और वो एकमात्र भारतीय रही जिन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने चाइनीज ताइपे की चेंग येन चिंग को इनर 10 के आधार पर 24-22 से पीछे छोड़ा। मनु भाकर 579 अंकों के साथ 11वें स्थान पर रही और फाइनल में जगह नहीं बना सकी। वहीं राही सरनोबत 568 अंकों के साथ 30वें स्थान पर रही। राही की पहली रैपिड सीरीज में एक ऐसी गलती थी जिसका असर पूरी टीम पर पड़ा और टीम इवेंट में भारत से पदक चूक गया। अगर वहीं पर सीरीज जो उनको अंतिम जो निशाना लगाना था वहां पर वो बेहतर करती, यकीनी तौर पर भारत के लिए कुछ अच्छी खबर आती विदुषी।
1: That's how we also talk about some news that we have from women's sepak takraw, where India have gone down to Japan in their latest Group B encounter. So India fought hard in a closely contested match, but Japan came through 2-1. Japan took the opening set 15-11, but India responded strongly in the second, winning it 15-9 to level the match. The deciding third set went right down to the wire, but Japan edged it 15-13 to seal the victory. So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan. But that's not all we have right now. There is some very interesting action coming to you from archery as well, where in the men's compound individual event, Ganesh Maniratnam has booked his place in the quarterfinals, defeating fellow Indian archer Sahil Jadhav in a thrilling pre-quarterfinal encounter. It was a very close contest, with Ganesh edging past Sahil 149-148, winning the all-Indian battle by just 1 point. Now we also look ahead, because there is more action coming in from the women's compound individual event, with Pritika, Chikita and Jyoti Surekha set to begin their round of 32 and round of 16 matches at 9:45.
0: दिन की जब शुरुआत होती हो रही है तो भारतीय जो टीम भारतीय खिलाड़ियों ने जो मेडल जीते उसके बारे में बता देते हैं। भारत ने अब तक 37 पदक जीत लिए हैं एशियन गेम्स में, जिसमें 4 गोल्ड, 16 सिल्वर, 17 कांस्य समेत कुल 37 पदक हैं। अगले एक घंटे में क्या कुछ घटित होता है हम जरूर आपको बताएंगे ठीक 10:30 पर। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे दोस्त विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 के अपडेट सुन रहे थे।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली चैनल पर FM रेनबो और मैं हूँ आपके साथ दिल के तराने गाने नए पुराने में रेणु भट्ट। आपको बता दूँ फटाफट वेदर अपडेट, क्या वेदर रहने की संभावना है आज पूरे दिन। पार्टली सनी है, यानी कि आपको कभी धूप के दर्शन होंगे, कभी आपको आसमान में बादल छाए हुए नज़र आएंगे। आप दो तीन दिन से देख रहे हैं दिल्ली का वेदर काफ़ी बदल रहा है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर बहुत बारिश हो रही है, कहीं कहीं पर बर्फबारी भी हो रही है। अभी जब मैं खिड़की से बाहर नज़र डाल रही तो कभी धूप निकल रही, फिर मैं पलट के देख रही हूँ थोड़ी देर बाद तो एकदम से छाया आ जा रही है। तो ये वेदर आपको देखने को मिलेगा अभी। और अगर हम आज के टेम्परेचर की बात करें तो करंट टेम्परेचर दिल्ली में अभी 26 डिग्री यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस है। मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो चेंज ऑफ वेदर है ना, क्योंकि अब हम थोड़ा थोड़ा ठंड की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, वेदर चेंज हो रहा है, एकदम से ठंड नहीं आएगी। अभी तो हम सितंबर एंड में हैं, पर आपको यहाँ पर प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप प्रिकॉशन लेते रहें, कभी कभी बीच में छुटपुट बूंदाबांदी हो जा रही है और अपने आप को ज़्यादा भिगाए ना, और ध्यान रखें अपने भी और अपने अपनों का भी। और आप सभी के लिए बेहद खूबसूरत ट्रैक महेंद्र कपूर की आवाज़ में, इसे सुनें और एंजॉय करें।

वेल, अब मेरे जाने का समय हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं वो प्रोग्राम जो आप सुन सकते हैं और उसमें आप हमारे एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ रेनबो हेल्पलाइन की, जिसको आप सुन सकते हैं 1:02 पर। रश्मि गुप्ता आपके साथ रहेंगी और आज हम बात करने वाले हैं करियर इन हेरिटेज कंजर्वेशन, प्रिजर्विंग द पास्ट, शेपिंग द फ्यूचर। हमारे एक्सपर्ट रहने वाली हैं स्वप्ना लेडल, आप हिस्टोरियन हैं, ऑथर, क्यूरेटर और हेरिटेज कंजर्वेटर, और इसे आप सुन सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अपनी क्वेरीज, अपनी बातें हमारे एक्सपर्ट से शेयर भी कर सकते हैं। आप उनसे पूछिए जो भी आपके सवाल हैं। और समय याद रखें 1:02 और 3 का समय रहेगा रेडियो डॉक्टर का, जिसमें हमारा आज स्पेशल प्रोग्राम है, स्पेशल ऑन वर्ल्ड रेबीज डे। हमारे एक्सपर्ट रहेंगे डॉक्टर जुगल किशोर, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, सफदरजंग हॉस्पिटल। रविंद्र रहेंगे आपके साथ, अपनी क्वेरीज के साथ, अपनी बातों के साथ आप हमसे जुड़े रहें। और जो भी बातें आपको किस तरह से जुड़ना है वो भी आपको समय समय पर बताया जाता है, प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। और जाने से साथ में आपको बता दूँ वो प्रोग्राम जो आप मेरे जाने के बाद आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर सुन सकते हैं। कुछ ही देर में 10:02 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आर अदिति बिष्ट के साथ, और 11:02 पर आप सुनेंगे बॉलीवुड ट्रेल्स रश्मि गुप्ता के साथ, यानी कि बॉलीवुड के सभी ताजा तरीन हलचल। अदिति दोबारा आएंगे आपसे मिलने प्लेट कूल में 12:02 पर। तो आप ये सभी प्रोग्राम्स और 24/7 हमारे साथ रह सकते हैं और अपनी सारी बातें हमसे शेयर कर सकते हैं। फिलहाल मैं रेणु भट्ट ले लेते हैं आप सभी से इजाज़त। आप बने रहें आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर, क्योंकि एंटरटेनमेंट का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म होने वाला बिल्कुल नहीं है। मैं जा रही हूँ, लेकिन जब मैं दोबारा लौट कर आऊँगी तब तक आपको अपना फीडबैक हमें ज़रूर भेजना है, feedback@fmrainbow.com पर। गुड बाय एंड टेक केयर।

0: You don't want to miss out even on the humming that she does at the end of the song. The more you listen to Lata Mangeshkar's music, the more her voice fascinates you with the way it could just belong to so many different worlds, you know, classical, folk, ghazal, pop. She could move between all of them and make each one sound her absolute forte. And she wasn't defined by any particular decade, as she sang for actresses across generations, from Nargis to Madhubala to much later stars. Well, stay tuned to 102.6 FM Rainbow. We will be celebrating Lata Mangeshkar in the show ahead as well. And we will be back with more of such fantastic music. Stay tuned.
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा
2: स्वस्थ रहने का फंडा रोज खाएं अंडा NECC द्वारा जनहित में जारी
3: केले का छिलका सड़क पे ना भाई ना चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर ना भाई ना चलिए अपने शहर गली मोहल्ले घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी
4: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो
5: मैम मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
6: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है
7: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
8: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है
9: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क
4: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे
10: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
11: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
12: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री

0: Well, that was Foreigner with Waiting for a Girl Like You. And of course, there was no pun intended before that. Okay, time to look outside a little bit at the traffic. What is it like? So if you are in Delhi, there is a slowdown of 5 minutes on Lala Jagat Narayan Marg. And then there is also a 6 minutes delay on Bhagwan Mahavir Marg. Also, there is a very bad traffic jam on Gurgaon Delhi Expressway. Yeah, it is an everyday thing. So it is absolutely bad today as well. And it is out, the traffic jam is there for a very long stretch. In case if you're stuck anywhere in Delhi or outside Delhi and you want to give us a weather update or a traffic update, do let us know on 9868107070. There is very bad traffic on Dwarka Expressway as well, and yes, that is also a place which is a usual culprit for traffic every day. So let us know if you have any other traffic hassles out there. It would be lovely to inform others so that they can avoid those places. And thank you so much to everybody who sends in messages also informing us about that they have reached work or they have just left for work. Thank you so much. That is, yes, we are always very, very appreciative of you sending in your messages. And then there is a message. All right. Thank you so much for giving us updates, Indu. Thank you so much. And thank you so much, Mr. Sumant Sain, for letting us know that the traffic was decent on your drive to work today in Mumbai. Yes, East Freeway. That is where it is. If you have any other traffic update, do let us know on 9868107070. But right now, it's time for the Asian Games 2026 update.
1: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
2: स्वागत है दोस्तों आप सबका आज की इस अपडेट में. एशियन गेम 2026 के जो अब तक के ताज़ा नतीजे हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा. अभी भी खबर आई, भारत ने मेडल पक्का कर लिया. जी हाँ, मुक्केबाजी की बात कर रहा हूँ मैं. मुक्केबाजी में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने शानदार प्रदर्शन किया है. जिस तरह के वो मुक्केबाज है, धाकड़ मुक्केबाज है, उनका वही खेल देखने को मिला. जी हाँ, ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने दमदार प्रदर्शन करते हुए महिला 75 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की स्वेन सेओंग को एकतरफा अंदाज में 5-0 से हरा दिया है. लवलीना ने मुकाबले के तीनों राउंड में अपना दबदबा बनाए रखा. तीनों राउंड में भारतीय मुक्केबाज के पक्ष में 5-0 का फैसला रहा. इस शानदार जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बना ली और भारत के लिए एक पदक और पक्का हो गया है मुक्केबाजी में. अब लवलीना की नजरें फाइनल में जगह बनाने की होगी और पदक का रंग भी बदलना चाहेंगी.
3: And now there is big news from cricket as well, with Team India through to the semi-finals of the Asian Games Men's T20 tournament with a bowl without being bowled at all. India's quarter-final against Afghanistan was abandoned without a toss because of a persistent rain. But here is the crucial part of the story. India's higher ICC T20 ranking became the deciding factor. And under the Asian Games tournament regulations, when a quarter-final is washed out without a result, the higher ranked team advances. So India's superior ranking has sent them through to the semi-finals. India will now wait for the winner of the Sri Lanka versus Nepal quarter-final to determine their semi-final opponent.
2: जी बिल्कुल, भारत क्रिकेट का पावर हाउस और क्रिकेट में भारतीय टीम आगे न बढ़े ऐसा हो नहीं सकता. और अपनी रैंकिंग के आधार पर जिस तरह से भारतीय टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, उम्मीद करेंगे वहां भी शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को क्रिकेट में महिलाओं की तरह पुरुषों में गोल्ड हमें देखने को मिल सकता है. खैर, बात करते हैं यहाँ पर स्क्वैश की, जहाँ पर कोर्ट पर शानदार दमखम दिखाते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने चीन को एकतरफा अंदाज में मात दे दी. जी हाँ, पुरुषों के टीम स्पर्धा के पूल ए के मुकाबले में भारत ने चीन को 3-0 से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया. भारत की ओर से सूरज चंद्र वीर इसके अलावा वीर चोटरानी और वेलकल सेंथिल कुमार ने अपने अपने मुकाबले जीतकर शानदार सफलता दिलाई है, यानी शानदार भारतीय खेमे में जीत दिलाई है. पहले मुकाबले में सूरज चंद्र ने चीन के शौकीन डू को कड़े संघर्ष के बाद 11-4, 11-2, 12-10 से हराया और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई. इसके बाद वीर चोटरानी ने कोर्ट पर अपना दमखम दिखाया, दबदबा बनाए रखा. उन्होंने हाइजोन ली को लगातार 3 गेम

0: Stay tuned, we will be back after a very short break.
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार. सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर.
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना. 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती.

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: Welcome back to Mashless Music Hour on 102.6 FM.

और अब प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से अब तक आंधी और बारिश से 56 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में आज पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समय सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और AIIB निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर के दोहा पहुंच गई हैं। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। राष्ट्र आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी जयंती पर भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सुश्री लता जी ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के अंतर्गत काबुल के सरकारी अस्पताल के लिए जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा सामग्री की एक खेप भेजी है। पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कल तिरुवनंतपुरम में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते।

और एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। तो ये थे अभी तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी होस्ट आरजे रॉकिंग रश्मि। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस की जाती हैं। कुछ आवाज़ें हमारे साथ बचपन से चलती हैं, हमारी मोहब्बत में, हमारी यादों में, कभी विरह में तो कभी मिलन में। और कुछ पीढ़ियां बदल जाने के बाद भी ऐसी ही अपनी लगती हैं। आज 28 सितंबर को हम याद करेंगे एक ऐसी ही आवाज़ को, जिन्होंने ना केवल भारतीय फिल्म संगीत को आवाज़ दी, बल्कि उसे एक ऐसी पहचान दी जो दशकों तक कायम रही। जी हाँ, ये आवाज़ है भारत की स्वर कोकिला, भारत रत्न सम्मानित लता मंगेशकर जी की। आज उनकी जयंती पर AIR FM रेनबो पर खास तौर पर मैं उन्हें याद कर रही हूँ, आपकी दोस्त, आपकी अपनी। जी हाँ, और आज का बॉलीवुड ट्रेल्स पूरी तरह से समर्पित है उसी मखमली आवाज़ को। तो बस रहेगा हमारे साथ, और आज 28 सितंबर को उनके जन्मदिन पर, लता मंगेशकर जी के जन्मदिन पर हम उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के द्वारा। आई होप कि आप जहाँ भी हैं हमारे साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपके लिए रहेगा एक प्यारा सा सवाल भी, जिसके ज़रिए आप भी अपनी श्रद्धांजलि सही जवाब देकर दे सकते हैं लता जी को।

28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मी इस महान आवाज की कहानी शुरू होती है एक छोटी सी बच्ची हेमा के रूप में, जिसने बहुत ही छोटी उम्र में रंगमंच कलाकार और शास्त्रीय गायक पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर से संगीत सीखना शुरू कर दिया था। लेकिन 13 वर्ष की आयु में पिता के निधन से छोटे 4 भाई बहनों की जिम्मेदारी उन पर आ गई और बस यहीं से शुरू हुआ उनका संघर्ष। कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया, गाने गाए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। उस दौर में जब गायिकाओं में शमशाद बेगम, नूरजहां जैसी गायिकाओं ने एक अपना अलग मुकाम बना रखा था, ऐसे में लता जी की आवाज़ में एक अलग सी कशिश थी। पतली सी, मासूम सी आवाज़, लेकिन कुछ अलग हटकर कि 1949 की फिल्म महल में जब उन्हें गीत गाने का मौका मिला और उस गीत के साथ उन्होंने अपनी जो पहचान बनाई वो वाकई यादगार है। हालांकि उससे पहले उन्हें उनका पहला गाना 1942 की मराठी फिल्म में मिला था जिसका नाम था किती हसाल, इसके लिए उन्हें मिला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म जब रिलीज़ की गई उसमें इस गाने को शामिल नहीं किया गया और लोगों तक लता जी की आवाज़ नहीं पहुँची। लेकिन 1949 के महल के गीत आएगा आने वाला, इसने पूरे के पूरे देश में लता जी को एक पहचान दे दी। आइए सुनते हैं इसी गीत को और याद करते हैं लता मंगेशकर के इस पहले गीत को, जो आज भी उतना ही शिद्दत से याद किया जाता है, सुना जाता है, जितना कि उस जमाने में था।

0: आज बॉलीवुड ट्रेल्स में हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं लेट लता मंगेशकर को, जिन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन गीत गाए हर मूड के हर इरा में, और लगभग 8 दशकों तक वो गीत गाते रहे। 1950 से 60 के दशक में उन्होंने हिंदी सिनेमा के लगभग हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, चाहे नौशाद हों और शंकर जयकिशन हों, एसडी बर्मन साहब हों या मदन मोहन जी हों, सलिल चौधरी, जयदेव या फिर रोशन, और उसके बाद आरडी बर्मन। यदि नौशाद के संगीत की बात करें ना, तो उनके संगीत में, उनकी ये लता जी की आवाज़ में शास्त्रीयता और भावनाओं का सुंदर मेल दिया। वहीं शंकर जयकिशन और जयदेव के साथ, एसडी बर्मन के साथ उन्होंने एक से बढ़कर एक यादगार गीत दिए। मदन मोहन जी के साथ काम करते हुए लता जी की आवाज़ को सबसे ज़्यादा शानदार कोलैबोरेशन माना जाता है। ख़ास बात यह है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी कितने नए गायकों के साथ उनके गाए गीतों को लोगों ने सुना, लेकिन उसके बावजूद जो ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल है, है ना। ऐसा ही एक गीत था जो फिल्म वो कौन थी से था। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक, ज़रूर आपको सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस सुनिएगा इस गीत को और बताइएगा कि क्या वाकई आपको भी ये गीत उतना ही पसंद है जितना कि मुझे।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
4: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
3: इम्पॉसिबल
4: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
6: आज फिर लेट हो गए?
7: अरे यार, वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
6: क्यों बैठे थे बाहर?
7: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
6: मुझे पता है, HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ बाहर क्यों बैठे थे। रवि भैया को घर ही ले आते।
7: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों, लता जी ने सिर्फ गीत नहीं गाए बल्कि पर्दे पर वो दिखाई भी दी कुछ फिल्मों में। लेकिन साथ साथ पर्दे पर दिखाई देने वाली जो अभिनेत्रियां थी ना, उनकी आवाज़ को उन्होंने पहचान दी। चाहे मधुबाला हो या मीना कुमारी, नरगिस हो या फिर साधना, शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान, हेमा मालिनी, रेखा और फिर श्रीदेवी, काजोल, माधुरी दीक्षित, कितनी पीढ़ियों की अभिनेत्रियों की आवाज़ बनी लता जी। अनारकली के से लेकर मुगले आजम, गाइड, अभिमान, शोले, डीडीएलजे यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी दर्द, कभी अटखेलियाँ, तो कभी धीर गंभीर आवाज़, तो कभी नादानियों से भरी, शोखियों से भरी, तो कभी माँ, तो कभी बेटी बनकर पहचान दी, आवाज़ दी उन्होंने अपनी अभिनेत्रियों को। और वाकई में लता जी अपनी चिर परिचित आवाज़ में थीं, लेकिन अलग अलग अंदाज में थीं। अब आप कहेंगे अलग अलग अंदाज हैं तो उनके अलग अलग अंदाज का हमें क्यों ना एक ऐसा गीत सुनवाया जाए जो आपको लगे कि हाँ बिल्कुल अनोखी, एक अलग सी आवाज़। और शायद आप में से बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे कि ये उनकी आवाज़ है। किशोर कुमार के साथ ये गीत सुनिए, इन्जॉय कीजिए और वापस आइए एक बार फिर से बॉलीवुड रील्स में, जहाँ पर आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी होस्ट रॉकिंग रश्मि।

जी हाँ, किसी भी मूड का गीत क्यों ना हो, लेकिन लता जी ने एक अलग ही अंदाज में, अपनी अनोखी आवाज में उसे स्मरणीय बना दिया। और लता जी का योगदान न सिर्फ लोकप्रियता तक सीमित नहीं रहा, उन्हें सन 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और उससे पहले 1900

1969 में पद्म भूषण, 1979 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें 3 बार प्रदान किए गए और दुनिया में सबसे ज्यादा गीत गाए जाने वाली कलाकार के रूप में 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया। अब देखिए ना कितनी ही अनोखी आवाज़ थी लता मंगेशकर की। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज के जो हमारा सवाल है उसके लिए मैं आपसे यही पूछूं। तो आज का बॉलीवुड सवाल यही है, यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो जल्दी से लिखकर ये बता दीजिए कि कौन सा वो पहला गीत था जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। पहली बार लता मंगेशकर को मिला पहला राष्ट्रीय पुरस्कार किस गीत के लिए दिया गया था, जल्दी से उसे बता दीजिए। लिखकर भेज दीजिए 9868107070 पर। यदि आपका जवाब बिल्कुल सही होगा तो आप बन जाएंगे हमारे आज के बॉलीवुड सरताज और आपका नाम लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में हमारे मन पर। ठीक है, तो जल्दी से लिखकर भेजिए लता लता जी का वो कौन सा गीत था जिसके लिए उन्होंने पहली बार नेशनल अवार्ड मिला था, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था।

0: और अब वक्त है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट्स का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: Welcome back to the Asian Games live update where the nerves are high and the latest action has kept us right on the edge of our seats. I am Vidushi Watts with Mohammad Shahid Azmi bringing you all the latest twists, turns and medal moments from Asian Games. And what a moment we have to begin with. India has struck silver in shooting and it is Aisha Singh who has done it for us. What a spectacular contest this has been. Shoot off after shoot off, the pressure kept mounting, the margins kept getting finer, but Aisha held her composure and kept her focus right till the very end. A brilliant performance, a brilliant medal, and another moment of pride for the Indian contingent. Shahid, please take us through that incredible contest and Aisha Singh's journey.
3: बिल्कुल विदुषी, बताना चाहूंगा, नफ्स को बिल्कुल दिलों की धड़कन को रोक देने वाला मुकाबला था। असली शूटिंग, जबरदस्त शूटिंग देखने को मिली और ईशा सिंह ने क्या अपने नफ्स पे काबू रखा था। एक वक्त लग रहा था एलिमिनेट हो जाएंगे, एक वक्त लग रहा था तीसरे पर आएंगी और अंततः तक दूसरे स्थान पर रहती। भारत की स्टार निशानेबाज ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया। फाइनल में ईशा सिंह और चीन की शाओ जियू शुआन के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और दोनों बार शूट आउट तक मुकाबला पहुंचा। दूसरे शूट आउट में ईशा आखिरी शॉट नहीं लगा सकी, जिसके बाद चीन की शाओ ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। ईशा ने रजत पदक के साथ भारत की निशानेबाजी के जो पोटली है उसमें एक और पदक डाल दिया। इससे पहले के मुकाबले के बारे में बता दूं, वो भी बेहद रोमांचक मुकाबला था जो दूसरे और तीसरे स्थान के लिए खेला गया। वहां ईशा ने किम हॉन सुंग को 3 शूट आउट के बाद हराया। दूसरे शूट आउट में ईशा 3-2 से आगे थे लेकिन तकनीकी खराबी के कारण मैच रोकना पड़ा। उसके बाद तीसरे शूट आउट में ईशा ने जीत दर्ज करते हुए फाइनल में गोल्ड और सिल्वर के लिए मुकाबले में पहुंची। वहां पर जिस तरह से देखा हमने, बहुत टाइट मुकाबला था, ईशा ने सिल्वर मेडल हासिल किया।
2: What a spectacular display of sport that was, you know, the immense pressure, margins, my God. It was truly a sight of delight. And that wonderful performance in shooting, fresh in our mind, let's also tell you about another medal for India from the Kurash Arena, where Pinky Bulhara secured bronze in the women's under 78 kilogram category. She was in action in the semi-final today against South Korea's Moo Soo-min, and the bout ended 5-0 in the favor of the Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated South Korea's Lim Garam 3-0 in the quarterfinal, booking her place in the semi-finals and securing a medal for India. This is also a significant moment for Indian courage. Pinky's medal is the only India's third ever Asian Games medal in this sport. And it is particularly special for Pinky herself. She won silver at the 2018 Asian Games, while at the 22 ones her campaign ended in the quarterfinals. She has now returned

0: Asian Games podium with another medal. And it is also important to remember that just yesterday, four of our other Indian Kurash athletes saw their campaigns come to an end. So today, Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the Kurash arena.
1: बिल्कुल मुक्केबाजी से भी सुबह अच्छी खबर आई, जैसा कि कल हमने देखा तीन भारतीय मुक्केबाज उन्होंने फाइनल में सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए पदक पक्का कर लिया। हालांकि सेमीफाइनल में वो खिलाड़ी जीतते हैं तो पदक का रंग और अच्छा होगा, लेकिन आज भारत की ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहाइन, जिनसे उम्मीद भी थी कोई शानदार प्रदर्शन करेंगी और अपनी ख्याति के अनुसार उन्होंने शानदार प्रदर्शन भी किया। 5-0 से अपना जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला था वहां पर जो दक्षिण कोरिया की मुक्केबाज थी स्वेन सोइंग को हराकर जीत दर्ज कर ली, उन्होंने एक और पदक पक्का कर लिया। हालांकि जिस तरह से शूटिंग में हमने देखा पदक आया, उसके बाद एक और मेडल आया जैसा विदुषी ने बताया, अब यहां पर मुक्केबाजी से एक और पदक पक्का हो गया। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा, शाम तक मुकाबला पहुंचेगा, एशियन गेम्स के मैच खेले जाएंगे, भारत की और स्थिति मजबूत होती दिखाई देगी।
0: Absolutely, it has been a very interesting morning for the Indian contingent so far. And while we wrap up this update, let's give you a quiet update from tennis as well, where India's women's doubles campaign has came to an end. Rutuja and Ankita, the 8-seeded Indian pair, faced Kazakhstan in the first round. It was a really closely fought contest. India took the opening set 7-5, but Kazakhstan fought back strongly to take the second set 6-3. That meant the match went into a deciding match tiebreaker. And unfortunately for India, Kazakhstan held their nerve to win 10-5. So the final score reads as 7-5, 3-6, 5-10. And for now, keep listening to Akashwani for the latest updates from the Asian Games. This is Vidushi Vats with Mohammad Shahid Azmi, and we will be back with more thrilling action in our next hourly update. Thank you.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे और अब एक बार फिर से आप सभी बॉलीवुड रील्स में अपने होस्ट एंड दोस्त रश्मि के साथ हैं हाजिर और आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं लता मंगेशकर, स्वर कोकिला, भारत रत्न होल्डर, हमारी सभी की फेवरेट प्लेबैक सिंगर को। आज उनका जन्मदिन है और आज के दिन हम उन्हें शुभकामनाएं दिल से नहीं दे सकते, लेकिन उनके गाए गीतों को दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी वो हमारे जहन में, हमारी यादों में, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, हमारे जो दिल की जो कैसेट्स हैं ना, उनमें आज भी उतनी ही शिद्दत के साथ वो विराजमान हैं, सुने जाते हैं, गाए जाते हैं। जब भी मूड ख़राब होता है या हम खुश होते हैं, कोई ना कोई ऐसा गीत गुनगुना देते हैं जो शायद कहीं ना कहीं लता जी का गाया हो। एक ऐसा ही खूबसूरत सा गीत आपको सुनवा रही हूँ, उस गीत सुनिए और उसके बाद उससे जुड़ी कुछ बातें शेयर करेंगी और रहेंगे इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है बॉलीवुड ट्रेल्स।

जी हाँ, ये गीत गाया था लता मंगेशकर के साथ आशा जी ने, आशा भोसले ने। जी हाँ, जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, यदि लता मंगेशकर की बात हो रही है तो उनकी बहन आशा भोसले का जिक्र तो आएगा ही आएगा। और आशा जी ही क्यों, उनके बाकी के जो सिबलिंग्स थे, मीना खाड़ीकर, उषा मंगेशकर जी हो या फिर हृदयनाथ मंगेशकर, ये सभी कहीं ना कहीं संगीत से जुड़े थे। संगीत की एक लिगेसी थी इनका, जो घर था ना, या इनकी जो फैमिली थी, और सभी के साथ लगभग लता जी ने काम किया। हालांकि कहा जाता है कि लता जी और आशा जी का जो जुदा अंदाज होते हुए भी ना, कभी कभी इन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा हो जाती थी, लेकिन सच मानिए वास्तव में दोनों बहनों की एक लंबी पारिवारिक संगीत यात्रा साथ साथ चलती रही। हृदयनाथ मंगेशकर के साथ भी उन्होंने काम किया और उषा जी के साथ भी गीत गाए, लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना था ना, ये था लता जी और आशा जी का एक खास गीत। और इस गीत के साथ साथ ना, मुझे अब एक ऐसे गीत की याद आ रही है जिसकी बात यदि मैं ना करूँ, उसका जिक्र ना करूँ, तो शायद कहीं ना कहीं आप सभी को भी सुनकर लगेगा कि ये रश्मि कैसे भूल सकती है। जी हाँ, एक ऐसा गीत है जिसे आज भी सुनकर देशभक्ति की भावना स्वतः ही जागृत हो जाती है। 1963 में लता जी का गाया, कवि प्रदीप के बोलों से सजा और संगीतकार सी रामचंद्र की धुन में बंधा, ये गीत एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया था इसे लता जी ने, और इस गीत ने लता जी को पहुंचा दिया था। 1962 में भारत चीन युद्ध में शहीद सैनिक भाइयों की स्मृति में गाया गया था ये गीत, जिसमें लता जी की आवाज़ को सिर्फ फिल्म संगीत से आगे बढ़ा कर ना, उन्हें राष्ट्रीय भावनाओं से भी जोड़ दिया था। तो चलिए इस गीत को सुनते हैं और एक बार फिर से वापस आते हैं बॉलीवुड ट्रेल्स में।

जी हाँ, वाकई भारतीय सिनेमा में लता जी का योगदान बेमिसाल था। करीब 8 दशक के अपने फिल्मी करियर में 36 से ज़्यादा भाषाओं में उन्होंने गाने गाए, जिसमें कुछ विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं। कहते हैं स्टूडियो को मंदिर समझती थी लता दीदी, और जब भी कहीं गाने की रिकॉर्डिंग होती थी ना, तो उससे पहले स्टूडियो के बाहर ही चप्पल छोड़ दिया करती थी। कहती थी स्टूडियो मेरा मंदिर है और यहाँ मैं चप्पल लेकर नहीं जा सकती। और तो और अपने गाने भी खुद नहीं सुनती थी। कहती थी यदि एक बार मैं अपने गाने सुनूंगी ना, अपने गाए गाने सुनूंगी, तो खुद ही उसमें गलतियां निकालना शुरू कर दूंगी। ऐसी थी हमारी लता दीदी। और यदि हम बात करें उनके साथ, उन्होंने किनके साथ गीत गाए, बहुत सारे ऐसे कलाकार थे, बहुत सारे ऐसे मेल प्लेबैक सिंगर्स थे जिनके साथ उन्होंने गीत गाए। हालांकि उनमें मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे और बहुत से ऐसे गायक थे जिनके साथ यादगार गीत रिकॉर्ड किए। कहते हैं लता जी ने ना गायन के साथ साथ कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया और फिल्म निर्माण से भी वो जुड़ी रहीं। लेकिन अफसोस, सन 2022 की 6 फरवरी को 92 वर्ष की उम्र में लता जी हमारा साथ छोड़ गईं। वो भले ही आज हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी विभिन्न रेडियो स्टेशंस पर, विभिन्न रेडियो चैनल्स पर, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार सुनाई दे रही है। पुरानी ही नहीं, नई पीढ़ी के लिए भी कहीं ना कहीं वो एक प्रेरणा है। तो चलिए उनका गाया एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं और वापस आते हैं एक बार फिर से। यदि आपने अभी तक

लिए पहली बार उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत बहुत बहुत सारे, तो मुझे लगता है किसी एक को ना बनाकर मुझे आज सभी के नाम लेने चाहिए जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब हमें लिखकर भेजा है। तो सबसे पहले जो मैसेज आया था वो आया था बिहार की जुल्फिकार आलम का, जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। सही जवाब है बीती ना बिताई रैना, फिल्म परिचय से ये गीत था जिसे लता जी ने अपनी आवाज़ दी थी और इसके लिए उन्हें दिया गया 1974 में राष्ट्रीय पुरस्कार। रोहित श्रीवास्तव का दिल्ली से मैसेज आया था, धर्म भाटिया ने रोहतक से लिखा था, सलीम फैज मरियम ने शिव विहार दिल्ली से सही जवाब लिखकर भेजा था, पंकज का आया था अमरावती महाराष्ट्र से बिल्कुल सही जवाब, हरिनगर से लिखा था पूजा कोमल और आयुष ने, सुखलाल बाला फलकता वेस्ट बंगाल से इनका सही जवाब आया था, परिचय की गाना इन्होंने लिखकर भेजा है, सीमा ने मेरठ से बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। इसके अलावा एक मैसेज आया है प्रवीण चौहान का खरगोन मध्य प्रदेश से, अनिल सहा ने उत्तम नगर नई दिल्ली से बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। इसके अलावा है गौतम कुमार समस्तीपुर बिहार से, कृष्ण कुमार मिश्र इन्होंने कहाँ से लिखकर भेजा है, इन्होंने दयालपुर दिल्ली से लिखकर सही जवाब भेजा है। लव सिंह का मैसेज आया है कोठगुरु से, आयुष शर्मा ने प्रतापगढ़ राजस्थान से लिखकर भेजा है, लेकिन आयुष जी आपका जवाब सही नहीं है, परिचय का गीत था, और हालांकि आपने मैसेज किया है इसलिए मैं आज आपका नाम पढ़ रही हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं लता जी के तो फ़ैन हैं। मेरठ से सही जवाब आया है कान्हा का, मोहम्मद फुरकान है कहाँ से, मोहम्मद फुरकान का, ओके। इसके अलावा और भी बहुत सारे मैसेजेस, जल्दी जल्दी मैं नाम इनका लेना चाहती हूँ, ये कौन है, मोहम्मद फुरकान ग्राम सियाल से हैं, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, उत्तम नगर से हैं, शिव विहार। इसके अलावा एक सही मैसेज आया है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, तरुण कोहली हैं सूरज कुंड से, शैलेंद्र वर्मा दिल्ली के बुध विहार से, सलीम मलिक मेरठ से, वसंत को तोमर मेरठ से, और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है भाई, हरीश गौड़ मेरठ से, और बहुत सारे हमारे उमेश कुमार खयाला से हैं, ऋषु कटारिया, पवन कटारिया दरबाहा से, भाई लिस्ट तो बहुत लंबी है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप सभी जो हैं उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। मोहित काम्बोज का मैसेज आया है सहारनपुर यूपी से, और यदि किसी का नाम छूट गया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन क्योंकि आज का दिन है बेहद ख़ास, लता जी हमारे साथ आज नहीं है, लेकिन ये देखिए ना कि 1940 के दशक से शुरू हुई ये यात्रा 1950-60 के स्वर्णिम दौर से गुजरी, 70-80 के दशक में आगे बढ़ी और फिर 90 से 2000 के दशक में पहुंची और अभी भी जारी है। वाकई कुछ कलाकार इतिहास से दर्ज नहीं होते बल्कि खुद इतिहास की आवाज़ बन जाते हैं, और ऐसी ही आवाज़ थी लता मंगेशकर की, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको इनकी लता जी को दी हुई श्रद्धांजलि पसंद आई हो तो आप हमें लिख सकते हैं बिंदास बोल में। इसी के साथ रश्मि को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो हेलो एंड वेलकम टू 102.6 एफएम रेनबो। इट्स अ मंडे, सो डू लेट अस नो व्हाट आर यू अप टू एट दिस वेरी आवर। एज फार एज वी हियर विद प्ले इट कूल, सो वी हैव ए फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स टू टॉक अबाउट एंड ऑफ कोर्स वी गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू, सो कीप योर व्हाट्सएप हैंडी, यू नेवर नो व्हेन वी माइट बी आस्किंग दैट क्वेश्चन टू यू। एंड ऑफ कोर्स वी हैव गॉट द म्यूजिक यू लव एंड नीड एंड वांट अस टू प्ले, सो चीयर फॉर ओलिविया डीन, फॉर शी इज स्टार्टिंग द शो with nice to each other. That is how we all should be.

0: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
4: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
3: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
4: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
3: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
4: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

0: and then did cameos in three movies. Mr. Von Chu, wowing us again. And that is a great example. See, sometimes when you ask that silly question, which you're so scared to ask, you never know where it leads, which door it opens. Thank you so much for sharing such a great example. If you needed some strength today to ask a silly question, let that be it. All right, we will definitely go into more songs, but right now it's time for the Asian Games 2026 update.
1: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
2: Welcome back to your Asian Games live update, where India has already given us some wonderful reasons to celebrate this morning. I am Vidushi Vats with Mohammad Shahid Azmi, bringing you all the latest action, medal moments and twists and turns from the games. And what a morning it has been for India. We have seen Esha Singh deliver a brilliant silver medal in shooting, followed by Pinky Balhara adding a bronze in courage. Two more podium finishes, two more moments of pride, and the Indian medal tally continues to grow. It has been a morning full of intensity, composure, and some truly memorable performances from our athletes. Shahid, let's begin by taking stock of where India stands right now. What does the medal tally look like?
3: बिल्कुल, भारत 12वें स्थान पर है. भारत ने 4 गोल्ड, 17 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज समेत 39 पदक जीते. इन 39 पदक में एथलेटिक्स ने 13 पदक दिए, जबकि शूटिंग ने 12 पदक दिए. यानी 12, 13, 25 पदक इन सिर्फ दो खेलों से भारत को मिले हैं. जबकि अगर बता दें, ओवरऑल बताएं, सबसे ऊपर चीन अभी भी बना हुआ है. 125 गोल्ड, 51 सिल्वर, 44 ब्रॉन्ज समेत 220 पदक जीते. वहीं जापान 39 गोल्ड, 64 सिल्वर, 61 ब्रॉन्ज समेत 164 पदक जीते हैं. वहीं कोरिया की बात करें, 21 गोल्ड, 26 सिल्वर, 43 ब्रॉन्ज समेत 90 पदक जीते. कजाकिस्तान की बात कर लेते हैं, जिसके 10 गोल्ड थे, अब 9 गोल्ड हो गए. कैसे हो गए बताता हूं आपको. हालांकि आमतौर से देखा जाता है, हर देश जब मुकाबला जीतता है, उसकी संख्या जो उसके पदकों की संख्या बढ़ती है, लेकिन उसके घट गए. कैसे घटे बता देता हूँ आपको. कजाकिस्तान की यास्मीन टोखानबोवा का महिला मैराथन रेस वॉक का परिणाम रद्द कर दिया गया है. यास्मीन ने 42.195 किलोमीटर की स्पर्धा में 3:22:20 के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन रेस के बाद उनके जूतों को लेकर विरोध जताया गया. वर्ल्ड एथलेटिक्स ने स्वीकृत जो फुटवियर नियम के तहत जाँच के बाद उनका परिणाम डिस्क्वालीफाई कर दिया, यानी रद्द कर दिया. इसके बाद चीन की डंगजेंग कुंगजोंग को स्वर्ण पदक मिला. वहीं मा एल, जो चीन की ही खिलाड़ी हैं, उनको यहां पर रजत पदक मिला, जबकि जापान की ओमेनो वाई को कांस्य पदक हासिल हुआ. वहीं भारत की मंजू रानी, जो छठे स्थान पर थी इस रेस को खत्म होने के बाद, उनका पांचवा स्थान हो गया. हालांकि भारत को इसमें कोई पदक नहीं मिलेगा.
2: This is precisely why we say all of these updates are full of twists and turns, because you never know what is going to come for you next. Just like this one, because now we're going to talk about the action that is continuing on the water as well, with Indian sailors competing across both men's and women's events and several races that are still underway. So starting with the men's skiff, India's Prince and Manu had a strong opening race, finishing second in race one, with Oman taking the top spot. Race 2 is currently underway, so there is still plenty to play for. And in the men's dinghy, Vishnu finished 9th in race 1 and 2 of the qualification series, with China leading the race and race 3 being delayed right now. Moving to the women's events, Harshita and Sheetal finished 4th in race 1 of the women's skiff, with Hong Kong, China taking the top position. Their race 2 is now underway as well. In the women's dinghy, Netra finished 6th in the opening qualification race, with Singapore at the top, and once again race 2 is currently running. And finally, in the mixed dinghy, Shraddha and Ravindra finished 8th in the race 3 of the opening series, with Japan taking first place. Race 4 is now on, so we are still waiting for the latest positions from the Indian pair.
3: आज क्रिकेट में रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही थी. भारत बनाम अफगानिस्तान का एक मुकाबला होने वाला था, जो बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया. हालांकि भारत ने पिछला मुकाबला जापान से खेला था, आह और वाह का मुकाबला था. बड़ी मुश्किल से भारतीय टीम ने उस मुकाबले को जीता था. आज उम्मीद की जा रही थी, जब भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ उतरेगी, तो एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन बारिश की वजह से रद्द हो गया मुकाबला. लेकिन अब भारत का सामना श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल की जो विजेता टीम होगी, उससे सेमीफाइनल 1 अक्टूबर को खेला खेला जाएगा। ये भी बता दूं भारतीय टीम सेमीफाइनल में कैसे

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

और अब प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समय सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और AIIB निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर के दोहा पहुंच गई हैं। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मत्स्य पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में आज पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से अब तक आंधी और बारिश से 56 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। राष्ट्र आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी जयंती पर भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सुश्री लता जी ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के अंतर्गत काबुल के सरकारी अस्पताल के लिए जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा सामग्री की एक खेप भेजी है। पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कल तिरुवनंतपुरम में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते और एशियाई खेलों में भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल्स में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। तो ये थे अभी तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी के एफएम रेनबो 102.6 पर आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी होस्ट रॉकिंग रश्मि। दोस्तों, प्रोग्राम है रेनबो हेल्पलाइन और हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ताज़ा तरीन विषय, जिसके बारे में बात सुनकर, जिसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ सुनकर आप ना केवल अपना करियर बना सकते हैं बल्कि अपने रुझान भी आप देख सकते हैं कि क्या वाकई में या वास्तव में आपका इस विषय में अपना करियर बनाने का कोई इरादा बन सकता है या फिर नहीं। जी हाँ, आज हमारी जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर स्वप्ना लिडल, जो हिस्टोरियन हैं, क्यूरेटर हैं, ऑथर हैं और साथ साथ हेरिटेज कंजर्वेटर हैं। और आज का हमारा विषय है करियर इन हेरिटेज कंजर्वेशन, प्रिजर्विंग द पास्ट एंड शेपिंग द फ्यूचर। तो यदि आपका भी विरासत संरक्षण से जुड़ा कोई भी सवाल है, आपकी क्वेरी है, आप इस विषय में इंटरेस्ट रखते हैं, अपनी विरासत, अपने पूर्वजों के दिए हुए जो धरोहरें हैं उनसे आप थोड़ा भी जुड़ाव महसूस करते हैं, तो आज आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर स्वप्ना लिडल का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पहुँच के फिर से।
1: थैंक यू सो मच मैम, आप अपना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ आई हैं और हमारे लिसनर्स के बहुत सारे सवालों का जवाब भी आप देंगी, साथ साथ हमें बताएंगी क्या वाकई में हम भी अभी अपने इतिहास के लिए या अपने हेरिटेज को लेकर कोई भी इंटरेस्ट रखते हैं और क्या हम उसमें करियर बना सकते हैं, खासतौर पे जो हमारे युवा लिसनर्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं। तो यदि आपका कोई सवाल है तो आप डायरेक्ट स्टूडियो में हमें फ़ोन कर सकते हैं 011-234-21080 और 234-21084 हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, और आप हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटा सा ट्रैक सुनते हैं और फिर वापस आते हैं और जानते हैं और साथ साथ शुरू करते हैं आज के सवालों का, आज के प्रश्नों का सिलसिला।

0: जी हाँ बिल्कुल, एक चित्रकार है जो ऊपर आसमान में बैठे हैं और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जहन में कुछ इस कदर जुड़ी हुई हैं कि हम उन्हें चाहकर भी भुला नहीं सकते। और कुछ ऐसी चित्रकारियाँ भी हैं जो मैन मेड कह सकते हैं और कहीं ना कहीं हम जैसे ही लोगों ने बनाई है, लेकिन आज यदि हम चाहें कुछ भूल भी रहे हैं, कुछ खो रही हैं, लेकिन उन्हें संग्रहित करने का, उन्हें सुरक्षित करने का, उन्हें संरक्षित करने का मौका आपको यदि मिलता है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आज रेनबो हेल्पलाइन में हमने यही विषय लिया है, करियर इन हेरिटेज कंजर्वेशन, प्रिजर्विंग द पास्ट शेपिंग द फ्यूचर। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट डॉक्टर स्वप्ना लिडल, जो एक हिस्टोरियन है। तो मैम, सबसे पहले आपसे जो सवाल मैं करना चाहूँगी ये कि हेरिटेज कंजर्वेशन एक्चुअल में है क्या और ये क्यों ज़रूरी है?
1: हेरिटेज को अगर पहले देखा जाए तो हेरिटेज वो हमारे इतिहास का वो हिस्सा है जो हमारे साथ आज भी है
0: जी,
1: और हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि आगे इसको आइंदा कैसे लेके जाना है
0: जी, जी.
1: कि ये खत्म ना हो जाए हमारे साथ, हमें अगली पीढ़ियों के लिए भी इसको बचा के रखना है
0: जी.
1: तो उस बचा के रखने की जो प्रक्रिया है वो जो है वो काम जो है वो हेरिटेज कंजर्वेशन के दायरे में आता है। और क्योंकि हेरिटेज खुद इतने बड़े दायरे में आता है जिसमें चाहे वो पुरानी बिल्डिंग्स हो, चाहे वो आर्ट हो, टेक्सटाइल हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसमें, नेचुरल हेरिटेज आती है, तो इसका दायरा बहुत बड़ा है। जो भी इसमें काम करता है बचाने के लिए इस हेरिटेज को, वो एक हेरिटेज कंजर्वेशन का काम है
0: जी। और जैसे हम अपने देश के बारे में सोचें, उसके संदर्भ में बात करें, तो क्या लगता है आपको इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश में इतनी हमारी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज हैं और इतने स्मारक और पुरानी इमारतें बनी हुई हैं, तो उनका यदि संरक्षण करने की बात आए तो आप क्या कहना चाहेंगे?
1: सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये देखना है कि ये जो विरासत है ये हम लोग सबकी है
0: जी,
1: और हम लोग सबकी है मतलब कि इसका जो दायित्व है वो हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी सरकार है और हर एक नागरिक
0: जी
1: की ये एक ड्यूटी बन जाती
0: है,
1: बल्कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में
0: जी,
1: उसमें एक है कि आप अपनी कल्चरल हेरिटेज को संभाल के रखेंगे। वो हेरिटेज कंजर्वेशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ड्यूटीज का हिस्सा है
0: जी,
1: तो ये तो सबके ऊपर लाजमी है कि वो करके रखें। और आज हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे करियर्स भी बनाए जा सकते हैं जिसकी बात हम आज कर रहे हैं
0: जी। अच्छा, हेरिटेज कंजर्वेशन जैसे कि अभी आपने कहा कि केवल इमारतों, स्मारकों और पुरानी चीज़ों से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि इसका दायरा बहुत बड़ा है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका संरक्षण इसके अंतर्गत आता है, या ये कहिए कि हेरिटेज जो कंजर्वेशन है वो कितनी तरह का हो सकता है, किन किन चीज़ों का, किन किन परंपराओं का या धरोहर का हम संरक्षण कर सकते हैं? थोड़ा सा इलैबोरेट करके यदि आप बताएं तो हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें आसानी होगी।
1: तो एक तो जब हम हेरिटेज की बात करते हैं, एक जो चीज़ हमें बिल्कुल उसी वक्त समझ में आ जाती है वो है बिल्डिंग्स, पुराने जो स्मारक हैं, पुरानी पिछले ज़माने के चाहे वो फोर्ट्स हों, चाहे महल हों, घर हों, तरह तरह के, तो उस वो आर्किटेक्चरल हेरिटेज कहते हैं। और फिर हमारे ऑफ कोर्स पुराने जो दस्तावेज हैं
0: जी,
1: पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उस किस्म की हेरिटेज है, पुरानी स्कल्पचर्स हैं,
0: पेंटिंग्स
1: हैं, उस किस्म की चीज़ें आती हैं उसमें। पर कई तरह की चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि इंटेंजिबल हेरिटेज जिसको कहते हैं, जैसे हमारी पुरानी कस्टम्स हैं, खासतौर पे वो कस्टम्स जो शायद समय के साथ खत्म हो रहे हैं
0: जी।
1: जो संभाल के रखे हैं वो, जो हमारा हमारे दिनचर्या का जो हिस्सा है वो, उसको ज्यादा उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होती, वो तो चला ही आ रहा
0: जी,
1: है
0: जी।
1: पर कई हमारे देश में जैसे पुरानी जुबानें भी हैं, भाषाएं हैं जो कि अब खत्म होती
0: जा रही हैं,
1: तो उसको संभालना या उसको रिकॉर्ड करके रखना, उस किस्म की चीज, वो भी हेरिटेज में। और बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल हेरिटेज जिसको कहते हैं हम, जिसके हमारे हमारे चाहे वो वन हो, उद्यान हो, गार्डन्स हो, फॉरेस्ट हो, वाटर बॉडीज हो, ये भी हमारे हेरिटेज के आते हैं, तो इसका भी संरक्षण हेरिटेज।
0: तो हमारे लिसनर्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं वो समझ गए होंगे कि आज का विषय है हमारी विरासत, हमारी धरोहर से जुड़ा, चाहे वो कोई रीति रिवाज हो, कोई परंपरा हो, खेल कूद हो,

आने या फिर आपकी कला संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, कोई इमारत हो, कोई स्मारक हो, या फिर कोई भी ऐसी बात, कोई भाषा हो जो लुप्त होती जा रही है और उसे संरक्षित करने की ज़रूरत है, तो आज आप इस फील्ड में यदि करियर बनाना चाहते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो आज का रेनबो हेल्पलाइन है ख़ास तौर से आपके लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि आपका कोई सवाल है तो आप स्टूडियो में डायरेक्ट हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 2342-1080 और 2342-1084। और दिल्ली से बाहर से जो हमें लोग कॉल करना चाहें उन्हें 011 लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना सवाल रखना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070।

0: आज हम बात कर रहे हैं करियर इन हेरिटेज कंजर्वेशन। तो मैम, यदि कोई युवा इस फील्ड में हेरिटेज और कंजर्वेशन को अपना करियर बनाना चाहता है तो वो शुरुआत कहाँ से करे?
1: असल में अब क्या हो गया है कि इस फील्ड में काफ़ी स्पेशलाइज कोर्सेज भी आ गए हैं
0: जी।
1: कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो हेरिटेज स्टडीज़ पे खास कोर्सेज ऑफर करते हैं
0: जी।
1: और पर मैं ये कहूँगी कि ये एक नई चीज़ है, रिलेटिवली नई चीज़ है।
0: जी,
1: मैं
0: जी।
1: अपनी उम्र को देख के बोल रही हूँ।
0: हाँ, पहले ऐसा होता था कि लोग हेरिटेज को एक शौकिया तौर पे लेते थे, या सिर्फ फोटोग्राफ्स ले ली या कुछ कलेक्शन कर ली, इस तरह का मुझे लगता है उन्हें।
1: मुझे लगता है कि होता ये था कि हेरिटेज के फील्ड में काम करते थे लोग सीरियसली, पर कोई स्पेशलाइज कोर्सेज नहीं हुआ करते थे। अब हो रहे हैं
0: जी,
1: तो आप के इसको देख सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं कि आसपास आपके क्या कोर्स हैं, उसके क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत है। पर मेरे ख्याल से सिर्फ हेरिटेज स्टडीज पे ही का ही कोर्स नहीं है, साथ में आपके कई कोर्सेज हैं, आपके कई इंटरेस्ट हैं जो आपको इस मंजिल तक लेके जा सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपने हिस्ट्री किया हुआ है तो उससे आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हेरिटेज की हो सकती है। अगर जैसे कि मैं बोल रही थी कि हमारी लुप्त होती हुई भाषाएं भी एक हेरिटेज का हिस्सा है
0: जी, जी।
1: तो उसमें फिर आप अगर लिंग्विस्टिक्स में पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपकी रुचि है, तो उसके थ्रू भी आप हेरिटेज तक पहुंच सकते हैं। अगर आप एनवायरमेंट जो हेरिटेज जो एनवायरनमेंट से संबंधित है उसमें काम करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप वो साइंस और बॉटनी और

0: एनवायरमेंट साइंस और उस
1: बिल्कुल
0: टाइप की चीजें वो सब लेके आएंगे साथ.
1: जी
0: तो
1: जी
0: कई तरीके अलग अलग जगहों से आप इस तक पहुंच सकते हैं.
1: मतलब कुल मिला के आपका मतलब ये है कि चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट है, साइंस स्टूडेंट है या फिर कॉमर्स स्टूडेंट है, कोई भी इस विषय में कोई भी स्पेशलाइजेशन कर सकता है, अपने इंटरेस्ट और अपनी पढ़ाई के हिसाब से वो अपना करियर चुन सकते
0: जी
1: हैं.
0: हाँ, जी हाँ,
1: जी,
0: बिल्कुल.
1: एक सवाल हम तक पहुंचा था पैंथर तोमर का किशनगंज से, उन्होंने यही पूछा था कि विरासत संरक्षण में करियर शुरू करने के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए.
0: तो ये क्योंकि इतने सारे कोर्सेज अब ऑफर हो रहे हैं, तो मैं
1: जी
0: एक साथ नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि
1: जी जी
0: सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है.
1: ओके
0: पर आज बहुत आसान है, आप एक सर्च कीजिए
1: जी
0: और ढूंढ के निकालिए कि
1: जी
0: क्या क्या कोर्सेज आपके आसपास या फिर थोड़ा दूर भी
1: जी जी
0: जो आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑफर कर रहे हैं. कुछ अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ऑफर करते
1: तो
0: हैं,
1: क्या
0: कुछ पर.
1: वैसे 10th या 10+2 के बाद ये कोर्सेज किए
0: जी
1: जा
0: हाँ,
1: सकते
0: जी
1: हैं.
0: हाँ,
1: जी अच्छा, एक सवाल और है, क्या इसका कोर्स 12th के बाद किया जा सकता है या ग्रेजुएशन के बाद ही करना पड़ता है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए.
0: ऐसा होता है कि स्पेशलाइजेशंस अलग अलग होती हैं,
1: जी
0: तो कुछ कुछ जगह हैं जो आफ्टर प्लस टू भी ऑफर कर सकते हैं,
1: ओके
0: बट कुछ मास्टर्स करते हैं. वो जैसे कि हर एरिया में हम देखते हैं, एज आई सेड कि ये बहुत नया फील्ड, रिलेटिवली नया फील्ड है,
1: जी
0: पर इसमें बहुत एक्सपेंशन एकदम से हुआ है. पर ये आप ध्यान रखें कि सिर्फ आपको हेरिटेज स्टडीज की जरूरत नहीं है, आप और भी चीजें करके हेरिटेज तक पहुंच सकते हैं.
1: जी तो यदि आपका भी इंटरेस्ट हमारे विरासत की ओर है, आप अपने धरोहर को संभाल कर रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो धरोहर और हमारी हेरिटेज से के संपर्क में रहें, उन्हें पहचानें, उनसे कुछ सीखें, तो आपको इसमें करियर अपना बनाना चाहिए, आप बना सकते हैं. और इसी के लिए आज का रेनबो हेल्पलाइन लेकर आए हैं हम आपके लिए. आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर स्वप्ना लिडल, जो एक हेरिटेज कंजर्वेटर हैं, एक हिस्टोरियन है, साथ साथ उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं और साथ साथ किस तरह से आप हेरिटेज को कंजर्व करके रख सकते हैं. तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन.
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम.
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं.
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान.
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार.
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक. मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं.
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी.
4: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी.
5: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद. सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में.
4: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में. आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में.
5: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध.
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में.
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत. प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन और आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त रॉकिंग रश्मि. दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं करियर इन हेरिटेज कंजर्वेशन. तो मैम, जैसे कि हम लोग ने बात की कि बहुत तरह के कोर्सेज इस फील्ड में अवेलेबल हैं और आपने कहा कि आप थोड़ा सा सर्च करें, यदि मोटा मोटा आप कुछ हमारे लिसनर्स को बता सकें कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं तो हमारे लिसनर्स को थोड़ी आसानी होगी.
0: जी हाँ, तो ऐसा है कि हेरिटेज आर्किटेक्चर,
1: जी
0: आर्किटेक्चर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है इसमें.
1: जी जी
0: कॉन्जर्वेशन आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर करके आप कॉन्जर्वेशन आर्किटेक्चर में स्पेशलाइज करके इस फील्ड में आ सकते हैं.
1: ओके
0: म्यूजियम स्टडीज, म्यूजियम स्टडीज जो है आपको फिर वो एक अपॉर्चुनिटी देता है कि म्यूजियम की सेटिंग में, एक इंस्टीट्यूशन में रह के आप किस तरह से म्यूजियम में आर्ट कॉन्जर्वेशन को देख सकते हैं. पर ऑल्सो म्यूजियम स्टडीज, उसके अलग अलग तरीके होते हैं. एक तो कॉन्जर्वेशन है, मैनेजमेंट है, स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स है और किस तरह से आप डिस्प्ले कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं. फिर आप अगर अगर आर्कियोलॉजी तो है ही, पर आर्कियोलॉजी एज सच वो हेरिटेज का हिस्सा है तो वे हेरिटेज, पर वो एक स्पेशलाइज फील्ड है जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है, तो उसको एक नया हेरिटेज फील्ड नहीं माना जाएगा। पर जैसे कि हेरिटेज इंटरप्रिटेशन का जो फील्ड है वो बहुत ग्रोइंग है आज, बहुत बढ़ रहा है
1: जी।
0: उसका मतलब ये है कि हम लोग ने ये मान लिया है कि सबसे बड़ी चीज जो है वो हेरिटेज पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना हेरिटेज के बारे में
1: जी,
0: और कैसे हेरिटेज को लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है कि आम लोगों की जिंदगी पे हेरिटेज के जरिए उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। तो किस तरह से हेरिटेज को इंटरप्रेट करना है, उसमें कम्युनिकेशन, किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं हेरिटेज के बारे में, किस तरह से आजकल आप देखते हैं कि किस तरह से कंटेंट क्रिएशन में हेरिटेज इतना बढ़ रहा है
1: जी, जी।
0: तो उस तरह के इंटरप्रिटेशंस, उसमें नए टूल्स भी किस तरह से इस्तेमाल होते हैं क्रिएटिंग, जैसे आपके विजुअल ऑडियो विजुअल रिप्रेजेंटेशन, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इस तरह से किस तरह से आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, हेरिटेज कम्युनिकेशन, उस टाइप की चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चाहे वो कम्युनिकेशन फील्ड से हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एरियाज हो, जैसे कि 3D मैपिंग है, एक बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिस्टम्स हैं, तो तरह तरह के करियर्स बन सकते हैं।
1: बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, यदि आप थोड़ा सा और इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी फील्ड देखने को मिलेंगी, और आप इस फील्ड में अपना करियर बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं ये सोचकर कि आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है। फिलहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन, और आपके लिए लेकर आई हूँ एक और खूबसूरत सा ट्रैक अपने इसी प्रोग्राम में।

0: एशियन गेम्स 2026 की ताज़ा अपडेट्स का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताज़ा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं विदुषी वत्स। चलिए आज इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं, स्क्वैश से बात करते हैं, जहां कांटे की टक्कर है, ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। ओमाहिल टीम स्पर्धा के पूल सी मुकाबले में भारत की जापान के बीच रोमांचक टक्कर है। भारत ने जोरदार शुरुआत करते हुए पहला मैच अपने नाम कर लिया, लेकिन जापान ने दूसरे मैच में शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को 1-1 से बराबरी पर ला खड़ा किया है। पहले मैच में अनुभवी जोशना चिनप्पा ने जापान की एरिसा सानो को सीधे गेमों में 11-11 रनों से हराकर भारत को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे मैच में अनाहत सिंह और सातुमी वतानबे के बीच जो ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला, संघर्ष देखने को मिला, उसके बाद वहाँ अनाहत को 5 गेम तक चले मुकाबले में 8-11, 11-8, 11-7, 8-11, 9-11 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब मुकाबला 1-1 से बराबर पर है। तीसरे मैच पर सभी की निगाहें, क्या तन्वी खन्ना जापान की अकारी मिदुरिबुकोवा को हरा कर वापसी करती हैं, भारत को इस मुकाबले में जीत दिलाती हैं। आने वाला कुछ वक्त बता देगा, लेकिन हाँ यकीनन ये मुकाबला बेहद ज़बरदस्त चल रहा है। अनाहत सिंह को जिस तरह यहाँ से शिकस्त मिली है, मुकाबला और ज़्यादा रोमांच की प्रकाष्ठा तक पहुँच गया है।
3: Absolutely, the events today are promising that thrill. They are promising that action that we look forward to when sports come into the play. But what is more promising is that there is plenty more action coming up for India as we move into the second half of the day. The excitement is really building, especially with a packed evening of athletics ahead. Let me give you a little overview of what is coming up for us. So we begin at 2 p.m. with squash, where India takes on South Korea in the men's team event in Pool A. Now, after that, we go with boxing, where Priya taking on her quarter final in the women's 60 kilogram category. And at 4 p.m., it will be Kapil in action in the men's 90 kilogram category. So there is plenty at the stake in the boxing ring this afternoon. After that is when the athletics program really take off at 2:35, where we have Seema and Sunny in the women's discus throw final, followed by the women's 400 meter hurdles final at 3:53, and where Vithya Ramraj and Anu will be looking to make their mark. After that, we turn our eyes to Santosh Kumar in the men's 400 meter hurdles final, and then comes the men's 3000 meter steeplechase with Avinash on the start list. But the excitement still keeps coming, where we have Murali Sri Shankar and Abdullah Abubakar listed for the men's long jump final at 4:30, followed by Gulveer and Yunus Khan in the men's 1500 meters. We also have Rohit and Yashvir in the men's javelin throw final, and then the women's 800 meter heats at 4:50, featuring Gautami and Pooja. The evening gets even bigger with the women's 5000 meter final, where Parul and Seema will be in action. And then, just when you think the athletic schedule could not get any more exciting, we have the relay events as well. India's men 4 into 400 meter relay team is scheduled today, followed by the women's 4 into 100 meter relay final as well. So from 2 p.m. onwards, it is going to be a packed sporting afternoon, evening, with squash and boxing leading us into what promises to be a massive athletic session.
2: जैसे ही शाम ढलेगी वैसे ही देखा जाएगा कि ट्रैक एंड फील्ड पर ज़बरदस्त जोराजमाइश देखा जाएगा, ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, आज जो भारत ने उपलब्धियां हासिल की हैं उसकी भी बात कर लेते हैं, आज जो मेडल भारत ने जीते उसकी भी बात कर लेते हैं। शूटिंग में बात करेंगे, ईशा सिंह ने 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत में रजत पदक जरूर जीता, लेकिन हाँ क्या मुकाबला था विदुषी, ज़बरदस्त मुकाबला था, 5 मरतबा शूट आउट तक मुकाबला पहुँचा था, शानदार मुकाबला हमने देखा। वहीं पर कुराश की बात करते हैं, पिंकी बलहारा महिलाओं की 78 किलोग्राम सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की मो सुमिन से हार जरूर गई, लेकिन इसके बावजूद ने कांस्य पदक हासिल हुआ है। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सोन को हराकर पदक पक्का कर लिया, यानी भारत का जो जीत का सिलसिला वो लगातार आगे बढ़ रहा है।
3: Absolutely, it has been a morning full of intensity, composure, and some truly memorable performances from our

0: athletes, and as we just shared the schedule of the day that's upcoming, which is promising us excitement, a lot of excitement and thrill. With that, we will see you in our next update of the Asian Games. This is Vidushi Vats with Mohammed Shahid Azmi taking your leave right now, but see you real soon. Thank you.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे और अब एक बार फिर से जुड़ गए हैं रेनबो हेल्पलाइन में, जिसमें आज हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर स्वप्ना लिडल, जो हिस्टोरियन हैं और साथ साथ हेरिटेज कंजर्वेटर हैं, और आज हम बात कर रहे हैं करियर इन हेरिटेज कंजर्वेशन पर। तो मैम, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं उन्हें लेना चाहती हूँ। सबसे पहले मैसेज आया है प्रवीण जी का, इन्होंने लिखा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत जानकारी से भरा हुआ है, उन्हें काफ़ी पसंद आ रहा है। इसके अलावा एक और मैसेज आया है, इन्होंने जानना चाहा है, ये लिखने वाली है निवेदिता मिश्रा। निवेदिता ने कहाँ से लिखा है ये इन्होंने नहीं लिखा है। इनके दो सवाल हैं। कहती हैं, अगर आपको एक साल के लिए दिल्ली की किसी इमारत का संरक्षक बना दिया जाए तो आप कौन सी चुनेंगी और क्यों, और किस तरीके से ये आप करेंगी? साथ साथ इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सवाल और पूछा है, मैं जानना चाहूँगी, जब कोई पुरानी हवेली जर्जर हो और उसमें आज भी लोग रहते हों, कारोबार करते हों, तो क्या बचाना है और क्या छोड़ना है, यह तय करने का हक किसका होना चाहिए? साथ साथ संरक्षण उन लोगों की ज़िंदगी पर बोझ बने बिना कैसे हो, थोड़ा सा इस बारे में बताइए।
3: बहुत अच्छा, इनके दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, और मेरा जो जवाब है वो दोनों का एक थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं दिल्ली में मेरी दिलचस्पी है, पर ये सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, दूसरे पुराने शहरों पे भी इसका असर पड़ता है। दिल्ली में कई ऐसी जगह हैं जो कि काफ़ी हिस्टोरिक हैं, पुरानी हैं, जैसे कि पुरानी दिल्ली जिसको हम चांदनी चौक का एरिया कहते हैं, और वो एरिया और भी जगह है, मेहरौली का गांव है जहाँ पे बहुत एक ऐसे पुराने मोहल्ले हैं जहाँ पे काफ़ी सारी पुरानी इमारतें हैं, और अगर मुझे एक साल तक के लिए थोड़ी ऐसी कोई
2: मिल जाए और उसका संरक्षण संरक्षण बना दिया जाए,
3: तो मैं पुरानी दिल्ली को चूज करूंगी, और मैं ऐसे पॉलिसीज बनाना चाहती हूँ कि जो सारी जो पुरानी हवेलियां हैं जो पुरानी दिल्ली में हैं, जो कि प्राइवेट हैंड्स में हैं, जो प्राइवेट ओनरशिप में हैं, उनके ओनर्स के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार करना, एक इस तरह की पॉलिसी तैयार करना कि उनको मदद भी मिल सके अपनी हवेलियां बचाने के लिए, उनको किस तरह से कंजर्व करना है, और ये कि कंजर्व करते हुए उस हेरिटेज से कैसे आप एक इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिल सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोग ये सोचते नहीं हैं कि ऐसी पॉलिसीज हो सकती हैं जिससे हम हेरिटेज से हेरिटेज के बेसिस पे कैसा डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर हम पूरे दुनिया के हिस्टोरिक शहरों को देखें, वेनिस को देख लीजिएगा, वेनिस में इतना टूरिज्म है जो कि सब पुरानी बिल्डिंग्स के ऊपर है, लोग आते हैं वहाँ पुरानी बिल्डिंग्स को देखने, खास मॉन्यूमेंट्स को देखने नहीं आते, मॉन्यूमेंट्स तो हैं पर जो हर गली कूचे में जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि हमारी पुरानी दिल्ली में और हमारी पुरानी कई शहरों में ऐसा है कि गली गली में जो पुराने घर बने हुए हैं उसको देखने आते हैं, उससे कितना कारोबार चलता है लोगों का, वो अगर हो सके तो उससे बहुत फायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसी कोई पॉलिसीज बनाने की कोशिश करूंगी कि उससे ये फायदा हो सके।
2: जी, क्योंकि आज वैसे भी यही हो रहा है कि पुराने दिल्ली के वो पुराने घर लोग तोड़कर उन्हें नए तरीके से डेवलप कर रहे हैं, तो वो जो हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ या हमारी पुरानी धरोहर है वो कहीं ना कहीं छूटती जा रही है। तो वाकई में जिस तरह से आपने कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन्हें संरक्षित कर सकें, और जैसे इन्होंने आपने बताया कि संरक्षण किस तरह से ये तय करें और ये संरक्षण उन लोगों की जिंदगी पर बोझ बने बिना कैसे हो।
3: बिल्कुल, ये इसमें इसमें विजन की जरूरत है, गवर्नमेंट पॉलिसीज की जरूरत है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स।

0: की जरूरत है, ये सारी एक एक विजन की जरूरत है जो कि इंडिविजुअल लेवल पे और सरकारी लेवल पे भी होना चाहिए।
1: जी
0: इसका एक बहुत सिंपल आंसर नहीं हो सकता है।
1: हमारे पास कुछ एक मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं जो अपने रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो आपको बता दूं कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो रेनबो हेल्पलाइन है, मेरा वाला सॉन्ग आज नहीं है, तो आपकी रिक्वेस्ट हम नहीं बजा पाएंगे। और लेकिन यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल है आपका हेरिटेज से जुड़ा हुआ, विरासत संरक्षण से जुड़ा हुआ, आपके करियर आप यदि इस फील्ड में बनाना चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9868107070। मेहुल गुप्ता आपका लगातार मेरे पास कॉल आ रहा है, व्हाट्सएप कॉल आ रही है, तो माफ़ कीजिएगा व्हाट्सएप कॉल हम नहीं उठा सकते। यदि आप स्टूडियो में हमें डायरेक्ट फ़ोन करते हैं 0112342108 या फिर 2342104, तो हम ज़रूर आपका कॉल उठाएंगे और आपके सवाल का जवाब हमारी जो माननीय जो एक्सपर्ट आई हैं डॉक्टर स्वप्ना लिडल वो ज़रूर देंगी। एक प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं और वापस आते हैं प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन में।

0: एक बार फिर से रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। आज बात हो रही है करियर इन हेरिटेज कंजर्वेशन। मैम, एक सवाल हम तक पहुंचा है, लिखने वाले हैं पैंथर तोमर। उन्होंने एक बार फिर से पूछा है कि एक अच्छा हेरिटेज प्रोफेशनल बनने के लिए कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए।
1: सबसे पहले तो आपको हेरिटेज से प्यार होना चाहिए, हिस्ट्री से प्यार होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट हो उसमें, कि आप थोड़ा सा जुनून होना चाहिए दिमाग में कि मैं इसको संभाल के रखना।
0: जस्ट लाइक जो मूवी का गाइड आई थी उसमें वहीदा रहमान के जो हस्बैंड जो बने थे उनको कितना प्यार दिखाया था, एक पागलपन की हद तक वो प्यार था।
1: और उसके बाद फिर आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको देखना है कि आप किस एरिया में आपका इंटरेस्ट है। अगर ऑब्वियसली आपको आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप उस फील्ड में जाइए, हिस्ट्री के थ्रू आर्कियोलॉजी में जाइए। या फिर आपका इंटरेस्ट आर्ट में है तो फिर आप आर्ट स्कूल के जरिए कंजर्वेशन में जाइए। और उसी तरह से अगर आपका नेचुरल हेरिटेज में

0: इंटरेस्ट है, तो फिर ऑब्वियसली आप वो नेचुरल साइंसेस जो उस फील्ड में से होते
1: जी
0: हुए
1: जी
0: फिर आप उसमें एनवायरनमेंट में जाएंगे या कहीं जाएंगे, तो आपको अपने निश एरिया के हिसाब से अपनी
1: स्किल को
0: स्किल
1: डेवलप
0: को
1: करना
0: डेवलप
1: है
0: करना है।
1: जी।
0: और अगर आप स्टडी कर रहे हैं उसके लिए स्किल आपका अलग होता है, अगर आप हेरिटेज कम्युनिकेशन करना चाहते हैं
1: जी
0: उसका स्किल अलग होता है, आप
1: जी
0: एक कम्युनिकेटर हैं, आप हेरिटेज के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, उसको स्प्रेड करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है
1: जी
0: ये,
1: जी जी
0: तो उसके स्किल्स अलग होंगे। फिर
1: तो अच्छा, इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और फील्ड एक्सपोजर कितना ज़रूरी है?
0: वो
1: आई
0: तो
1: थिंक
0: है ही।
1: जैसे जैसे
0: जी हाँ,
1: करेंगे
0: या
1: वैसे ही
0: जी
1: एक्सपीरियंस
0: हाँ, तो
1: उनको
0: कुछ तो
1: होगा।
0: आपके कोर्स के थ्रू आता है कि आपके
1: जी
0: कोर्स के जो आपका हेरिटेज स्टडीज का कोर्स है या जो भी फील्ड में बात कर रही हूँ उससे रिलेटेड तो ऑब्वियसली आपको करना ही है काम। पर अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है, हो सकता है आप स्कूल में हैं अभी, जाना शुरू कर दीजिए, हेरिटेज साइट्स में जाना चाहिए शुरू कर दीजिए, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स हों, चाहे वो नेचुरल हेरिटेज साइट्स हों, या चाहे वो म्यूजियम्स हों, आर्ट गैलरीज हों, जाके देखना शुरू कीजिए। आपका खुद का इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका खुद का एक्सपर्टीज, थोड़ा सा आपको आइडिया लगने लगेगा कि आपको इंटरेस्ट किधर है।
1: जी। अच्छा, भारत में युवाओं के लिए किस तरह से एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी मौजूद हैं इस फील्ड में?
0: हैं ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ कई हैं, एज आई सेड मैनेजमेंट में, उसमें कॉन्जर्वेशन की जो टेक्निकल साइड पे है उसमें भी काम हो रहा है, बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम करते हैं हेरिटेज से रिलेटेड, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ प्राइवेट हैं। और मैं एक चीज़ पे एम्फोसाइज करना चाहती हूँ कि मैंने अपने लाइफ टाइम में देखा है, अपने करियर के कोर्स में देखा है कि इतनी सारी एरियाज हेरिटेज, जो मैं कम्युनिकेशन की बात बार बार करती हूँ
1: जी
0: उससे रिलेटेड पर्सनल डेवलपमेंट, अपने आप एंटरप्रेन्योरशिप करके लोगों ने ऐसे फील्ड्स में करियर बनाया है हेरिटेज से रिलेटेड जो कि उन्होंने अपनी राह चुनी है,
1: जी
0: और किसी का नौकरी ना सोच के ये सोच के कि मैं अपना एक स्टार्टअप शुरू करूं।
1: जी
0: इसमें स्टार्टअप्स बहुत हैं
1: अच्छा,
0: हेरिटेज
1: यहाँ मेरे मन
0: रिलेटेड।
1: में एक सवाल और आ रहा है, एक मतलब करियर से हटकर यदि मैं कुछ पूछना चाहूँ, जनरली क्या होता है कि आजकल घरों में जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं या पेरेंट्स का या और उनसे पुराने जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि संग्रहित करें, उन्हें हम संरक्षित करके करें। इवन हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपनी पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते, तो ऐसे में और इवन बहुत से डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत से ऐसे कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बहुत पुराने जो पूर्वज हैं उनसे जुड़ी हुई हैं और लोगों के घरों में आज भी प्रेजेंट हैं, तो क्या उनको भी किसी तरह से संग्रहित करने का या संरक्षित करने का कोई तरीका है? क्योंकि मुझे लगता है हमारे बहुत सारे लिसनर्स होंगे ऐसे जो मेरी इस बात से बिल्कुल मानते होंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन एक्चुअल में वैलिड है।
0: जी हाँ बिल्कुल, और खास तौर पे मैं बात करूंगी, देखिए बड़ी चीजें जो होती हैं वो तो हमारी जो डेली लाइफ की जो कंस्ट्रेंट्स हैं उस पे हम कुछ कर नहीं सकते
1: जी
0: हैं हमारे हमारे पास फर्नीचर है पुराना, अगर हमारे पास जगह नहीं है उसको रखने की तो
1: तो
0: वो नहीं
1: ऑब्वियसली
0: है।
1: हमें हटाना
0: पर
1: पड़ेगा।
0: मैं ये फायदा है कि आज हम इस ऐसे डिजिटल एज में रह रहे हैं कि जहां तक फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स, तरह तरह की, चाहे चिट्ठियां हों, चाहे
1: जी
0: अकाउंट बुक्स हों, चाहे रेसिपी बुक्स हों, इसको डिजिटाइज करने के बहुत आसान तरीके हो गए हैं।
1: जी
0: हमको एक सिस्टमैटिक तरीके से आज कई लोगों के पास एक स्मार्टफोन तो है ही
1: बिल्कुल
0: जिसमें
1: बिल्कुल
0: कैमरा है, एक सिस्टमैटिक तरीके से आप उसकी अच्छी फोटोग्राफ लेके उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा
1: ठीक
0: आपको ध्यान देने की जरूरत है कि उसको किस तरह के आपने फोल्डर में डाला है, किस तरह से उसको कैप्शन किया है, लेबल किया है,
1: जी
0: और जिसको लग रहा हो कि हम इसको करें क्यों, उसको मैं एक दो चीज बोलना चाहती हूँ। एक, आप ये सोचिए कि ये आप तक ही नहीं है, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी
1: बिल्कुल
0: है,
1: जी
0: आपके बच्चों के लिए, अपने फैमिली की एक हिस्ट्री आप छोटी सी बना सकते हैं जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल कर लें,
1: जी जी
0: फिर उनको भी इंटरेस्ट होगा अपनी फैमिली की हेरिटेज के लिए,
1: जी
0: अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, और ऐसे ही एक सिलसिला आगे बढ़ता जाता है कि
1: बिल्कुल
0: आपने अपने फैमिली की एक हिस्ट्री तैयार कर ली। ये सबके लिए, चाहे वो करियर हेरिटेज में हो।

0: एक और सवाल हम तक और पहुंचा है, ये पूछना चाहते हैं कि जो हेरिटेज कंजर्वेशन का जो कोर्स है, क्या इसके बाद सरकारी नौकरी में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं?
1: सरकारी
0: नौकरियां जी
1: नौकरियां भी हो सकती हैं, कल्चर डिपार्टमेंट्स और टूरिज्म और उस तरह के, जहां तक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का हाल हिसाब है। पर मैं फिर कहूंगी कि ये जो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो प्राइवेट में बहुत है इस वक्त।
0: ओके
1: जी
0: जी तो सरकारी नौकरी के साथ साथ आप प्राइवेट में भी ज़रूर जा सकते हैं और बहुत कुछ देख सकते हैं। अगर मैम यदि हम किसी भी हेरिटेज साइट को संरक्षित करके रख दें और नई पीढ़ी उस तक पहुँचे ही नहीं या फिर उसे समझे ही नहीं, तो क्या हमारा उसको संरक्षित करने का उद्देश्य पूरा हो जाता है?
1: पूरा तो नहीं होता, पर फिर भी करने की ज़रूरत है कि लोग पहुँच रहे हो ना पहुँच रहे हो,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: हमें ये भी देखना है कि हमें आइंदा बचा के रखना है उसको। पर हाँ, कम्युनिकेशन जिसके हम लोगों तक ये बात पहुंचा सकें कि ये चीज़ें हैं, और मैं सबसे ज़्यादा उस पे जोर दूंगी कि हमारे आसपास क्या धरोहर है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। हम ये ना सोचें कि अगर हम दिल्ली में नहीं रह रहे तो दिल्ली के जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारा क्या लेना देना। हर कोने में हमारे देश के इतनी तरह तरह की हेरिटेज है, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे वो क्राफ्ट ट्रेडिशंस हो, चाहे वो खान पान हो, तरह तरह की हेरिटेज है, तरह तरह के ट्रेडिशंस हैं, उस सब से हम जुड़ सकते हैं और अपने आसपास क्या है हमें पहले वो देखना है।
0: जी बिल्कुल, कहते हैं ना कि हम अपने अतीत को सिर्फ इसलिए संरक्षित नहीं करते कि वो पुराना है, बल्कि उसे इसलिए संरक्षित इसलिए करना चाहते हैं, उसे इसलिए बचाना चाहते हैं कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उससे कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ सकें और अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। मैम मेरा अगला सवाल है यही रहेगा कि आजकल टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है, जैसे आपने अभी बात की थी 3D स्कैनिंग के बारे में, डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में, आजकल AI भी आ गया है, तो क्या मतलब टेक्नोलॉजी का कितना रोल है हेरिटेज कंजर्वेशन में?
1: एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हो तो नए ईजाद होते ही रहते हैं हर वक्त, टेक्निकल एडवांसमेंट्स होते रहते हैं, चाहे वो नेचुरल हेरिटेज में हो चाहे वो कंजर्वेशन में हो। पर जैसे कि हेरिटेज जो कम्युनिकेशन है, स्टोरीज बनाना हेरिटेज के बारे में, उसको पॉपुलराइज करना, उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज का बहुत फ़ायदा है। और रिकॉर्डिंग आज हम जिस तरह से, जैसे एक हम एग्जांपल दे रहे थे कि लैंग्वेजेस लूज हो रही हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसको किस तरह से आप रिकॉर्ड करके रख भी सकें और आसानी से ट्रांसलेट कर सकें ताकि लोग उसको समझ सकें ज़्यादा और ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच जाए। तो उस तरह के डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज।
0: तो आई थिंक जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और चाहे आप घर में भी आपके पास कोई चीज़ है तो आप उसको भी डिजिटल तरीके से आप उसको कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। और साथ साथ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम अपने युवाओं को हेरिटेज से जोड़ने के लिए कर सकते हैं। तो मैम क्योंकि समय बहुत थोड़ा सा बचा है, तो चलते चलते हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो भी, और यदि वो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि करियर में इसे चुने या नहीं चुने, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा?
1: हेरिटेज हम लोग सबके लिए है, हम सब उससे जुड़ सकते हैं, और आपका कितना इंटरेस्ट है अपनी खुद की हेरिटेज और दूसरों की हेरिटेज के लिए, पूरी वर्ल्ड हेरिटेज के लिए और अपने देश की हेरिटेज के लिए, अगर आपको उसमें आप में पैशन है तो आप जरूर एक करियर इसमें बना सकते हैं।
0: क्या बात है, मैम ने कितनी खूबसूरत तरीका बताया कि यदि आपका इंटरेस्ट है तो सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यदि इंटरेस्ट नहीं है ना तो जनाब मुझे लगता है आपको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी पुरानी पीढ़ियों के हर उस सपने को जी सकें जो उन्होंने आपके लिए देखा था, या फिर आप अपने सपने को चाहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं उन्हें देख सकें, आपके इंटरेस्ट को वो महसूस कर सकें, तो आपको उन्हें हेरिटेज से जोड़ना होगा, और इसके लिए आपको सबसे पहले खुद जुड़ना होगा। इस विश्वास के साथ कि आपको आज का रेनबो हेल्पलाइन पसंद आया होगा और आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते होंगे, तो चूंकि इसके लिए ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट की सारी जानकारी आज आपको मिल गई होगी, तो मैं रश्मि आपसे लेती हूँ यहीं पर इजाजत, और साथ साथ शुक्रिया करती हूँ।

0: ये आज के एक्सपर्ट डॉक्टर स्वप्ना लिडल का, जिन्होंने इतना कीमती समय देकर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत की और हमारे लिसनर्स को इतने सवालों का जवाब दिया।
1: बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू सो मच। और चलते चलते आप सभी के लिए ये प्यारा सा ट्रैक सिर्फ और सिर्फ रेनबो हेल्पलाइन के आज के अंक में। इसी के साथ रश्मि को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

नमस्कार, दो बज चुके हैं। पेश हैं आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समय

सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार के 2000 रुपए से अधिक के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने के निर्णय संबंधी याचिका पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और एआईआईबी निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर के दोहा पहुंच गई हैं। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में रबी अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन किया। मत्स्य पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में आज पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। राष्ट्र आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी जयंती पर भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के अंतर्गत काबुल के सरकारी अस्पताल के लिए जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा सामग्री की एक खेप भेजी है। भारतीय शेयर बाजार के सेंसेक्स के 1000 अंक गिरने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी गई। निफ्टी 299 अंक लुढ़क गया। और एशियाई खेलों में अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं। ये थे इस घंटे के आकाशवाणी मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर आपका फेवरेट प्रोग्राम आशियाना। और आशियाना में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त आरजे शालिनी। दोस्तों, आशियाना में हम बात करते हैं घर की, क्योंकि घर ना सिर्फ चार दीवारों या कमरों का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर अलग अलग आदत, पसंद और सोच वाले लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन जहाँ पर चार लोग भी एक साथ रहते हैं ना, वहाँ पर कुछ नियम, कायदे, कानून, मतलब कुछ ऐसे नियम बन ही जाते हैं जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी है। लेकिन क्या घर के जो नियम होते हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं? लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ नियम ऐसे होते हैं जिसे घर में रहने वाले सभी लोगों को फॉलो करना होता है, चाहे वो समय पर खाना खाने की बात हो, एक दूसरे की बातों को तवज्जो देने की बात हो, या फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से रखने की बात हो। और साथ ही साथ परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना भी बहुत ज़रूरी है, और ये जिम्मेदारी जितनी बड़ों की है उतनी ही बच्चों की भी है। तो इसीलिए घर के नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। तो आज इन्हीं नियमों के बारे में होगी बात आशियाना में।

वैसे आपके घर में भी कोई अनसेट रूल होगा तो आपको वो याद आ रहा होगा कि हमारे घर में भी नियम है, और आप भी कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे।

परिवार के लोगों के बिना ना जीवन बिताना खराब ही लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई एक व्यक्ति भी परिवार से दूर चला जाए थोड़े समय के लिए ही सही, तो उसकी कमी बड़ी खलती है। लेकिन जब साथ में होते हैं तो नियमों की बात हम ज़रूर करते हैं, और इन्हीं नियमों की बात हम आज कर रहे हैं आशियाना में। लेकिन दोस्तों होता क्या है ना, नियम बनाना तो आसान है, लेकिन उन नियमों को अपनाना तभी आसान होता है जब परिवार के सभी जो मेंबर्स होते हैं वो उसकी वजह को समझें। और ख़ासकर अगर बच्चों की बात करूं तो बच्चों पर आप कोई भी

नियम थोप नहीं सकते, क्योंकि आप कहेंगे कि ऐसा करना है, ये नियम है, तो वो उन पर बिल्कुल भी असरदार नहीं होगा, बल्कि आपको उन्हें ये समझाना होगा कि ऐसा क्यों करना है। जैसे रात को भले ही समय पर सोने की बात हो, क्योंकि सिर्फ शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए ही समय पर सोना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पढ़ाई के लिए भी सुबह का टाइम बेहद अच्छा बताया जाता है, जहाँ रात को समय पर सोकर बच्चे समय पर उठकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, जो उनकी मेमोरी में भी रहेगा। लेकिन होता क्या है ना कि बच्चों को आप लॉजिकल रीजंस देते हैं ना, तब वो उन नियमों को मानने के लिए तैयार होते हैं, बजाय इसके कि आप कहें कि नहीं ऐसा करना है, क्योंकि उनको रीज़न चाहिए। इसीलिए ज़रूरी ये है कि जब नियम बनाए जा रहे हैं तो सबसे बातचीत की जाए और उसी के बाद नियम बने, तो बच्चों को भी ये लगेगा कि नियम बनाने की जो बातचीत है उसमें वो शामिल हुए हैं, उन पर नियम थोपे नहीं गए हैं, तो वो अपना इन्वॉल्वमेंट होने के बाद हो सकता है कि वो उन नियमों को पूरे दिल से माने। लेकिन नियम सिर्फ बच्चों पर ही लागू नहीं होते जनाब, वो बड़ों पर भी लागू होते हैं। तो क्या बड़े भी उन नियमों को पूरी शिद्दत से मानते हैं? करेंगे इस पर बात, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है, HIV AIDS असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या

0: संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। बाहर क्यों बैठे थे, रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: जी दोस्तों, FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम आशियाना और हम बात कर रहे हैं घर के नियमों की। दोस्तों, बच्चों पर तो हम चाहते हैं कि बहुत सारे नियम उन पर लागू कर दिए जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं घर के जो नियम होते हैं वो बड़ों पर भी लागू होते हैं। क्योंकि अक्सर कर होता क्या है, घर में बच्चों से कहा जाता है कि मोबाइल कम चलाओ, खाने के टेबल पर फ़ोन मत लेकर आओ, अपनी चीज़ों को खुद संभाल कर रखो। लेकिन क्या यही नियम बड़ों पर भी लागू होते हैं? कई जगह पर ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बच्चे खाना खाते समय मोबाइल और टीवी से दूर रहें, तो शुरुआत हमें खुद करनी होगी। क्योंकि जो नियम हम खुद नहीं फॉलो करेंगे वो बच्चे कहाँ से करेंगे। अगर बच्चों से ये कहा जाता है कि बात करते समय सामने वाले की बात बीच में नहीं काटनी है, तो हमें भी वही आदत अपनानी होगी। क्योंकि बच्चे सिर्फ हमारी बातें नहीं सुनते, वो हमारा व्यवहार देखते हैं। इसीलिए वही नियम कारगर साबित होता है जिसमें परिवार के बड़े भी जिस नियम को निभाते हैं, बच्चे ऑटोमेटिकली उस नियम को फॉलो करने लगते हैं। इसीलिए ज़रूरी ये है कि जो भी नियम आप अपने घर में बना रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने व्यवहार से उसे अपने बच्चों को सिखाइए। क्योंकि ज़रूरी ये है कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है ना, वो अच्छी बातें सीखे। तो कहीं ना कहीं एक नियम ऐसा भी होता है कि बच्चों को सिखाने के लिए ऑटोमेटिकली आपको अपनी बुरी आदतें ना छोड़नी होंगी।

आप कहाँ गाने के साथ गुम हो गए? आप तो यहीं पर आइए, आकाशवाणी रेनबो के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना और बात हो रही है घर के नियमों की। क्योंकि कई बार जब आप गुम हो जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप घर की जिम्मेदारियों के बारे में भूल जाते हो। और घर का जो काम होता है वो किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, जैसे कि चाहे वो बिस्तर ठीक करने की बात हो, स्कूल बैग को ऑर्गेनाइज तरीके से रखने की बात हो, खिलौने या किताबों को जगह पर रखना हो, या फिर खाने के बाद अपनी प्लेट को सिंक में रखना हो। ये जो छोटी छोटी से काम होते हैं, इन्हीं से बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं। लेकिन बड़े लोगों को भी इन कामों में एक दूसरे का साथ देना है, तभी तो घर का बोझ जो है वो किसी एक पर नहीं पड़ेगा। परिवार में एक अच्छा नियम आप ये भी रख सकते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए हर बार आप किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें, अपने काम खुद करें। और अगर कोई और भी कर रहा है और आपको लगता है कि आपके पास समय है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। इससे आपका घर ऑर्गेनाइज रहेगा और हर मेंबर को ये भी एहसास होगा कि ये घर सिर्फ उसका रहने का स्थान नहीं है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ जो आपकी बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रांग होगी। घर में खुशियों का रंग भरने के लिए एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बेहद ज़रूरी है। और अगर बात हो नियमों की, तो कैसे कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इस पर करेंगे बात इस गाने के बाद।

0: होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: दोस्तों, प्रोग्राम आशियाना में बात हो रही है घर के नियमों की, और अगर बात करूं नियमों की तो सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ा नियम पता है क्या है घर में? वो है एक दूसरे का सम्मान। क्योंकि उम्र में छोटे हों या बड़े, हर सदस्य की बात सुनी जाए, ये बहुत अहम बात है। हाँ, ये हो सकता है कि आप एक दूसरे की बात से सहमत ना हो, लेकिन अपमान नहीं करना है। गुस्सा आ सकता है, लेकिन गुस्से में भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बच्चों को भी अधिकार मिले कि वो अपनी बात कह सकें, और बड़े भी धैर्य के साथ जिम्मेदारी के बाद उनकी बात सुने तो परिवार में जो माहौल होगा ना, वो काबिले तारीफ होगा और बहुत ही खुशी के रंग वहाँ पर नज़र आएंगे। क्योंकि समस्याएं तो सब जगह होती हैं, नियम कायदे चाहे आप कितने भी बना लें, लेकिन बात जब उलझेगी ना तो वो बातचीत से ही सुलझेगी। इसलिए घर का एक जो नियम है वो ये ज़रूर बनाइए कि चाहे कितनी भी असहमति क्यों ना हो, लेकिन एक दूसरे से सम्मान के साथ बात की जाएगी।

0: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार, धन्यवाद सभी श्रोताओं को कि आप हमारे कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
0: दुनिया को खुश करने की नहीं, अपने घर परिवार और अपनों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका परिवार खुश है तो आप सबसे खुश नसीब इंसान हैं।
1: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और सुल्तान अंसारी जी का।
0: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद अखिला प्रसाद जी का। उन्होंने लिखा है,
1: अजीत जी और विमलेश जी, जापानी मशीनों को रिटायर करने का विषय बहुत ही शानदार था। सच कहूँ तो इस विषय ने मुझे 15 साल पीछे पहुँचा दिया
0: जी,
1: और मेरे पुराने वाहन के साथ बिताई मीठी यादें ताज़ा कर दी
0: जी।
1: मेरा स्कूटर बहुत पुराना था और मैं उसे बेचना चाहता था। यकीन मानिए कि मैंने भी ठीक वही किया जो जापानी लोग करते हैं। मैं अपने स्कूटर के सामने खड़ा हुआ, मैंने प्रार्थना की और अपने वाहन से कहा, तुमने मुझे इतने सालों तक बिना किसी दुर्घटना के चलाया, तुमने हर समय मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा।
0: ये कहते हुए मैं भावुक हो गया और आखिरकार मैंने अपना स्कूटर रिटायर कर दिया और एक कार खरीद ली। कार होने के बावजूद मुझे उस पुराने स्कूटर को चलाने का वो सुकून कभी नहीं मिला जो मैंने अपने प्यारे स्कूटर के साथ बिताए। उन शानदार पलों को अपने जीवन में कभी वापस नहीं पा सका। आप दोनों बड़ी मेहनत करते हैं। उमंग में इस दुर्लभ विषय को उठाने के लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी। और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। लिखते हैं,
0: 2 सितंबर के कार्यक्रम में आपने जापान में पुरानी मशीन को हटाने से पहले उस मशीन के सामने खड़े होकर नतमस्तक होकर धन्यवाद करने की परंपरा के बारे में बताया। ये बहुत ही शिक्षाप्रद और मार्मिक सीख हमें देता है कि आज हम जिस जगह पर हैं या हम जो कुछ भी हैं, इन पर अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरुजनों और अपने परिवार का योगदान, सहयोग, साथ और उनका आशीर्वाद जरूर जुड़ा हुआ है। अतः उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अपने अतीत को कभी न भूलें, चाहे हम कितनी ही शोहरत और सफलता हासिल कर लें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है मुंडा टोला बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम जी का।
0: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत, हेमंती प्रजापति लिखते हैं,
1: उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा सादर प्रणाम। हम आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है।
0: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
1: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम की कार्यक्रम समीक्षा लिखते समय हम सदैव इस दुविधा में रहते हैं कि किस अंक की समीक्षा लिखी जाए और किस अंक को छोड़ा जाए, क्योंकि हम उमंग का प्रत्येक अंक सुनते हैं और हमें हर अंक बहुत ही भाता है।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: आगे लिखते हैं, 4 सितंबर के अंक में एप्पल मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश सत्यानंद स्टोक्स, जिनका वास्तविक नाम सैमुअल इवेंस स्टोक्स जूनियर था, जो अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की निस्वार्थ सेवा हेतु हिमाचल प्रदेश में आए, कुष्ठ रोगियों के तन मन धन से सेवा की और एक सबसे बड़ा कार्य हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों के लिए उन्होंने किया कि अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधों को मंगवाकर उनकी खेती की और पूरे देश और विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम प्रमुख सेब उत्पादक केंद्र के रूप में विख्यात कर दिया
0: जी।
1: ऐसी नायाब जानकारी मुहैया कराकर पूरी उमंग टीम ने हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप दोनों का हृदय से धन्यवाद।
0: आप सबको भी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए हमारा आभार। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था श्रोताओं कि राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था।
0: इसका उत्तर है साथियों, राष्ट्रगान जन गण मन को स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वरबद्ध किया था।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था कि साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया था।
0: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। साइकिल का आविष्कार जर्मनी के कार्ल वॉन ड्राइस ने सन 1815 में किया था।
1: हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और इसके आविष्कार से जुड़े मुख्य 3 वैज्ञानिकों के नाम बताइए।
0: श्रोताओं, इसका उत्तर है थर्मामीटर को हिंदी में ज्वरमापी यंत्र कहते हैं। इससे जुड़े मुख्य वैज्ञानिक हैं गैलीलियो, ग्रेबियल फेरेनहाइट और स्वीडन के एंडर्स सेल्सियस।
1: हमारा अगला

0: प्रश्न था, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाइज़लो बायरो ने।
0: हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द यानी स्टेथोस्कोप किस भाषा से आया है?
1: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक थे फ्रांस के डॉक्टर रेने लेनेक। स्टेथोस्कोप नाम दो ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपियन यानी देखना या निरीक्षण करना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नों में प्रतिभागिता के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है?
0: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं।
1: जी,
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बोलने वाली माध।
1: NCERT की कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक सुंदर और हास्य प्रधान लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि हमें कोई विचार स्थापित करने से पहले अच्छी तरह से तथ्यों की छानबीन कर लेनी चाहिए।
2: एक जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में ही घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा,
3: इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वो विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा।
2: यह सोचकर वह उस मांद में एक ओर छिप कर बैठ गया। उस मांद में दधिपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा,
3: हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य ही कोई सिंह घुसा बैठा है।
2: उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा,
3: ए मेरी मांद, ए मेरी मांद।
2: पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा,
3: अरे तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू ये भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा।
2: अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा,
3: आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही।

0: उसने सोचा,
1: ये मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूं। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा।
0: यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी, आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि
2: इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना।
3: अभी आपने सुना यह हास्य प्रधान खूबसूरत कार्यक्रम बोलने वाली मांद, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम धन सिंह थापा।
4: इस कार्यक्रम के द्वारा भारत की स्थल सेना के जाबाज और पराक्रमी सैनिक धन सिंह थापा के जीवन और भारत चीन के युद्ध के दौरान उनके शौर्य के बारे में बताया गया है, जिसके कारण उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: अरे पता नहीं आज गांव के मुखिया जी ने सभी गांव वालों को क्यों बुलाया है।
1: देखते हैं।
2: अरे वो भी अचानक।
3: अरे भैया मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, चलो सभा में पता चल ही जाएगा।
4: अरे देखो देखो मुखिया जी आ गए।
0: लेकिन साथ में फौजी भाई धन सिंह थापा का परिवार भी है, ऐसा क्यों भाई?
2: भैया कोई खास बात है जरूर।
3: हाँ, अरे भैया कल देर रात ना एक फौजी गाड़ी भी गांव में आई थी।
2: अच्छा,
3: कुछ फौजी धन सिंह के घर आए थे।
1: हाँ,
3: बस थोड़ी देर रुके और फिर चले गए।
2: अरे भैया कुछ पता नहीं जाने क्या क्या मसला है।
5: ठीक है,
2: बिल्कुल
5: चलो। भगवान सर
2: क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा।
5: सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाई और बहनों, आज एक शोक सूचना देने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है।
6: शोक सूचना?
5: हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं पड़ोसी देश चीन से हमारा युद्ध समाप्त हुआ है।
7: जी जी मुखिया जी, बहुत बहादुरी से युद्ध किया था हमारी भारत की सेना ने।
5: हाँ बिल्कुल, हमें अपने वीर सैनिकों पर गर्व है और हमारे गांव के लिए तो और भी गर्व की बात है कि हमारे भाई धन सिंह थापा इसी गांव से है।
2: वो भी तो मोर्चे पर लड़ रहे थे, उनका कोई समाचार?
5: हाँ, कल रात भारतीय सेना द्वारा सूचना दी गई कि
8: सब ठीक तो है ना मुखिया जी?
9: कैसे हमारे भाई?
10: बताओ तो
9: थापा जी कैसे हैं?
5: सेना द्वारा सूचना मिली है कि हमारे जांबाज भाई मेजर धन सिंह थापा लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
10: हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हो गया? सेना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, क्या हो गया?
9: कैसे समाचार?
5: हाँ साथियों, शोक समाचार तो है ही, लेकिन एक एक ऐसा समाचार भी है जिसको सुनकर हम सबका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। मेजर धन सिंह थापा को उनकी असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक

0: सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
1: अरे धन्य है हमारी गांव की माटी जिसने ऐसे जाबाज योद्धा को जन्म दिया।
0: अरे वो हमारा गौरव है,
2: हमारा गौरव है।
1: हमारे देश की माटी निहाल हो गई, निहाल हो गई मुखिया जी।
3: मेजर धन सिंह थापा अमर है। मेजर धन सिंह थापा अमर है।
0: साथियों, उनका पार्थिव शरीर युद्ध भूमि से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें संपूर्ण सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रिया संपन्न करनी है।
4: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी।
2: सही कह रहे हैं मुखिया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
3: जब तक सूरज चांद रहेगा,
5: धन सिंह थापा तेरा नाम रहेगा।
3: भारत माता की
5: जय।
3: भारत माता की
5: जय।
6: साथियों, प्रायः ऐसा माना जाता है कि युद्ध का अंत विजय से ही होना चाहिए। चीन से युद्ध में भारत की पराजय हुई, लेकिन राष्ट्रों की हार जीत से परे वीर योद्धाओं की गाथाएं ऐसी होती हैं जो अजर अमर हो जाती हैं।
7: मेजर धन सिंह थापा की शौर्य गाथा एक ऐसा ही जीवंत उदाहरण है।
6: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास एक गांव है। गांव का नाम है सुरम्य।
7: इसी गांव में 10 अप्रैल 1928 को एक नेपाली परिवार में धन सिंह थापा का जन्म हुआ था।
6: स्थानीय लोग बताते हैं कि धन सिंह थापा को बचपन से ही सेना में जाने की प्रबल इच्छा थी। वो भारतीय सैनिकों की वर्दी, उनका अनुशासन और जीवन शैली से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे मैचों में विजय दिलाई थी।
7: और आखिरकार वो दिन आ गया जब 28 अगस्त 1949 को धन सिंह थापा ने भारतीय सेना की 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। गोरखा रेजिमेंट अपने अपूर्व शौर्य और युद्ध कौशल के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है।
6: गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि एक गोरखा 10 सैनिकों पर भारी पड़ता है। सन 1962 के प्रारंभिक महीनों से ही भारत चीन सीमा पर युद्ध की आशंकाएं सर उठाने लगी थी।
8: जय हिंद साहब, आपने मुझे याद किया।
4: जय हिंद धन सिंह। हमारी सीमा पर इस समय जो हालात चल रहे हैं उन्हें तुम अच्छी तरह से जानते हो।
8: जी श्रीमान, मुझे इसका भान है।
4: बेशक अब तक चीन की फौज ने हमला नहीं किया है, लेकिन उनकी हरकतों और जमावड़े को देखकर ये बात पक्की है कि वो हमला जरूर करेंगे।
8: जी श्रीमान, लगता तो यही है। सुना है वे फौजियों की संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं।
4: तुमने ठीक सुना है धन सिंह। हम चाहते हैं कि तुम अपने दल के साथ पेंगोंग झील के उत्तर की ओर सिरी जाप वन चौकी पर फौरन तैनात हो जाओ। तुम्हारी प्लाटून का काम होगा हर हाल में चीनी सैनिकों की बढ़त को रोकना।
8: जी श्रीमान, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दुश्मन आगे बढ़ने ना पाए।
4: धन सिंह, हमें तुम पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं इस काम को तुम बखूबी अंजाम दोगे। बेस्ट ऑफ लक माय सन, बेस्ट ऑफ लक।
8: थैंक यू सर।

0: मेजर धन सिंह थापा अपनी टुकड़ी के साथ सिरिजा पोस्ट पर तैनात हो गए। मेजर धन सिंह थापा की टुकड़ी में मात्र 28 जवान थे।
1: तभी 19 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना के करीब 600 सैनिकों ने तोपों और

0: जिसके कारण उन्हें हमला करने में आसानी थी। सूरज ढलते ही अंधकार छा गया। 19 अक्टूबर का दिन बीत गया था। रात शांत थी, लेकिन ये वो शांति थी जो तूफान से पहले की होती है। अक्टूबर 1962 को सुबह 6 बजे चीन की सेना की ओर से भीषण आक्रमण हुआ।
1: साथियों, आगे बढ़ो, अभी नहीं तो कभी नहीं।
2: सब हमारे पास गोलियां बहुत कम बची हैं, दुश्मन बहुत अधिक हैं।
3: तो हथगोलों का इस्तेमाल करो। तुम हथगोलों का इस्तेमाल करो। मैं वायरलेस पर बेस कैंप को संदेश भेजता हूँ। ठीक है कि वो जल्दी से जल्दी सहायता मिले।
1: पर इनको रोक के रखो।
3: हेलो हेलो, सिरी जापान से मेजर धन सिंह थापा, दिस साइड, ओवर।
4: सिग्नल ऑफिसर वेद व्यास, दिस साइड, संदेश दीजिए मेजर।
3: हमारे पास कारतूस खत्म हो रहे हैं, जवान भी मारे जा रहे हैं, जल्द से जल्द हथियार और कुमुक भेजिए, ओवर।
4: मेजर, इस मौसम में हमें सहायता भेजने में थोड़ा विलंब होगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं भेजने की, ओवर।
3: तो जल्दी भेजिए, दुश्मन आगे बढ़ता जा रहा है, अब हम मार कर ही मरेंगे। हेलो हेलो हेलो, हमारा संपर्क रेडियो नेटवर्क से ही टूट गया। अरे ये क्या, वो सिपाही बंदूक फेंक कर टेंट में क्यों भागा जा रहा है? देखता हूँ उसे। अरे
5: उसकी बंदूक यहाँ पे रखी है, इसे लेके चलता हूँ।
3: ए सुनो, रुको रुको रुको, यहीं पे। कायर बनकर जीने से बहादुर बनकर मर जाना बेहतर है, तो संभालो अपनी बंदूक और एक बार फिर मौत बनकर टूट पड़ो इन चीनियों पर। जय मां काली।
1: जय।

0: युद्ध भीषण होता जा रहा था। अब मेजर थापा के पास मात्र 3 जवान ही बचे थे। तभी एक बम उनके बंकर पर आकर गिरा। मेजर थापा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और इससे पहले कि वो बम फटता, वो बंकर से बाहर कूद गए और अपनी खुकरी से दुश्मन को मारने लगे।
1: अचानक एक चीनी सैनिक ने राइफल की बट से उनके चेहरे पर प्रहार किया। वो जमीन पर गिर गए और उन्हें बंदी बना लिया गया।
2: छोड़ो।
0: दुर्भाग्यवश उनके युद्धबंदी बनाए जाने की सूचना भारतीय सेना को नहीं मिली। सबने यही समझा कि मेजर धन सिंह थापा वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना के अनुरोध पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके पुश्तैनी गांव सुरम्य में उनके अंतिम संस्कार की औपचारिकताएं भी पूरी कर दी गईं।
1: उधर चीन की सैनिक जेल में मेजर थापा को अकथनीय यातनाएं दी गईं। उनसे कहा गया कि उनकी रिहाई में भारत सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हर रात की एक सुबह होती है। जेल में मेजर थापा की दोस्ती एक छोटे चीनी लड़के से हो गई जो नेपाली मूल का था।
0: वो छोटा लड़का मेजर थापा के लिए जेल में खाना लाता था। मेजर थापा उससे बातें करते, अपने दुखों को साझा करते। एक दिन मेजर थापा ने अपने परिवार के नाम एक चिट्ठी लिखी।

0: और अपने छोटे दोस्त की मदद से उस चिट्ठी को थोड़ी ही दूर सीमा पार भारतीय पोस्ट में डलवा दिया।
1: चिट्ठी मिलते ही घर परिवार में हलचल मच गई।
2: देखो चिट्ठी आई है। माँ देखो
3: चिट्ठी, ला दिखा तो।
4: हाँ, अरे ये तो उनकी चिट्ठी है, तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी है। अरे
2: अरे पिताजी उनकी चिट्ठी आई है। गांव वालों देखो ये जिंदा है, उन्होंने चिट्ठी भेजी है। हाँ, देखो गांव वालों देखो ये चिट्ठी आई है।
5: जिंदा है? अरे बहुत खुशी की बात बेटा।
2: ओ
5: जिंदा है धन सिंह थापा।
1: सरकारी स्तर पर वार्ता के फल स्वरूप मेजर थापा चीन के बंदी गृह से रिहा होकर 10 मई 1963 को वापस भारत आए। सेना मुख्यालय में इस महान योद्धा और परम वीर का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सेना में पुनः कार्य आरंभ किया और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचे। 5 सितंबर 2005 को 77 वर्ष की आयु में इस महान पराक्रमी योद्धा का निधन हो गया। देश के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण और अदम्य साहस के लिए वो सदैव ससम्मान याद किए जाएंगे। उन्हें हमारा शत शत नमन।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम धन सिंह थापा। हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
7: जगबंधु,
6: चेतना,
7: अर्शद,
6: सौम्या,
7: प्रसून
6: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयू यादव के साथ
7: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार। उमंग।

0: याद से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को के यानी कमल किशोर का नमस्कार। दोस्तों, आज वर्ल्ड रेबीज डे है और इस वर्ष इसकी थीम है स्ट्रॉन्गर टुगेदर, यानी एक साथ मजबूत। और आज का हमारा ये कार्यक्रम रेबीज पर ही केंद्रित है और इस रेबीज अवेयरनेस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कॉर्निंग इंडिया।
2: बच्चों को एक इम्पोर्टेंट रूल सिखा दें, डॉग या कोई जानवर काट ले या स्क्रैच कर दे तो छुपाना नहीं,
3: तुरंत घाव को साबुन और चलते पानी से 15 मिनट तक वॉश करो और बिना डिले नियरेस्ट हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर जाओ। रेबीज वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है।
2: बाइट या स्क्रैच छुपाओ नहीं, वॉश करो, हॉस्पिटल जाओ। कॉर्निंग इंडिया द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों, हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि पशु प्रेमी हैं, पशुओं के प्रति दया भाव रखते हैं और अपने घरों में उन्हें बड़े प्यार से पालते पोसते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। जी हाँ, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, घोड़ा पालना ये तो आम बात है, लेकिन कई बार उन पशुओं का ख्याल रखते रखते उस वक्त कई बार गलती से उनके दांत लग जाते हैं या वो काट लेते हैं, लार लग जाती हैं। अक्सर बाहर सड़कों या गलियों में भी आवारा कुत्ते, बिल्ली या बंदर से सामना हो जाते हैं, काट लेते हैं। ऐसे में तुरंत इलाज ना कराएं तो रेबीज का खतरा बढ़ जाता है। कुत्ते रेबीज संक्रमण के, कहा जाता है कि, बड़े स्रोत होते हैं। तो आज हम रेबीज पर अपने स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ डॉक्टर जुगल किशोर जी से जानकारियां लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर जुगल किशोर जी, हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार।
4: नमस्कार सभी श्रोताओं को, मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: जुगल किशोर जी, आप कम्युनिटी मेडिसिन विभाग सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं। और दोस्तों, आप भी इसी वक्त फोन करके डॉक्टर से रेबीज के विषय में जानकारियां ले सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं। और सवाल पूछने के लिए हमारा फोन नंबर है 0112342108 और हमारा दूसरा फोन नंबर है 2342108 2। एक बार फिर से हम आपको फोन नंबर दोहराए देते हैं, दिल्ली का एसटीडी कोड जरूर लगाइएगा इन दोनों फोन नंबर से पहले, 011 और उसके बाद 2342108 0, और दूसरा फोन नंबर 2342 यानी कि 2342108 2। और इसके अलावा, फोन करने के अलावा भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, यानी कि आप मैसेज भेज सकते हैं। और मैसेज भेजने के लिए हमारा नंबर है 9868107070 यानी कि 9868107070। इसके जरिए आप मैसेज भेज सकते हैं। और जब तक आप हमसे, हमारे फोन से जुड़ते हैं, तब तक आपकी ओर से मैं डॉक्टर से रेबीज के विषय में कुछ जानकारियां ले लूं तो कैसा रहेगा? डॉक्टर साहब
4: जी,
1: बिल्कुल आसान शब्दों में ये बताइए कि ये रेबीज क्या होता है, कैसे फैलता है?
4: रेबीज एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, ये बहुत तरह के ऐसे जीव हमारे इन्वायरमेंट में लोगों के अंदर होते हैं या एनिमल्स में होते हैं। वो कभी कभी, इसको हम जीनोटिक डिजीज़ भी कहते हैं, कि जूनोटिक का मतलब कोई एनिमल, उससे हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन आया तो उसको जूनोटिक बोलते हैं। हमारे से भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर कुत्तों से, बिल्ली से या जंगली जानवरों से जो इन्फेक्शन आता है, तो उसमें एक ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है जिसको रेबीज़ बोलते हैं। रेबीज़ एक वायरल डिजीज़ है, रेप्टो वायरस से होता है। और अगर कोई रेबिड डॉग है वो अगर काटता है तो उसके वायरसेस हमारे नर्व के थ्रू ब्रेन में जाते हैं और उसकी वजह से मौत होती है। तो यूजली ये देखा गया है कि अगर रेबीज डॉग काटता है और आपको रेबीज शुरू हो जाए या हो जाए तो उसकी जो मॉर्टलिटी है वो 100% है, फैटलिटी 100% है। इसीलिए इसको ख़तरनाक भी माना जाता है और कोशिश करते हैं कि इसको जितना भी हम प्रिवेंशन से हम कोशिश करें, तो प्रिवेंशन भी 100% इसका श्योर है
1: जी,
4: कि इससे पहले अगर हम वैक्सीन लगवा लें या जो तरीके हैं वो अपनाएं तो हम इससे बच सकते हैं
1: जी। यानी कि मोर्टेलिटी रेट अगर ज़्यादा हो सकता है अगर आपने इसका समय पर इलाज ना कराया। तो डॉक्टर साहब, इसमें जब रेबीज हो जाता है तो उसके किस प्रकार के अनुभव होते हैं, क्या लक्षण नज़र आते हैं?
4: जैसे किसी रैबिट डॉग ने काटा, तो अगर उसको रेबीज है तो जहाँ पर काटा है वहाँ पर टिंगलिंग सेंसेशन होगी, विद इन
1: झंझनाहट होगी,
4: झंझनाहट, और उसमें खुजली हो सकती है, उसके बाद में फिर उसको बुखार, सर में दर्द, ये शुरू होता है। तो और फिर उसको जो जो खतरनाक सिम्टम्स शुरू होते हैं वो हमारे हाइड्रोफोबिया, यू नो एरोफोबिया, या मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होना, या ट्विचिंग होना, या फिर कहना चाहिए सीजर तक होते हैं इसमें। तो वो ज़्यादातर सिम्टम्स जो हमारे नर्व्स को एक्टिवेशन की वजह से होते हैं या ब्रेन के अंदर हमारे इंसेफ्लाइटिस हो जाती है उसकी वजह से होते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये हाइड्रोफोबिया और एरोफोबिया के विषय में हम आगे चल करके बातचीत करेंगे, लेकिन जैसे कि अभी आपने बताया कि जो लक्षण नज़र आते हैं, झुंझुनाहट होती है, क्या उसमें खुजली भी हो सकती है, क्या वोमिटिंग भी हो सकती है?
4: बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जब हमारा मेनिनजाइटिस या मेनिनजीस इन्फ्लेम करता है तो ये सब ब्रेन से संबंधित जो भी सिम्टम्स हैं वो होते हैं उसको।
1: जी, तो ये ब्रेन से सिम्टम होते, ब्रेन से होते हैं, नर्व सिस्टम से इसमें कुछ परेशानी हो जाती है जिसकी वजह से लोगों की डेथ भी हो सकती है, ये खतरनाक हो सकता है।

0: लगता है। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो आपने अभी कहा कि ये जो हाइड्रोफोबिया है, हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या हुआ?
1: हाइड्रो मीन्स पानी। पानी जब वो पीता है तो उसके जो गले के अंदर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो पी नहीं पाता है। तो बार बार जब वो कोशिश करता है, जैसे प्यास लग रही है और वो पानी पीना चाह रहा है, तो उसके गले में कंस्ट्रक्शन होता है और उसकी वजह से वो पानी नहीं पी पाता। तो बार बार कोशिश करता है और पानी नहीं पी पा रहा है। उसी तरह से आपका एयर का है कि उसको ब्लोइंग ऑफ द एयर होती है जो कि हमारे पंखे से या उससे, तो उसमें उसको नर्व, जो हमारी नर्व है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसकी कंट्रैक्शंस होते हैं उसके मसल्स के, तो उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है।
0: डॉक्टर साहब, हमारे साथ में कुछ श्रोता जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या परेशानी है। हेलो।
2: हेलो
0: जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम।
2: जी नमस्कार, मोहम्मद काजिम बोल रहा हूँ दिल्ली से।
0: जी
1: जी,
0: क्या पूछना चाहते हैं?
2: नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार
2: सर, मेरा पूछना ये है कि ये जो एनिमल अगर मैं बाइट कर ले तो हर जानवर के काटने के बाद इंजेक्शन लगवाना चाहिए या नहीं?
1: जानवरों में बहुत सारे जानवर आते हैं, ज़्यादातर में हम रेबीज के वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन एडवोकेट करते हैं। सिर्फ एक दो ऐसे जानवर हैं जैसे कि चूहा हो गया, रैबिट हो गया, या जैसे खरगोश है या चूहा है, इनमें हम एडवोकेट नहीं करते। बाकी जितने भी जंगली जानवर हैं उनमें हमेशा लगाना होता है, और जो हमारे पालतू हैं उनके अंदर भी हमारे को डिपेंड करता है कि वो ऑलरेडी इम्यूनाइज है और क्या कंडीशन है, कितना उसने काटा है, उसके बेस पर डॉक्टर देखता है और उसके हिसाब से वैक्सीन लगते हैं।
0: जी कासिम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ कहा और अभी सभी जानते हैं कि किसी जानवर के काटने से रेबीज हो सकता है, तो डॉक्टर साहब क्या कभी लार से भी हो सकता है, उसके जानवर के लार से भी हो सकता है, ये किस प्रकार फैलता है?
1: एक्चुअली जब रेबीज जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है उसी तरह से एनिमल के अंदर भी ऐसा, वैसे तो कुछ एनिमल होते हैं जो जिनके अंदर हमेशा वायरस जो होता है वो डॉर्मेंट रहता है या वायरस से उसके साइन सिम्टम नहीं होते। उसमें जो कुत्ता है वो एक ऐसा जीव है जिसमें वायरस हो के भी कभी कभी साइन सिम्टम नहीं होते, लेकिन जब अगर उसको रेबीज हो जाए तो उसको भी पूरे साइन सिम्टम आते हैं, उसको भी बहुत परेशानी होती है सांस लेने में, उसकी राल गिरने लगती है, जैसे ह्यूमन में होता है वैसे राल गिरने लगती है, काटने की कोशिश करता है, सांस नहीं ले पाता है, पानी नहीं पी रहा है, तो वो बहुत घबरा जाता है और कोशिश करता है कि वो है ना इतना चिड़चिड़ा जाता है कि वो चारों तरफ है ना कोशिश करता है, लोगों से डरा हुआ होता है तो काटता है वो।
0: तो डॉक्टर साहब, इसमें भी यही बात है कि जब इंसान बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोधित होता है, तो कुछ उसके जो परेशानी होती है तो कुछ ना कुछ बोल ही देता है।
1: बिल्कुल काटता नहीं है लेकिन डेफिनेटली वो
0: जी
1: लड़ाई झगड़ा
0: लड़ाई झगड़ा। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा से हम ये काटने से वगैरह से हम दूर होते हैं और थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लवली सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौटते हैं।
1: बिल्कुल।
3: पेट या कोई स्ट्रीट डॉग काट ले या स्क्रैच कर दे, घबराना नहीं, बस दो काम तुरंत करो।
4: पहला, घाव को साबुन या चलते पानी से 15 मिनट तक धोएं। दूसरा, बिना डिले नियरेस्ट हॉस्पिटल जाओ और रेबीज वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स कंप्लीट करो।
3: बाइट हो या स्क्रैच, वॉश करो, हॉस्पिटल जाओ। कॉर्निंग इंडिया द्वारा जनहित में जारी।

0: एक इम्पोर्टेंट रूल सिखा दें। डॉग या कोई जानवर काट ले या स्क्रैच कर दे तो छुपाना नहीं।
1: तुरंत घाव को साबुन और चलते पानी से 15 मिनट तक वॉश करो और बिना डिले नियरेस्ट हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर जाओ। रेबीज वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है।
0: बाइट या स्क्रैच छुपाओ नहीं, वॉश करो, हॉस्पिटल जाओ। कॉर्निंग इंडिया द्वारा जनहित में जारी।
2: और आप सुन रहे हैं स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम वर्ल्ड रेबीज डे के अवसर पर। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं और फोन लाइन से भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज ये जो मैसेज सबसे पहले ले रहे हैं और ये हैं प्रकाश चंद्रा जी, रोहिणी दिल्ली से हैं। ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, रेबीज का टीका जानवर के काटने के कितने समय तक लगा सकते हैं? और इन्होंने दूसरा प्रश्न ये भी किया है कि क्या सारे डॉग के काटने से रेबीज हो सकती है?
3: बिल्कुल, ये दो क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें सभी लोगों की एक डाउट रहता है। तो रेबीज़ एक्चुअली सभी डॉग से हो सकता है, अगर वो स्ट्रे डॉग हैं, वाइल्ड एनिमल हैं या पालतू कुत्ते हैं, उनके अंदर भी अगर वो उनमें वैक्सीनेशन पूरा अच्छे से नहीं लगाए तब भी एक ख़तरा बना रहता है। तो ये भी देखा गया कि हमारे जो पालतू कुत्ते हैं उनमें रेगुलरली वैक्सीनेशन नहीं होता, या फिर जब हम उन्हें बाहर लेके जाते हैं अपने सुबह या शाम को, तो वो जंगल में या फिर पार्क में जो नीचे सूंघते हुए चलते हुए जाते हैं, तो उससे भी चांसेस होते हैं उनको यू नो इन्फेक्शन लगने के। तो खतरा हमेशा बना रहता है। तो जब भी काटता है या अपने राल से आपको इन्फेक्ट किया है, मुझे लगता है कि इसका राल जो एक साथ खाने के लिए भी हम मना करते हैं कि आप खाना एक साथ ना खाएं या एक ही बर्तन है उसमें कभी भी शेयर ना करें, क्योंकि एक खतरा हमेशा रहता है। तो जब भी कभी आपको काट ले, और काटने का भी है कि स्क्रैच मारा है जो कि ज़्यादातर कॉमन होता है, या फिर सिर्फ राल से ही उसने या हमारी स्किन इंटैक्ट है और उस पर अपना मुंह लगा दिया, तो हमें सिर्फ वॉश करना होता है, उसमें वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्क्रैच हो तो हमें देखना है कि वो पेशेंट किस तरह का या मरीज़ किस तरह का, अगर उसमें ऑलरेडी इम्यून सिस्टम ख़राब है, आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बनने की क्षमता नहीं है, तो हमें ज़रूरत है कि हम वैक्सीन लगाएं। या फिर जो एक तीसरा तरह का होता है, थर्ड कैटेगरी में, जिसमें खून निकल आता है, तो चाहे वो खून थोड़ा सा निकले या बहुत ज़्यादा निकले, उस कंडीशन में हमें वैक्सीन के साथ साथ में इम्यूनोग्लोबिन भी देना होता है। तो हर कुत्ते का डाउट करके ही चलना चाहिए और लगवाना चाहिए मेरे हिसाब से।
2: जी डॉक्टर साहब, हमसे कुछ श्रोता भी जुड़ रहे हैं, उनसे पहले बातचीत कर लेते हैं।

0: उसके बाद फिर मैसेजेस लेंगे, फिर और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी। जी मेरा नाम संजीव कुमार है, हरियाणा से बोल रहा हूँ सर मैं।
0: जी संजीव जी बताइए।
1: जी मेरा छोटा भाई अमन कुमार, उसकी उम्र 42 साल है, उसको भी ना 10-12 दिन पहले बिल्ली ने काट लिया था, घर में जो दूध पीना बच्चे से बाहर से कहीं से
0: जी,
1: और खून भी निकला था मतलब थोड़ा सा, तो उसका जो पहला टिक्का लगा ना वो जैसे रात को 10-11 बजे काटती थी, वो तो अगले दिन सुबह 10-11 बजे लगा उसका पहला टिक्का। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ की कोई लेट तो नहीं अभी तक तीन टिक्के लग चुके हैं उसको, तो उन्होंने बोला है की आपको 7 तारीख को लगेगा अगले महीने की
0: जी,
1: और वो दिमाग की दवाइयाँ दिखाता है सिज़ोफ्रेनिया है उसको
0: जी, सिज़ोफ्रेनिया भी है।
1: सलाह दे प्लीज इस बारे में
0: जी डॉक्टर।
2: ये आपने बहुत अच्छा किया कि जितना जल्दी हो सका सुबह मॉर्निंग में और हॉस्पिटल में जाके आपने वैक्सीन लगवाना शुरू किया, वो आपको पूरे वैक्सीन अगर गवर्नमेंट के सेटअप में होते हो तो ज़्यादातर इंट्राडर्मल लगाते हैं, बाकी इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, तो उन दोनों में थोड़ा सा 5 डोज मिलेंगी या 4 डोज मिलेंगी उसके हिसाब से, तो आप ऑलरेडी डॉक्टर्स की निगरानी में है और वो जो भी उन्होंने किया है वो अच्छे से किया होगा, पूरे अच्छे से उसको धोया होगा, उसके बाद में उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन दिया होगा, साथ में वैक्सीन शुरू किया है, तो वो ठीक किया है, आपने कोई गलती नहीं की और ना ही कोई डिले किया है, जितना जल्दी हो सके हमें जाकर अपना वैक्सीन शुरू कराना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब इन्होंने कहा कि इनके भाई को रात को बिल्ली काटी थी और उसके बाद में उन्होंने सुबह जा करके इंजेक्शन लगवाया, तो क्या इसमें कुछ टाइम ड्यूरेशन
2: इसमें नहीं, जितना जल्दी हो सके लगवाएं, ऐसा ना वेट करें जितना जल्दी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपने एक दिन रह गया, 2 दिन 3 दिन 7 दिन तो नहीं लगवा सकते, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा है।
0: अच्छा।
2: ना छोटे से बहुत लंबा है, इवन 20 साल तक भी, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि 20 साल तक आप वेट करें और उसका वैक्सीन लगाएं, जब भी आपको लगता है कि मुझे खतरा था मुझे खतरा है तो उस केस में डॉक्टर से सलाह लेकर उसको तुरंत वैक्सीन लगवाना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब जब किसी को कोई जानवर काट लेता है, खासकर कुत्ते की बात कर रहे हैं, तो उसमें किसी प्रकार के कोई ठंडा गर्म किस प्रकार का कुछ शरीर में कुछ महसूस होता है?
2: ऐसा तो नहीं देखने में मिला है कि अगर काटता है तो डेफिनेटली हमारा रिएक्शन करता है बॉडी, उसमें आपको बुखार हो सकता है या उसमें है ना बहुत जलन हो सकती है, वो एक अलग सिम्टम्स हैं जो कि रेबीज़ के नहीं होते, क्योंकि इमीडिएटली उसका वायरस इतना तेज़ी से नहीं करता, डेफिनेटली उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड है, उसके बाद में साइन सिम्टम होते हैं, लेकिन काटने के अपने सिम्टम्स होंगे कि ब्लड आ रहा है, वहाँ पर दर्द होगा, वहाँ पर उसके रिएक्शन हो सकता है, हमारे बॉडी का रिएक्शन हो सकता है, तो वो चीज़ें उसके अंदर डेफिनेटली हो सकती हैं।
0: तो डॉक्टर साहब अभी आपने कुछ देर पहले बताया था कि सीज़र हो जाता है, तो क्या सीज़र तुरंत होने लगता है, कुछ दिनों के बाद होता है या फिर कुछ ड्यूरेशन होता है उसके?
2: जब हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होगा उस केस में सीज़र शुरू होते हैं, तो ये लास्ट स्टेज होती है जिसमें डेफिनेटली उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है, जब सीज़र हो गई, हाइड्रोफोबिया या एरोफोबिया या फिर और दूसरे प्रॉब्लम उसको जो शुरू हुई उसमें, तो वो एंड स्टेज होती है, पेशेंट बहुत ही बुरी हालत में होता है, उसका भी हमारे को चाहिए कि हम उसको कैसे मैनेज करें, हमारे सारे हॉस्पिटल्स में उसको हैंडल करने की यू नो क्षमता नहीं होती, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, हमारे इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल है वहाँ पर इनको ले जाकर रिपोर्ट करना होता है, बहुत सारे स्टेट में अब ये नोटिफाइड हो गया है कि कहीं भी इस तरह का पेशेंट आता है उसको नोटिफाई करें, क्योंकि अभी हमारे पूरे देश में डिफरेंट स्टेट्स हैं जो जहाँ पर इसको नोटिफाई करके पता लगे कि कितने पूरे साल में कितने केस होते हैं, तो इस पर ही कोई एक ऐसा अच्छा आंकड़ा नहीं है हमारे पास कि भाई हमारे 5,000 होते हैं, 10,000 होते हैं, 20,000 होते हैं, तो उसकी वजह से इसको नोटिफाइड करने की ज़रूरत है, और हमारी सरकार ने काफ़ी अच्छे इस पर कदम उठाए कि वो इसको नोटिफाई कर रही है
0: जी। डॉक्टर साहब एक मैसेज लेते हैं, और ये मैसेज लिखा है बलजिंदर सिंह ने, दिलशाद गार्डन नई दिल्ली से, कहते हैं कि स्ट्रीट डॉग को फीड करता है कोई तो उसको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या उसको भी रैबिज हो सकता है? दूसरा प्रश्न इन्होंने किया है कि नाखून से भी रैबिज हो सकता है क्या?
2: नाखून कुत्ते का वो स्क्रैच करेगा तो डेफिनेटली हो सकता है, तो ज़्यादातर वो अपने मुंह लगाते रहते हैं हर पूरे अपने नाखूनों में, और उसमें तो जो उसका लार्वा है या लार है वो इन्फेक्ट कर सकती है,
0: जो सलाइवा होता है
2: सलाइवा
0: जी।
2: इनका जो ये प्रश्न है कि खाना

0: खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए, तो उसके एक रूल्स रेगुलेशन है।
1: यानी कि नहीं, वो पूछ रहे हैं कि किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए।
0: बिल्कुल, उसको जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उन्होंने बताया हुआ है कि हम किस तरह से इनको फीड करें, कहाँ पर फीड करें, कितना फीड करें, कितना इनके संपर्क में आए, वो सारी चीज़ें आप अगर अच्छे से एक वेटनरी डॉक्टर से पूछ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि किस, क्योंकि उसका बिहेवियर डिफरेंट टाइम में अलग होता है। कुत्ता बिल्ली इन सब के अलग अलग बिहेवियर होते हैं, किस तरह से जब आप खिला रहे हैं तो उनका कैसा मूड है उसके हिसाब से आपको चलना होता है, तो वो कभी भी काट सकता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी काफ़ी होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें बहुत सावधानियाँ बरतनी होती हैं
1: जी। और इस प्रकार की कभी कोई परेशानी हो जाए तो अपने डॉक्टर से तुरंत ही संपर्क करनी चाहिए। और इस वक्त आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमसे संपर्क करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 2342-1080, यानी कि 2342-1080, और दूसरा फ़ोन नंबर है 2342-1082। इन दोनों फ़ोन नंबर पे आप हमें इसी वक्त अपने डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, जानकारियां ले सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप का जो नंबर है वो है 9868107070। और इसी नंबर पर मुझे लग रहा है कि एक फ़ोन कॉल भी आ गया है, चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं और उनकी परेशानी सुनते हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मैं जी सेठी पंजाब से आ
1: रही जी, बताएं।
2: अरे मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि आपकी जिंदगी के कुछ लोग शौक होता है कितना पानी जैसे ही है, और क्या है कभी आग चाट लेते
1: हैं। सेठी जी, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रही, एक बार दोबारा आप कॉल कर लें तो बेहतर होगा, हमें भी समझने में आसानी होगी और डॉक्टर साहब से भी बातचीत अच्छी तरह से हो जाएगी, सवाल समझ पाएंगे। तब तक हम एक मैसेज ले लेते हैं, और ये मैसेज आया है अरुण कुमार यादव जी का, और ये हैं मैनपुर डिस्ट्रिक्ट से, छत्तीसगढ़ से हैं इन्होंने। वैसे डॉक्टर साहब, इन्होंने तीन प्रश्न किए हैं, और एक प्रश्न तो जैसे कि हम बातचीत कर ही रहे हैं, कहते हैं कि यदि कुत्ता ने काट लिया तो उसका क्या इलाज है, और इनका दूसरा प्रश्न यह है कि कुत्ता के काटने से कौन सा इन्फेक्शन होता है, और तीसरा इनका सवाल है कि बिल्ली के काटने से कौन सा इन्फेक्शन होता है। क्या डॉक्टर साहब, क्या अलग अलग इन्फेक्शन होते हैं क्या?
0: या आज हम रेबीज़ की बात करें तो रेबीज़ की अगर हम बात करें तो कुत्ता बिल्ली या घोड़ा या काऊ या फिर भैंस या कहना चाहिए और वाइल्ड एनिमल में हमारे बहुत सारे और एनिमल हैं उनसे आपको रेबीज हो सकता है। तो डेफिनेटली कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से एक तो रेबीज़ का ख़तरा है उसके लिए हम करते हैं, दूसरा ये है कि अगर काटा है तो उसको जहाँ पर काटा है वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी दूसरा इन्फेक्शन जो हमारे स्किन पे होते हैं उनसे भी हो सकता है। तो कोशिश ये रहे कि हम उसे साफ़ करें, साबुन और पानी से साफ़ करें, साथ में हम उसमें कोशिश करें कि हम टेटनस टॉक्साइड का एक इंजेक्शन लगा दें, जो कि लगाते हैं ज़्यादातर डॉक्टर्स लगाते हैं
1: जी।
0: तो हम कोशिश करते हैं कि उसको जो भी इन्फेक्शन हो सकते हैं उसके लिए हमें एंटीबायोटिक देना है या फिर और कोई उसमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन देना है तो वो करते हैं, तो डॉक्टर उसके हिसाब से उसको मैनेज करता है
1: जी। डॉक्टर साहब वैसे बहुत सारे सवालात हैं और बहुत सारे यहाँ पर मैसेज भी आ रहे हैं और रेबीज से लेकर के, और आज हम बातचीत कर रहे हैं वर्ल्ड रेबीज डे स्पेशल, यानी कि और ये स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है, और हम बस कुछ ही देर में लौटते हैं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, फिर हम अपने श्रोताओं के साथ लौट आएंगे और उनके सवाल लेंगे।
3: पेट या कोई स्ट्रीट डॉग काट ले या स्क्रैच कर दे, घबराना नहीं, बस दो काम तुरंत करो।
4: पहला, घाव को साबुन या चलते पानी से 15 मिनट तक धोएं। दूसरा, बिना डिले नियरेस्ट हॉस्पिटल जाओ और रेबीज वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स कंप्लीट करो।
3: बाइट हो या स्क्रैच, वॉश करो, हॉस्पिटल जाओ। कॉर्निंग इंडिया द्वारा जनहित में जारी।

0: स्क्वैश की बात कर लेते हैं। स्क्वैश में भारत कमाल कर रहा है, जापान के खिलाफ पहले बढ़त, फिर बराबरी, फिर आखिरी निर्णायक मुकाबले में शानदार जीत। जी हां, भारत ने स्क्वैश कोर्ट पर दम दिखा दिया है। भारतीय महिला स्क्वैश टीम ने पूल सी के रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से शिकस्त दे दी है। पहले मैच में जोशना चिनप्पा ने एरिसा सानो को सीधे गेमों में 11-11-8, 11-9 से शिकस्त दी, भारत को यहां 1-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे मुकाबले में अनाहत सिंह और सामोती वतानबे के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। अनाहत को 5 गेम तक चले मुकाबले में 8-11, 11-8, 11-7, 8-11, 9-11 से हार का सामना करना पड़ा और जापान ने यहां पर स्कोर 1-1 से बराबर कर लिया। अब फैसला तीसरे और निर्णायक मैच पर पहुंच गया था। यहां तन्वी खन्ना ने दबाव के बीच शानदार संयम दिखाया और अकारी मुद्रिकोवा को 12-10, 11-9, 4-11, 12-10 से शिकस्त देकर भारत को 2-1 से जीत दिला दी। भारत का अब पूल सी में अगला मुकाबला 29 सितंबर को ईरान से खेला जाएगा।
1: Absolutely a strong finish for the Indian women in Pool C. And now let's look at the Indian men who are on court against the Republic of Korea with their Pool A match currently undergoing right now. So the first match has already been done, which was Vellavan Senthil Kumar, who has already given India the perfect kickstart that was needed. So he defeated Korea's Na Joo Young in straight games 11-6, 11-4, 11-7, which did put India 1-0 up in the team tie. And after that, it was a beautiful, beautiful dominating game by Abhay Singh, which has just ended. He has scored again a 3-on-3 straight victory. Amazing lead in all the games as 11-4, 11-7 and 11-1. Now in the next match, which is the third one, it's Veer Chotrani against Oh Seo-jin to finally settle us into this straight victory against South Korea. And of course, we will keep you updated as this contest develops.
0: विदुषी चलते हैं एथलेटिक्स के ट्रैक पर, वहां मिक्स 4x100 मीटर रिले के फाइनल में भारत पहुंच गया है और पहुंचता क्यों नहीं। अनिमेश और हरित्रा ने जो पूरा दम लगाया, बिल्कुल हरिता भद्रा ने जो आखिर में दम लगाया, उससे भारत ने वहां पर शानदार तरीके से कामयाबी हासिल की है। एथलेटिक्स ट्रैक में भारत के लिए बड़ी खबर यकीनी तौर पर है। मिक्स 4x100 मीटर रिले की हीट में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 41.54 सेकंड का समय के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और फाइनल में जगह बना ली। भारत की शानदार दौड़ में अनिमेश कुजूर का तीसरा लेग बेहद प्रभावशाली रहा, जिसने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। फाइनल में भारत से एक और दमदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।
1: And now a quick update coming in from hockey that India's men were scheduled to take on Bangladesh in their Pool A encounter, but the match now has been rescheduled.
0: बिल्कुल बात करते हैं महिला डिस्कस थ्रो के फाइनल मुकाबले की, जहां भारत की सीमा पुनिया एक मर्तबा ऐसा था तीसरे पायदान पे चल रही थी, ब्रॉन्ज मेडल की दौड़ में थी, अब चौथे पायदान में पहुंच गई है। चीन की दो खिलाड़ी फेंग बी और जियांग पहले और दूसरे स्थान पर, फेंग बी 63.69 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर, जबकि जियांग भी 62.5 मीटर का थ्रो लगाकर दूसरे स्थान पर, वहीं थाईलैंड की इंसाएंग 61.43 मीटर का थ्रो लगाकर तीसरे स्थान पर, वहीं सीमा पुनिया 59.88 मीटर के बाद तीसरे चौथे स्थान पर बनी हुई है। क्या होता है, क्या घटित होता है, अगले एक घंटे में हम अगले जो अपडेट हम लेके आएंगे 4:30 पर उसमें बताएंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को अगले अपडेट तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
2: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
3: बच्चों को एक इम्पोर्टेंट रूल सिखा दें, डॉग या कोई जानवर काट ले या स्क्रैच कर दे तो छुपाना नहीं,
4: तुरंत घाव को साबुन और चलते पानी से 15 मिनट तक वॉश करो और बिना डिले नियरेस्ट हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर जाओ। रेबीज वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है।
3: बाइट या स्क्रैच छुपाओ नहीं, वॉश करो, हॉस्पिटल जाओ। कॉर्निंग इंडिया द्वारा जनहित में जारी।
5: और आप सुन रहे हैं स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, और आज वर्ल्ड रेबीज डे है और इसी पर केंद्रित है हमारा आज का ये प्रोग्राम। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर जुगल किशोर जी, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त के यानी कि कमल किशोर। डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी से हम जुड़ जाते हैं अपने एक श्रोता से, क्योंकि उन्होंने फ़ोन किया है, जानना चाहते हैं, परेशानी है। जी डॉक्टर साहब, हेलो।
6: हेलो
5: जी, नमस्कार।
6: जी नमस्कार सर। सर मेरा सवाल ये था कि शहरों में तो रेबीज के में

0: और इन चीजों के बारे में लोगों को बहुत जानकारी होती है।
1: जी
0: लोग घबराते भी है, आने का तरीका भी ढूंढ लेते हैं, पढ़ा लिख काफी पढ़े लिखे होते हैं लोग इस मामले में। बट शहरों में भी चूंकि जानवर और वाइल्ड लाइफ जानवर वहां पर भी है और वहां पर लोग उतनी जानकारी भी नहीं रखते और डॉक्टर के पास पैसा भी उनके पास शायद नहीं होता होगा, पहुंचने की जानकारी भी नहीं है। तो सवाल ये है कि वो लोग जो घरेलू रेमेडी करते हैं इसमें कि मिर्च और तेल लगाने वाली बात है, तो वो किस तरह से कारगर होती भी है या नहीं होती, या फिर वो बाद में बहुत ट्रबल कर सकती है, तो थोड़ा सा इस पे आप जानकारी दीजिए।
1: डॉक्टर साहब बताइए कि ये जो मिर्च मसाला लगा रहे हैं, आपका नाम क्या है?
0: जी मेरा नाम भारत शर्मा है, मैं विकासपुर दिल्ली।
2: भारत जी बहुत अच्छा प्रश्न, मैं इसको लेना भी चाह रहा था कि हमारे रूरल एरिया में जो ग्रामीण इलाके हैं या ट्राइबल एरिया में हैं वहाँ पर हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं ना होने की वजह से, इतनी अच्छी ना होने की वजह से कोशिश करते हैं कि वो हमें कई किलोमीटर जाना पड़ेगा और फिर इसका वो करना होगा, वैक्सीन लगाना है, अगर है या नहीं है तो पता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हमारे ज़्यादातर जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं और उससे ऊपर वाले सभी में अब रेबीज़ वैक्सीन का जो सुविधा वो अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो आसपास ज़रूर आपको मिल जाएगी, तो उसकी चिंता ना करें। ज़रूरत यह है कि उसको जब कभी भी किसी जंगली जानवर ने या घर के किसी जानवर ने काटा है तो उसको वैक्सीन लगवाना है, यही एक हमारा सबसे बड़ा प्रिवेंटिव 100% श्योर तरीका है। ये देखा गया कि जो ये नहीं करते या ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि आप उस पर तेल मिर्च या कोई जड़ी बूटी या कुछ ऐसा लगा लो, ऐसा कोई भी प्रमाण अभी तक हमारे किसी भी उसमें नहीं आया है, रिसर्च में नहीं आया है कि इससे कोई बेनिफिट होगा या इससे फ़ायदा होगा। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो कभी भी इस तरह की जो तरीका है वो ना अपनाएं। सबसे बेस्ट जो बार बार अभी सुना रहे हैं कि जैसे ही काटे तो घर में आप पानी से, बहुत चलते हुए पानी से उसको धोना है, साबुन इस्तेमाल करनी है। और उसमें एक और बात बता दूं कि जब हम साबुन लगाते हैं तो दर्द होता है, तो उसकी चिंता ना करें, क्योंकि थोड़ा दर्द आपको सहना भी पड़े या बच्चे को सहना पड़े तो उसको प्यार से कह के करना है, ज़रूर करना है, क्योंकि जब हम उसमें साबुन लगाते हैं या साबुन का पानी बना लें या सेवलोन हो उससे आप धोने की कोशिश करें, तो जितना हम उसमें साबुन रहता है तो उससे जो वायरसेस हमारे हमारे मसल्स के अंदर चले गए होते हैं वो धुल जाते हैं, निकल जाते हैं। तो पर्पस हमारा धोने का यही होता है कि जितने भी वायरस उसके ऊपर हैं वो सारे हम निकाल दें और उसके बाद में फिर हम वैक्सीन लगाते हैं, और वैक्सीन के साथ में एक और रिक भी लगाते हैं जो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी उसके ऊपर ऐसी अपनी विधि ना अपनाए जिससे कि और खतरा बढ़ जाए।
1: जी किसी भी प्रकार से जो घरेलू उपचार होता है उसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है, ये नोट कर लें जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और सबसे पहले आप जहाँ जब भी कोई जानवर काटता है तो उसे साबुन से धो लें, सेवलोन से धो लें, अच्छे तरीके से कम से कम 5-10 मिनट तक धो लें। डॉक्टर साहब कितने देर तक धोना चाहिए?
2: 10 से 15 मिनट, 15 मिनट जरूरी होता है कि 15 मिनट तक आप उसे रनिंग वाटर में, है ना, वाटर चलता रहना चाहिए और उसमें धोते रहें उसको।
1: डॉक्टर साहब क्या गर्म पानी से धोना चाहिए या ठंडे पानी से धोना चाहिए?
2: नहीं, इसमें कोई गर्म और ठंडे का नहीं है, लेकिन डेफिनेटली पानी होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, यानी कि गंदे पानी से आप करें। अगर हल्का गर्म यूज़ करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे कि उसको ठंड ना लगे, बाकी आप नॉर्मल पानी से आप धोएं।
1: जी डॉक्टर साहब एक और हमारे श्रोता मित्र से जुड़ जाते हैं। हेलो
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: बीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी गौतम साहब बताएं।
3: हाँ मेरा कहना है कि आज ही हमारे शहर में खबर है अखबार में
1: जी
3: कि हर दिन लगभग 200 कुत्ते रोज काटते हैं मेरठ शहर में, ये आज के खबर की, आज के अखबार की खबर है। तो मेरा पूछना है कि ये स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है, नगर निगम की, या हमारे विधायक जी की, या हमारी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार इतनी सुस्त क्यों है कि वो कुत्तों का बंध्याकरण नहीं करवा रही? और दूसरा मुझे पूछना है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में वो एक ही इंजेक्शन लगवा देते हैं, और तो वो एक ही इंजेक्शन लगवाना चाहिए या पूरा कोर्स करना चाहिए, कृपया विस्तार से बताइए।
1: जी डॉक्टर साहब बताएं।
2: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, जिम्मेदारी तो सभी की है। अगर हम बात करें कुत्ता अगर हमारे आसपास है तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसका ख्याल रखें या हम जब भी कभी इस तरह

0: कि काट ले तो हम अपना जो भी सुविधा है उसको हम अपना पूरा करें। इसमें गवर्नमेंट का भी प्रोग्राम है हमारा एंटी रेबीज, नेशनल एंटी रेबीज या नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं। उसी के साथ में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अंडर में डॉग को कैसे मैनेज करना है, सभी डॉग्स जितने भी हैं उनको, उनकी पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है, उनको हमें कैसे वैक्सीनेशन करना है, वो सारे प्रावधान हैं। उसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स है, उन्होंने भी बताया कि हमें डॉग्स को कैसे मैनेज करना है और उसकी पॉपुलेशन को कैसे करना है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत ज़्यादा संख्या में, लाखों की संख्या में पूरे अगर हम भारत को लें तो उसमें डॉग्स काटते हैं, बिल्लियां हैं और दूसरे जानवर काटते हैं, और उन सभी का जो एक तरीका है वो हमारा वैक्सीनेशन है। लेकिन उनका प्रिवेंशन, अब आपको मालूम है कि हमारा जितना एनिमल से इंट्रैक्शन होगा तो चांसेस हैं कि हमारे इस तरह से खरोंच लगना, मुंह से राल का संपर्क हो जाना या फिर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और हमारे घरों में कैटल्स होते हैं, कैटल का मतलब जो पालतू जानवर हैं जिनसे हम दूध लेते हैं, वो भी हमारे कभी कभी इस तरह से हो जाते हैं। तो हमें उस पर सावधानी रखनी है, ना कि हमें उन्हें बिल्कुल ये सोचें कि ख़त्म कर दो या हटा दो, ऐसे तो बहुत मुश्किल है, वो हमारे पार्ट हैं, सभ्यता के पार्ट हैं। रही बात ये कि एक ही इंजेक्शन नहीं, जो उसका फुल कोर्स है वही लगाना है, तभी आपका जो वैक्सीनेशन है वो प्रोटेक्शन दे पाएगा। ये हमारे रिसर्च में पाया गया कि एक वैक्सीन के बाद में यू नो ऑलमोस्ट मोर देन 50%, मतलब कि अगर 60% तक लोग है ना वैक्सीन दूसरा लगवाते ही नहीं, और पूरे वैक्सीनेशन जो पूरे करते हैं, जैसे आपको चार पूरे वैक्सीन लगने चाहिए या पांच लगने चाहिए, तो वो उसकी जो प्रेवलेंस रेट है या कहना चाहिए कितने लोगों ने कवर कराया, तो वो भी मुश्किल से 40% मिलता है। तो 40% लोग ही उसको कंप्लीट कर पाते हैं, पूरा कंप्लीट। तो हमारा ये जो नेशनल प्रोग्राम है उसका यही पूरी वह है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि 100% वो अपना पूरा वैक्सीनेशन कवरेज करें, तो पॉसिबली जो रिस्क है रेबीज़ का वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। और गवर्नमेंट का जो एक नारा है कि हम 2030 तक रेबीज़ फ्री करें, डॉग से जो जो कुत्तों से हमारे को रेबीज़ हो रहा है उससे हमें फ्री करना है, तो हम उसमें कारगर सिद्ध तभी होंगे जब हर व्यक्ति उसमें जानकारी लेगा और उस और जो गवर्नमेंट चाहती है वो करेगा।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि, और उन्होंने भी पूछा कि एक इंजेक्शन के बाद में क्या करना चाहिए, आपने कहा कि एक इंजेक्शन नहीं और भी कई इंजेक्शन लगते हैं। पहले कहा जाता था कि देखिए आपको कुत्ते ने काट लिया है तो आपको 16 इंजेक्शन लगेंगे और वो भी पेट में लगेंगे, डराया जाता था, अब डर भी लगता था कि कुत्ते ने काट लिया तो 16 इंजेक्शन लग जाएंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि घटते घटते वो 5 इंजेक्शन पर आ गया और शायद अब 3 इंजेक्शन, तो इसके विषय में आप क्या जानकारी देंगे?
0: बिल्कुल, पहले जो वैक्सीन हमारा बनता था वो घोड़ों से या हॉर्स या और दूसरे तरीके होते थे, वो बहुत ही क्रूड एंड उनके नर्व टिश्यूज से के अंदर बनते थे, तो उससे रिएक्शन होने के चांसेस होते थे, लेकिन और डोज भी हमें ज़्यादा चाहिए होती थी। तो डोज आपको जैसे 2 ml है, 3 ml लगानी है, तो ऑब्वियसली आप मसल में लगाएंगे नहीं, आपको पेट के जो हमारा हिस्सा है उसमें हमें लगाना पड़ता था। लेकिन ऐसा ऐसा अब हमारे पास में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आ गए, और जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन है, जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी अगर हम देते हैं तब भी उसमें प्रोटेक्शन उतना ही होता है जितना इंट्रामस्कुलर का होता है। तो हमारे दोनों बाजुओं में इंट्राडर्मल मतलब कि स्किन के अंदर हम बहुत ही स्मॉल डोज 0.1 ml की डोज देते हैं, इससे हमारा जो डोज की खपत है वो भी कम हो गई है और साथ में जो साइड इफ़ेक्ट्स या जो भी प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गए।
1: डॉक्टर साहब, ये जो 5 इंजेक्शन लगते हैं आज के दौर में, तो ये इसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, एक दिन के बाद में, 2 दिन के बाद में?
0: उसमें जब भी आप फर्स्ट टाइम जाएंगे तो आपके कार्ड पे वो लिख देंगे कि आपको कौन कौन से दिन आना है।
1: तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको रेबीज का इंजेक्शन लगता है तो उसमें एक विशेष कार्ड आपको दिया जाता है वो याद रखने के लिए कि आपको ये इंजेक्शन इस दिन लगाना है।
0: तो 0 अगर कोई भी लिखना चाहे, अपने आप ध्यान रखना चाहे, तो 0 डे वो माना जाता है कि जिस दिन आप हॉस्पिटल गए और आपने इंजेक्शन लगवाया, तो 0 डे वही हो जाता है। ये नहीं कि जिस दिन आपको काटा है वो नहीं, तो जिस दिन आपने इंजेक्शन लगवाना शुरू किया वो 0 डे है। उसके बाद में 3रा दिन, 7वां दिन, 14वां दिन और फिर आपको 28वां दिन इस तरह से आपके लगते हैं
1: जी।
0: तो बंदर हो, बिल्ली हो, किसी का भी हो, वो इस तरह से लगते हैं आपके इंजेक्शन।
1: तो डॉक्टर साहब, अब चूँकि तीन इंजेक्शन पर भी, तीसरे इंजेक्शन पर भी हम आ गए हैं, तो डॉक्टर साहब ये क्या मार्केट में अवेलेबल है?
0: या ये हमारा थ्राइबीज करके एक वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें ये पाया गया कि जो हमारा और दूसरी वैक्सीन है, वीरोरब है, दूसरे जितने भी वैक्सीन्स हैं, वो भी उतना ही प्रोटेक्शन देते हैं जितना कि तीन वैक्सीन है, क्योंकि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ही हाई लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ करके हुआ है। तो अभी WHO ने उसका अप्रूव किया, लेकिन गवर्नमेंट हमारी अभी उस पर विचार कर रही है कि हमें इसका क्या करना है। तो डेफिनेटली प्राइवेट में अवेलेबल है और वो दे रहे हैं, तो फ्यूचर में हम चाहेंगे कि कम से कम वैक्सीन लगें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रोटेक्शन हो पाए। तो वो हमारा एक साइंस का डेवलपमेंट है जो इनोवेशंस हैं उसके ऊपर बेस करता है।
1: डॉक्टर साहब, कई बार ये होता है कि हम भूल जाते हैं, गलती से लग नहीं पाता है, क्योंकि जब देखा जाता है कि एक इंजेक्शन तो लग गया, अब उसका फिर भूल गए, जब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, नियमित अंतराल पर वो वैक्सीन नहीं लग पाता है, तो इसका क्या असर हो सकता है अगर नहीं हुआ तो, और इसमें क्या करना चाहिए?
0: देखो, एक वैक्सीन कि कई डोज हैं, उसको कंप्लीट मानते हैं। अगर उसका एक लगा है तो थोड़ा आपको बेनिफिट हुआ, लेकिन पूरा नहीं हुआ
1: जी।
0: अब ये डिजीज़ इतनी खतरनाक है तो हम थोड़े बेनिफिट में संतुष्ट नहीं रह सकते। तो ज़रूरी चाहिए कि हमारे को सेकंड डोज, जैसे ही आपने जैसे एक दिन मिस किया तो शायद मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा दिन हो जाए तो वो फिर दोबारा रिपीट करना पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको रिमाइंड कराने का तरीका एक ये है कि प्राइवेट में शायद करा पाते, गवर्नमेंट में इतना भीड़ होती है तो हम पेशेंट को रिमाइंड नहीं करा पाते, इसलिए कार्ड देना पड़ता है उन्हें, तो कार्ड से देख कर आ सकते हैं। लेकिन लोगों को जानकारी अगर रहेगी कि भाई ये अगर भूल जाएँ तो आप तुरंत जाएं और वहाँ पर फिर दोबारा से शुरू कराएं और पूरा अपना कोर्स करें
1: जी। डॉक्टर साहब ये भी किसी को, कई लोगों को ये आशंका होती है कि तो मुझे तो बुखार है, ये इंजेक्शन लगेगा तो कुछ उल्टा असर ना हो जाए, और बच्चों को कई बार देखा जाता है कि खसरा हो जाता है या किसी प्रकार की चेचक वगैरह सब निकल आते हैं, तो क्या उस दौरान भी इंजेक्शन लगाया जा सकता है रेबीज़ का?
0: बिल्कुल, क्योंकि देखो रेबीज़ एक खतरनाक बीमारी है, 100% फेटल है
1: जी।
0: तो छोटी मोटी परेशानियों को हम नज़रअंदाज करने में ज़्यादा बेनिफिट है, तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम हो कोशिश ये रहे कि अगर वो ऐसी नहीं है कि जिसमें जानलेवा है तो वैक्सीन का वो नहीं है, इसके अगेंस्ट में नहीं है। इवन प्रेगनेंसी में भी देते हैं, अगर प्रेगनेंसी में आपको काट लिया है कुत्ते ने या कुछ भी हुआ है तो वैक्सीन लगाना है। उसी तरह से आपको छोटे मोटा बुखार उखार है तो वो डेफिनेटली लगाना है, डॉक्टर से सलाह लेनी है। डॉक्टर ये समझता है कि नहीं एक दो दिन हम डिले कर सकते हैं तो ठीक है, बट मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, जब भी वो पहुंच जाए किसी भी हालत में है उसको वैक्सीन देना चाहिए।
1: इसका कोई गलत असर या उल्टा असर नहीं होता है?
0: ये अभी तक जितने भी रिसर्च हैं, हमारे को जितनी जानकारी है, वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है
1: जी,
0: और बहुत ही सेफ है
1: जी। डॉक्टर साहब ये बहुत ही सेफ है और बहुत सारी जानकारियां हमारे सामने निकल के आ रही हैं, और हमारे श्रोता भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं कर रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने श्रोताओं से जुड़ जाएंगे।
2: बच्चों को एक इम्पोर्टेंट रूल सिखा दें, डॉग या कोई जानवर काट ले या स्क्रैच कर दे तो छुपाना नहीं,
3: तुरंत घाव को साबुन और चलते पानी से 15 मिनट तक वॉश करो और बिना डिले नियरेस्ट हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर जाओ। रेबीज वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है।
2: बाइट या स्क्रैच छुपाओ नहीं, वॉश करो, हॉस्पिटल जाओ। कॉर्निंग इंडिया द्वारा जनहित में जारी।

0: या कोई स्ट्रीट डॉग काट ले या स्क्रैच कर दे, घबराना नहीं, बस दो काम तुरंत करो।
1: पहला, घाव को साबुन या चलते पानी से 15 मिनट तक धोएं। दूसरा, बिना डिले नियरेस्ट हॉस्पिटल जाओ और रेबीज वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स कंप्लीट करो।
0: बाइट हो या स्क्रैच, वॉश करो, हॉस्पिटल जाओ। कॉर्निंग इंडिया द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं वर्ल्ड रेबीज डे पर ये स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, और आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त कमल किशोर, और मेरे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर जुगल किशोर जी। एक बार फिर से अपने श्रोताओं से जुड़ जाते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या परेशानी है। हेलो,
3: नमस्कार सर।
2: नमस्कार, आपका शुभ नाम?
3: सर मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ, मेरा नाम उमेश है।
2: जी उमेश जी, क्या परेशानी है, क्या पूछना चाहते हैं?
3: डॉक्टर साहब को नमस्कार।
4: नमस्कार, नमस्कार उमेश
2: जी।
3: डॉक्टर मेरा क्वेश्चन ये था, जब कुत्ता काट लेता है तो पहले 14 इंजेक्शन लगते थे, फिर 5 लगने लगे, और अब 3 में भी काम चल जाता है। ये तो हो गई थी कुत्ता काटने के बाद की बात। अब जैसे कोरोना की वैक्सीन थी, पहले लगवाई जाती थी, हेपेटाइटिस बी ए की वैक्सीन है, क्या इसकी भी कोई रैपिड की वैक्सीन है जो पहले उपलब्ध लगा दी जाए व्यक्ति की?
4: बहुत अच्छा प्रश्न है उमेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली जो ये रेबीज़ वैक्सीन लगते हैं, ये ज़्यादातर पोस्ट एक्सपोजर कहते हैं इनको, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, कि आपको कुत्ता काटा और आपने लगवा लिया। लेकिन अभी एक नई मुहिम चल रही है और उस पर बहुत कंसिडरेशन चल रहा है कि हम क्या कुत्ता काटने से पहले लगवा लें, तो उसके 3 डोज होते हैं। 3 डोज अगर आप अपने बच्चों को लगा लें, तो देखा गया कि जब दोबारा अगर कुत्ता किसी कभी काट लिया तो हमें सिर्फ 2 डोज देने की ज़रूरत पड़ती है और बिल्कुल प्रोटेक्शन रहता है। तो इसको हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं, तो पोस्ट की जगह प्री, और ये देखा गया कि प्री इज़ मच बेटर, कि आपने पहले ही प्रोटेक्शन लिया हुआ है। तो जिस तरह से हमारे अदर वैक्सीन है, जितने भी बच्चों को हम लगवाते हैं, उसी तरह से अगर हम प्री पे आ जाएँ तो डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है।
2: जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब एक और ये मैसेज आया है, और इन्होंने अपना नाम जी जिक्र अख्तर लिखते हैं गुड़गांव से, कहते हैं कि डॉक्टर साहब कहा जाता है कि डॉग बाइट के बाद डॉग पे नज़र रखनी चाहिए, वॉच करनी चाहिए कि कहीं वो कुत्ता जो है किसी उल्टा सीधा हरकत ना कर रहा हो।
4: बिल्कुल, ये वॉच करना या डॉग को देखते रहना 10 दिन तक देखने के लिए एक ऐसा रिकमेंडेशन है, तो वो देखते हैं कि 10 दिन के अंदर डॉग की अगर पागल की हरकतें करने लगे या फिर उसकी डेथ हो जाए, तो वो इंडिकेट करता है कि ये जो डॉग है इसमें रेबीज होगा। या जब तक कि हम उसका इन्वेस्टिगेशन ना करें, उसके ब्रेन की जांच ना करें कि इसमें रेबीज था या नहीं था, तब तक बहुत मुश्किल है। लेकिन ये मान के चलते हैं कि अगर उसकी डेथ हो गई तो डेफिनेटली रेबीज होगा, तो हमारा खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए इसको वेट करो 10 दिन तक और उसके बाद में शुरू करो तो वो अच्छी बात नहीं है। तो उसको साथ में वैक्सीनेशन के साथ में उसको वॉच करते रहो। अब ये वॉच करने का भी सिर्फ अपने पालतू कुत्ते पे कर सकते हैं और दूसरे पे कर नहीं सकते। जो स्ट्रीट डॉग है वो कौन सा कुत्ते ने काटा, कहाँ पर होगा, बहुत मुश्किल है। तो बेस्ट तरीका ये है कि

0: आपको अगर कुत्ते ने काटा है, चाहे वो स्ट्रीट डॉग है या पालतू है, उसको यू नो डेफिनेटली वैक्सीनेशन पूरा लगवाना चाहिए। वॉच करने का सिर्फ वही है कि अगर वो पालतू है और आपके साथ में है, कुत्ता है या बिल्ली है, वो आपके साथ में है और आप उसको वॉच कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक आखिरी मैसेज ले लेते हैं, और ये मैसेज आया है कुतुबगढ़ से, सुधीर सिंह जी का ये मैसेज है। कहते हैं
0: जी
1: कि सर जी, मेरे को 20 दिन पहले एक कुत्ते ने पंजा मार दिया था, स्क्रैच मार दी, उसमें ब्लड भी निकलने लगा था, और मैंने उसके बाद एक टीटी के इंजेक्शन ले लिया और 2 रैबिस के इंजेक्शन लगवा लिए, तो क्या मुझे और भी लगवाने चाहिए?
0: बिल्कुल लगवानी चाहिए, आप पूरा कोर्स कीजिए, है ना। स्क्रैच हुआ, ब्लड आया, तो डेफिनेटली आपको पूरा कोर्स करना जरूरी है।
1: डॉक्टर साहब, अब मेरा प्रश्न ये है कि किन परिस्थितियों में ये जो रेबीज इम्यून ग्लोबुलिन यानी कि
0: हाँ रिक,
1: RIG
0: हाँ आर आई
1: रिक की
0: जी
1: आवश्यकता पड़ती है?
0: जब कैटेगरी 3 है जिसमें ब्लड आ जाए,
1: जी
0: तब जैसे इन्होंने सिर्फ वैक्सीन लगाया उस वक्त में, रिक लगा या नहीं लगा पता नहीं, लेकिन जब कभी भी कैटेगरी 3 वाला जो बाइट होता है किसी
1: जी
0: भी का,
1: जी
0: चाहे वो कुत्ता है या बिल्ली है, उस केस में हम रिक लगाते हैं। तो इसके दो बेनिफिट, मतलब इसके जो बेनिफिट ये है कि रिक है ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बने हुए हैं,
1: जी
0: उन एंटीबॉडीज़ को हम सीधा उस जगह पर इंजेक्ट करते हैं जहाँ पर बाइट हुआ है। तो अगर वायरस हुआ तो वायरस के ऊपर एंटीबॉडीज़ एक्ट करेंगे और वहीं पर उसको ख़त्म कर देंगे। तो
1: जी
0: इसको पैसिव वैक्सीनेशन या पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं।
1: जी
0: तो
1: डॉक्टर साहब,
0: ये कैटेगरी 3 में ज़रूरत पड़ती है।
1: जी डॉक्टर साहब,
0: और जो हमारा एंटी रेबीज़ वैक्सीन है वो हमारी एंटीबॉडीज़ बनाता है,
1: जी
0: तो वो
1: डॉक्टर साहब,
0: एक्टिव वैक्सीनेशन कहलाता है।
1: जी। तो दोस्तों, रेबीज बीमारी खतरनाक बीमारी है, लेकिन तुरंत ट्रीटमेंट से रेबीज से बचा जा सकता है। वैसे बचाव के और बहुत सारे बेहतर उपाय भी हैं, बस एक ही उपाय, और वो है इंजेक्शन लगवाना। जब कभी भी आपको काटे, कुत्ता काटे या बिल्ली काटे या कोई भी जानवर काटे, तो तुरंत वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर जुगल किशोर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत
0: आपका
1: धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने प्रश्न पूछे, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे।
1: जी डॉक्टर साहब, और अब मैं आपका दोस्त कमल किशोर आपसे विदा लेता हूँ। आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार। इस रैबीज अवेयरनेस प्रोग्राम के प्रायोजक थे कॉर्निंग इंडिया।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

नमस्कार, 4 बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के आकाशवाणी मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में रबी अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। राष्ट्र आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी जयंती पर भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बलोच नेशनल मूवमेंट बीएनएम ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा जबरन गायब किए जाने, मानवाधिकारों के उल्लंघन और गैर न्यायिक हत्याओं के खिलाफ जिनेवा में एक विरोध रैली का आयोजन किया। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के अंतर्गत काबुल के सरकारी अस्पताल के लिए जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा सामग्री की एक खेप भेजी है। और एशियाई खेलों में अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं। ये थे अब तक के आकाशवाणी मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, जी हाँ, शुरू हो चुका है आपका फेवरेट प्रोग्राम अल्फा जैन, और अल्फा जैन में मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे शालिनी। दोस्तों, अल्फा जैन यानी कि आज की युवा पीढ़ी, जनरेशन अल्फा को तो आमतौर पर 2010 के आसपास से 2025 तक जन्मी पीढ़ी के रूप में बताया जाता है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इंटरनेट, स्मार्टफोन, स्ट्रीमिंग और एआई को अपने आसपास की सामान्य चीज़ों की तरह देखा है। और अगर बात करूं जेन जी की, तो जेन जी ने भी डिजिटल रिवॉल्यूशन को अपने बचपन और टीनेज ईयर्स में तेजी से बढ़ते हुए देखा। लेकिन दोस्तों, हर जनरेशन एक जैसी नहीं होती है। असली पहचान होती है आपके चॉइसेस, आपकी सोच और आपके एक्शंस से।

बिल्कुल दोस्तों, जुनून और पैशन के साथ अगर हम किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो सफलता ज़रूर हासिल करते हैं। और अगर बात करूं आज के यूथ की, तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ फुल एक्सप्रेशन है उनके पास, लर्निंग का बहुत बड़ा माध्यम भी है उनके पास। वो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियोज़ बना रहे हैं, मीम्स, गेमिंग, पॉडकास्ट, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ और डिजिटल क्रिएटर्स, ये सब कुछ यूथ कल्चर का हिस्सा बन चुका है। एआई की दुनिया में भी वो तेज़ी से शामिल हो रहे हैं। एक रिसर्च की माने तो जो अमेरिका

टीन्स हैं वो AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल इन्फॉर्मेशन और स्कूल वर्क के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, और कहीं ना कहीं आज भारत में भी जो युवा हैं वो अपने स्कूल कॉलेज वर्क के लिए AI का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन दोस्तों, टेक्नोलॉजी का असली फ़ायदा तब होता है जब हम उसे अपना शॉर्टकट नहीं बनाते बल्कि अपनी क्रिएटिविटी और लर्निंग का टूल बनाते हैं। स्क्रीन तो हमारे हाथ में है लेकिन उसका कंट्रोल भी हमारे हाथ में ही होना चाहिए।

जी बिल्कुल दोस्तों, आप और हम जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो के जरिए और बात कर रहे हैं आजकल के युवाओं की। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने हम सभी को कनेक्ट किया हुआ है, और आज की दुनिया में ना एक मिनट का वीडियो और उस पर हज़ारों व्यूज़ लाखों व्यूज़ नज़र आते हैं। तो डिजिटल दुनिया में ना अटेंशन बहुत तेज़ी से बदल रहा है। रील्स, शॉर्ट वीडियोस और क्विक कंटेंट ने स्टोरी टेलिंग का तरीका भी बिल्कुल बदल दिया है। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, क्या हर वायरल चीज़ जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं या फिर कहीं भी वेब पर देख रहे हैं, क्या वो वैल्यूएबल हो? ऐसा ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगली बार हो सकता है कि कोई ट्रेंड आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको अपने आप से तीन सवाल पूछने चाहिए कि क्या ये जो ट्रेंड आप देख रहे हैं वो आपको कुछ सिखा रहा है, क्या वो आपको इंस्पायर कर रहा है, और क्या उसे आपको आगे शेयर करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वायरल कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही होती हैं जो सही नहीं होती, क्योंकि AI के इस युग में बहुत सारा फेक कंटेंट भी सोशल मीडिया पर आपको दिख जाएगा। इसलिए ट्रेंड फॉलो करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी सोच को ट्रेंड के हवाले कर देना बिल्कुल भी सही नहीं है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अरे अंजलि, अब क्या तुम मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

106 आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जैन और आज बात हो रही है टेक्नोलॉजी की। जी हाँ दोस्तों, AI आज की जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई है। पढ़ाई में कॉन्सेप्ट समझने से लेकर आइडियाज डेवलप करने, लैंग्वेज सीखने और क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने तक AI कई कामों में मदद कर सकता है। लेकिन एक फर्क हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए। क्या है वो फर्क, वो उस पर बात करेंगे लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

बिल्कुल दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुछ कंटेंट हम तैयार तो कर लेते हैं एआई की मदद से, लेकिन उस पर नज़र नहीं डालते, उसको देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, और फिर जब कुछ बाद में समझ में आता है कि गलत हो गया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि एआई ने दिया था तो ठीक ही होगा, क्योंकि एआई सिर्फ हमारी मदद कर सकता है लेकिन हमारी जगह वो सोच नहीं सकता। इसीलिए होमवर्क, प्रोजेक्ट या फिर किसी भी आइडिया में अगर हम एआई का इस्तेमाल करें तो इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अपनी अंडरस्टैंडिंग हमें बनानी है जिससे कि हम उसका सही इस्तेमाल कर सकें। टेक्नोलॉजी को हमें अपना कंप्यूटर नहीं समझना है, बल्कि उसे अपनी स्किल बढ़ाने वाला टूल बनाना होगा। तो दोस्तों, आने वाले समय में ना एआई का इस्तेमाल करना तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन समझदारी से इस्तेमाल करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा।

तो दोस्तों, अगर आपके भी बहुत सारे अरमान हैं, बहुत सारे ख्वाब हैं कुछ बड़ा करने के और इस दुनिया पे छाने के, चमकने के, सफलता की ऊंचाइयों को छूने के, तो आपको भी आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। आपको बनानी होगी स्ट्रैटेजी, करनी होगी कुछ प्लानिंग और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम भी करना होगा, क्योंकि मेहनत के बगैर कभी भी सफलता हासिल नहीं होती।

0: अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: वेलकम बैक टू योर एशियन गेम्स अपडेट वेयर द इंडियन फ्लैग इज बैक ऑन द पोडियम। आई एम विदुषी वत्स विद मोहम्मद शाहिद आजमी ब्रिंगिंग यू ऑल द लेटेस्ट एक्शन रिजल्ट्स एंड मेडल मोमेंट्स फ्रॉम द एशियन गेम्स। एंड व्हाट अ मोमेंट फॉर इंडियन एथलेटिक्स। विथ्या रामराज हैज डन इट अगेन। विथ्या हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स 400 मीटर हर्डल्स and she has done it in style, clocking a personal best with 54.75 in the final. But there is something particularly special about this medal. Vithya had won bronze in the very same event at the 2022 games, and 4 years later she is back on the podium once again, bringing home a bronze for India. A personal best, back-to-back podium finishes, and another fantastic moment in Vithya Ramraj's journey.
3: अब बात करते हैं एथलेटिक्स की, जहां से एथलेटिक्स के डिस्कस थ्रो से भारत के लिए मिलीजुली खबर सामने आई। भारत की सीमा के ने महिला डिस्कस थ्रो में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 59.88 मीटर का थ्रो किया, लेकिन यह प्रदर्शन उन्हें पदक नहीं दिला सका। सीमा ने चौथा स्थान हासिल किया और कांस्य पदक से मामूली अंतर से चूक गई। चीन की फेंग ने 63.69 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि चीन की ही जियांग ने 62.25 मीटर के साथ रजत पदक जीता। थाईलैंड की इनसियांग ने 61.43 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रही। सीमा के लिए यह प्रदर्शन इसलिए भी खास रहा क्योंकि उन्होंने एशियन गेम्स जैसे बड़े मंच पर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि उनका यह शानदार प्रयास पदक नहीं दिला सका। सबसे अहम बात बताता हूं आपको, 1998 के बाद पहली बार एशियन गेम्स में भारतीय महिला डिस्कस थ्रो में कोई भी पदक नहीं जीत पाए, यानी 1998 से लगातार जीतते थे, ये पहली बार है जब भारतीय महिलाओं ने पदक डिस्कस थ्रो में नहीं जीता। सीमा ने पूरी कोशिश जरूर की लेकिन उन्हें पदक नहीं मिला।
2: But right now, let's bring you a big update that is coming in from the boxing ring, where Kapil Pokharia has stormed

0: into the semi-finals of the men's 90 kilogram category, and what a performance it was. Kapil faced Korea's Gichae Kim in the quarterfinal, and this was clear domination from the Indian boxer. He controlled the bout from start to finish, leaving no doubt with the judges, and came through with a unanimous victory. A commanding performance, a clear result, and Kapil Pokharia is now through to the last four. With that semi-final berth, Kapil has also guaranteed a medal for India in the men's 90 kilogram category. Another Indian boxer, another semi-final, another medal confirmed.
1: 400 meter hurdles ki baat karte hain. भारत के संतोष कुमार तमिलरासन ने पुरुषों के 400 मीटर हर्डल्स फाइनल में निराशाजनक प्रदर्शन किया। बिल्कुल अफसोसनाक प्रदर्शन था। संतोष ने 49.95 सेकंड का समय निकालते हुए 8 खिलाड़ियों में सातवां स्थान हासिल किया। पूरी रेस के दौरान संतोष पदक की दौड़ में कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। कतर के बासेम हेमेदा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 47.82 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
0: Let's also bring in some good news to balance it, that is from the Indian men on the squash courts, who has completed a 3-0 victory over the Republic of Korea in their Pool A encounter, with all three Indian players delivering straight games wins. Starting from well-won Senthil Kumar, then a clear domination by Abhay Singh, and then it was Veer Chautrani's turn to put the finishing touch on the contest, and he completely dominated, winning all three games. So there was absolutely no way back for Korea as India wrapped up the team tie 3-0.
1: हॉकी की बात करते हैं, भारत बनाम बांग्लादेश जबरदस्त मुकाबला। हालांकि भारत ने बढ़त बना ली है। पहले ही क्वार्टर में भारत ने अभिषेक लाकड़ा के गोल की मदद से बढ़त बनाई। हालांकि अभी 1-0 का स्कोर है भारत के पक्ष में। दूसरा क्वार्टर यहां पर जारी है। देखना यह होगा कि क्या यहां भारत कुछ और गोल करता है, दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल भारत बांग्लादेश पर बढ़त बनाया हुआ है।
0: Now a tough result coming in from the athletics track, where Avinash Sable has finished fourth in the men's 3000 meter steeplechase final, narrowly missing out on a place on the podium. And these Asian Games, as he is into Asian Games as defending champion, having won gold in the previous edition, but this time there will be no medal for India in this one, which is clearly disappointing. But the heat is about to turn up in the athletics arena with three high powered finals coming for us, with Murli Sri Shankar and David in men's long jump final, with Gulveer and Yunus in the men's 1500 meters final, and the men's javelin throw with Rohit Yadav and Yashveer Singh coming for us.
1: जी बिल्कुल, अगले एक घंटे में क्या होगा अगली अपडेट में जरूर आपको बताएंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए। अगले एक घंटे बाद फिर मुलाकात होगी, ठीक 5:30 पर।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
5: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4:00 से 5:00 तक।
5: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों पहले कोशिश की जाती थी कि हर काम को कायदे से किया जाए और इसी वजह से माता पिता चाहते थे कि बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और उसी फील्ड में आगे आए। लेकिन अब बच्चों पर ऐसा कोई भी दबाव नहीं है, उन वो अपनी अपनी पैशन को फॉलो कर सकते हैं, फिर चाहे वो कोई भी स्किल हो, कोई भी स्ट्रीम हो, जो वो चाहें वो कर सकते हैं। साथ ही साथ क्रिएटर बनने का ऑप्शन भी है उनके पास और इसके लिए किसी भी बड़े स्टूडियो या टेलीविज़न चैनल की ज़रूरत नहीं है। स्मार्टफोन से फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, म्यूज़िक, एनिमेशन, राइटिंग, कोडिंग या कोई भी क्रिएटिव स्किल दुनिया तक पहुँचाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया पर भले ही लाइक्स और फॉलोअर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसको आप अपनी सक्सेस का एकमात्र पैमाना बिल्कुल मत बनने दीजिएगा। अपने स्किल्स पर काम करना बेहद जरूरी है। अपने स्किल्स को मजबूत करिए, कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए और अपने काम को समय दीजिए, क्योंकि अपने काम को समय के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ आप मजबूत कर सकते हैं। और जब आपका काम मजबूत होगा, आपका छोटा सा पैशन प्रोजेक्ट भी आगे तक बढ़ेगा और आपके कल को एक खूबसूरत पहल देगा और सफल बनाएगा।

तो दोस्तों पैशन के साथ जुट जाइए, जो भी आपका फोटे है, जो भी आपका स्किल है, उसको और तराशिए, उस पर और काम करिए, और साथ ही साथ अपने हर मोमेंट को, अपने हर क्रिएटिव स्किल को रिकॉर्ड करिए, क्या पता आपकी ये जो जिद है वो आपको सफलता के मुकाम तक पहुंचा दे।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: दोस्तों, एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जैन और आज बात हो रही है डिजिटल लाइफ की और किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप

अपने पैशन को पूरा कर सकते हैं और कैसे सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे डिजिटल लाइफ की, लेकिन आपको ये बता दूं कि डिजिटल लाइफ के बीच रियल लाइफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऑनलाइन तो रहते हैं लेकिन जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो ऑफलाइन होते हैं। फ्रेंड्स के साथ चैट करना तो आसान है, लेकिन सामने बैठकर बात करना भी उतना ही ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर दुनिया से कनेक्टेड तो आप रह सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने परिवार, दोस्त, टीचर्स और आसपास के लोगों से रियल कनेक्शंस बनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ना फ़ोन को साइड में रख दीजिए, वॉक करिए, कोई किताब पढ़िए, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, आकाशवाणी रेनबो भी सुन सकते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताइए। डिजिटल दुनिया आपको बहुत कुछ दिखा सकती है, सिखा सकती है, लेकिन रियल लाइफ आपको बहुत कुछ महसूस कराती है।

आज उससे थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश आप कर सकते हैं, नए स्किल्स सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, फिटनेस और अपनी स्लीप का भी ध्यान रख सकते हैं। तो एक बात ना आपको याद रखनी चाहिए कि आपकी जर्नी ना किसी और की टाइमलाइन से तय नहीं होती, ये आपकी अपनी रेस है और इसे आपको जीतना ही है, और जीतने का आपके ऊपर कोई दबाव भी नहीं है।

बिल्कुल दोस्तों, हर बाजी आपके हाथ में होगी जब आप हौसले से आगे बढ़ेंगे। अगर कभी हार मिली भी तो उसे सीखिए, सक्सेस मिलेगी तो ग्राउंडेड रहिए, क्योंकि आने वाला कल ना सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बनेगा बल्कि उसे बनाने वाले आप होंगे। इसीलिए ड्रीम को बड़ा रखिए, सीखना जारी रखिए और सबसे ज़रूरी अपने टैलेंट को पर्पज से जोड़िए। यही है अल्फाजेन की असली स्पिरिट। तो फिलहाल अपनी दोस्त आरजे शालिनी को दीजिए अनुमति, क्योंकि आगे आप सुनेंगे प्रोग्राम सिटी लाइट्स आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर।

अब सुनेंगे मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नौसेना के कमांडरों को संबोधित करेंगे। भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर सम्मेलन कल से 1 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में रबी अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन किया। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने देश भर में सोने की तस्करी के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। निदेशालय ने 6 किलो 600 ग्राम से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाली विध्वंस गतिविधियों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। उत्तराखंड में मौसम में सुधार के बाद आज चार धाम यात्रा दोबारा शुरू हो गई। मौसम पूर्वानुमान और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए 26 और 27 सितंबर तक चार धाम यात्रा स्थगित की गई थी। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के अंतर्गत काबुल के सरकारी अस्पताल के लिए जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा सामग्री की एक खेप भेजी है। और अंत में खेल जगत से खबर। एशियाई खेलों में अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: पाणी।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ हैं जैसे हैं आप एकदम हेल्दी वेल्दी होंगे और मुझे पता है कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट जरूर होगी क्योंकि आप घर की तरफ भी हो सकता है वापस लौट रहे हो, लेकिन रास्ते में आपको जब चमकती हुई रोशनी दिखेगी तो आप समझेंगे कि भाई दिल्ली हमारी कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है। लेकिन काम का बोझ तो रहता ही है भाई, इसी बोझ को हल्का करने के लिए आ गए हैं आपके साथ आपके दोस्त रविंद्र सिंह, कार्यक्रम सिटी लाइट्स लेकर। तो चलिए एक प्यारे से नगमे से शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। आप बस बने रहिए हमारे साथ 102.6 एफएम रेनबो पर। और कहते हैं भाई जरा जरा सा मूड बनाना हो तो गीत सुन लीजिए प्यारा सा, तो बस दिन बन ही जाता है, और शाम की बात हो तो जरा सुनिए। और चलिए हमारे साथ पूरे इस एक घंटे में जुड़े रहिए, जहां भी है जिस कोने में भी है।

तो भाई साहब, शामें जैसी भी हों लेकिन ये दिल्ली की शाम है और एक खूबसूरत शाम यहाँ पर होती है। जब अपने अपनों से मिलते हैं तो फिर कहने ही क्या, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है जब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। और कहते हैं कि जब दिन और संध्या का समय मिलता है, रात मिलती है एक दूसरे से, तो एक ऐसी अद्भुत काया ऊपर प्रकट होती है। जब हम शाम को देखते हैं तो बस बेहद खूबसूरत, अगर खुले आसमान के नीचे हमें ये नज़र आती है तो फिर उससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप किसी रास्ते पर होकर जा रहे हैं और वो सुहानी सी शाम आपको नज़र आती है तो आप चाहते हैं कि उसे एक कैमरे में कैद कर लें, अपनी पलकें एक पल के लिए भी ना झपकाएं। लेकिन यहाँ तो दिल्ली है भाई, सड़कों पर जाना पड़ता है, ट्रैफिक होता है और इसके साथ साथ होती है वो शाम जिसको कोशिश तो करते हैं निहारने की, लेकिन कभी कभी ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन अगर कहीं थोड़ा सा ठहरे हुए तो एक बार ऊपर देखे कितनी खूबसूरत शाम है, क्योंकि इसी शाम को देखकर बदलता है जैसे रंग।

बदलती है ना, शाम दो रंग मिलते हैं आपस में, इसी तरह मौसम भी बदल जाता है। और मौसम क्या कहता है, कहता है ना कि दिल्ली की जो अभी ठंडक हो रही है हल्की हल्की, उस पर आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि भाई अब लगता है कि चला गया है अपना वो मानसून जिसको हम बोलते हैं, दिल्ली NCR से विदाई हो गई इसकी, तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो भाई साहब इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा, क्योंकि कल के बाद मौसम फिर से अपना असर दिखाएगा और इस शाम की तरह फिर से बदल जाएगा। लेकिन शाम का रंग बहुत ज़्यादा नहीं बदलता, मौसम के मिजाज पल पल में बदलता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, और जहाँ कहीं थोड़ी सी भी खुशी आपको नजर आए, मुस्कुराने पर मजबूर कर दे, तो बस बटोर लो भाई साहब उसको। और कहते हैं ना, खुशियां जहां भी मिले हल्की मिले, किसी पल में मिले, बटोरो भाई।

हाँ भाई, खुशियाँ बटोर लो। तो हम तो यही कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी बातें करें आपसे कि आपकी शाम और सुहानी हो जाए, और कुछ ऐसी बातें बता दें आपको कि आपका सफ़र और सुहाना हो जाए। तो भैया, जहाँ जहाँ से जो लोग जा रहे हैं 25 तारीख से, अब तक बहुत कुछ आपने सुना होगा। एक बार फिर से थोड़ा सा रिमाइंडर इस ट्रैफिक का लगा देते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक में कहीं पर हैं और या फिर निकलने वाले हैं, तो उन रास्तों की ज़रा आपको याद दिला दें जिसके लिए एडवाइजरी जारी की गई थी कि भाई, ट्रेड शो के कारण जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है, वहाँ पर जो डायवर्जन है उसके लिए आपको वैसे याद होगा, लेकिन कल 29 तारीख है और 29 सितंबर तक के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी। लेकिन आपको इसके साथ साथ 13 वैकल्पिक मार्ग भी बताए गए थे कि जिनको आप अपना सकते हैं, जिन रास्तों से होकर आप गुजर सकते हैं। नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक की अगर बात करें, तो इन रूट पर चिल्ला रेड लाइट से एक्सप्रेस वे के लिए अगर आपको जाना है तो

0: ग्रेटर नोएडा जाने वाले वाहन सेक्टर 14 आर फ्लाईओवर से गोल चक्कर चौक सेक्टर 15 की ओर डाइवर्ट होंगे और यहां से DSC मार्ग होकर अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकेंगे बिना किसी रुकावट के। और DNDC एक्सप्रेसवे अगर आपको जाना हो तो ग्रेटर नोएडा जाने वाले वाहन रजनीगंधा चौक सेक्टर 16 की ओर डाइवर्ट होंगे और ये MP01 और DSC मार्ग से जाएंगे। कालिंदी बॉर्डर से एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले ग्रेटर नोएडा जाने वाले वाहन जो हैं वो महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर 37 की ओर डाइवर्ट होंगे और सेक्टर 37 से एक्सप्रेसवे की तरफ जो लोग जा रहे हैं वो सेक्टर 44 गोल चक्कर से खवल सर्विस रोड होते हुए DSC मार्ग जाएंगे। और आगरा और ग्रेटर नोएडा से जो नोएडा के रूट हैं उसको भी आप समझ लीजिए, जेवर टोल से आगे कस्बा जेवर की ओर उतर कर साबौता अंडरपास और खुर्जा बाईपास और पहाड़ी पुर होते हुए आप अपने गंतव्य मार्ग तक पहुंच सकेंगे। परी चौक से जो नोएडा की तरफ का रास्ता है उसमें नोएडा जाने वाला वाहन है वो सूरजपुर से डाइवर्ट होकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रास्ते जा सकते हैं और आगरा से नोएडा हरनंदी नदी कट से वाहन सेक्टर 151 की ओर डबल सर्विस से जाएंगे और ग्रेटर नोएडा से नोएडा तक आप जो है चरखा गोल चक्कर से सेक्टर 94 की ओर डाइवर्ट होंगे और इसके बाद महामाया फ्लाई ओवर और सेक्टर 37 होते हुए आप जा सकेंगे। रास्ते आपके आसान हो हम तो यही उम्मीद करते हैं, बस सफर यूं ही सुहाना रहेगा। गीत सुनते रहिए फिर बता दें कुछ और खास।
1: सीने विच यारा गल्ला तेरिया करे छेड़खानिया है,
0: होती रहेंगे भाई सब जब तक ट्रैफिक
1: है।
0: तो याद रखिए यहाँ रहें मस्त रहें। तो मस्त मस्त गीत यूं ही बजते रहेंगे भाई साहब, हम आपके साथ जुड़े हैं जहां पर भी होंगे, मुस्कुराते रहेंगे आप और आपकी जो थकान है बिल्कुल दूर कर देंगे, आपको बस जुड़े रहना है हमारे साथ, गीतों का ये सफर यूं ही जारी रहेगा।

0: कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं, तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

और जिंदगी ऐसी है भाई साहब, खट्टे मीठे अनुभव हमको कराती रहती है और हम खट्टे मीठे अनुभव करते ही रहते हैं, क्योंकि जो संघर्ष करना जानता है उसको पता है भाई साहब इस खट्टे मीठे स्वाद को हमें कैसे एंटरटेन करना है। तो चलिए जिंदगी के इन स्वाद को चखते हुए कुछ और खास बातें हैं जो आज के दिन खास हो जाती हैं, ये हम समझ लेते हैं, क्योंकि बातें ऐसी हैं जब सबसे ऊपर कोई चीज़ आती है तो वह है हमारी हेल्थ, और हमारी हेल्थ का सीधा सीधा असर होता है साफ सफाई से। तो अगर हम अपने आप अपने आसपास साफ सफाई रखते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, और अगर नहीं रखते हैं तो आप समझिए फिर क्या कहलाएंगे और लोग क्या कहेंगे अगर कोई आपके यहाँ आएगा तो, है ना। इसलिए ये विषय निर्धारित किया गया, इस पर बात होनी चाहिए, पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को इस पर बात करनी चाहिए। हमें आपस में बैठकर ये समझना होगा कि स्वच्छता ही समृद्धि लाती है, इसलिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण हो गया हम सब के लिए, स्वच्छता से समृद्धि। इसीलिए इसे सरकार ने देश भर में मनाने की एक मुहिम चलाई और स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का विषय भी रख दिया, है ना। अब 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये आयोजित किया जा रहा है और इनमें अलग अलग विषयों पर अलग अलग तरह से हम सब अपने जरिए अलग अलग प्रोग्राम्स को आयोजित करके बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिर कितनी सफाई हो जाती है। और इस बार की थीम भी बहुत खूबसूरत रखी गई है, स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। और इसका उद्देश्य ही बड़ा खूबसूरत है कि देश का हर नागरिक कम से कम इस बात से जुड़े, उसे समझ में आए कि आखिर स्वच्छता हमारे आसपास कितनी ज़रूरी हो जाती है। हमें अपने साथ साथ अपने आसपास के इलाके भी स्वच्छ रखना है ताकि कोई भी वहाँ से गुजरे तो हमारा जो कहते हैं ना इनक्रेडिबल इंडिया, जब बाहर का कोई व्यक्ति आकर विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आता है या कोई भी दूसरे राज्य का व्यक्ति भी हमारे यहाँ आता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारे अंदर संस्कार कितने खूबसूरत भरे हुए हैं। तो इसीलिए इसका उद्देश्य भी रखा गया नागरिकों को जोड़ना, कचरे का जो वैज्ञानिक प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसको उसके बारे में गंभीरता से सोचा गया, और जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई मित्र इनको बोला गया, वो उनकी सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने की भी के पहलुओं पर भी चर्चा की गई थी। तो स्वच्छता लक्ष्य जो इकाइयां हैं उनका कायाकल्प करने के लिए गंदे और जो चुनौतीपूर्ण स्थान थे जिनको ब्लैक स्पॉट के रूप में चुना गया, उनकी पहचान की गई और समयबद्ध यानी समय समय पर उनकी साफ सफाई लक्ष्य रखा गया। स्वच्छ पाठशाला के जरिए युवा फॉर स्वच्छता, युवाओं को प्रोत्साहित किया गया और युवाओं और विद्यार्थियों को कचरे के प्रबंधन और जल संचयन के प्रति जागरूक किया गया और उनको भी जागरूक किया गया और वो अपने से जो अपने साथी हैं या अपने आसपास के लोग हैं उनको जागरूक करने लगे, यानी पूरी कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली गई और हम इसके विषय में और गंभीरता से सोचने लगे। और कहते हैं ना कि जब हम किसी काम में खुद जुटते हैं तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता लगती है, उसका महत्व पता लगता है। तो जो सफाई कर्मचारी हैं उनके स्वास्थ्य की भी जाँच निरंतर हुई कि भाई उनको किसी तरह की परेशानी ना हो और उन्हें जो है कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया ताकि उनके स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित किया जा सके देश के साथ साथ। जन भागीदारी की भी आवश्यकता पड़ी, लोगों को एक बेहतर नागरिक होने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपने देश को कैसा रखना है, इसलिए अलग अलग तरह से कचरे को जो उसका स्रोत है उसको अलग अलग किया गया और इसके ज़रिए खाद बनाने को भी बढ़ावा दिया गया। और स्वच्छ भारत दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा, विशेष ग्राम सभाओं और शहरी निकाय हैं वहाँ पर बैठकों का आयोजन कर स्वच्छता शपथ लेना भी ज़रूरी हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि योजनाएँ होती हैं हम तक पहुंचाई जाती हैं, लेकिन हमको एक बार अपने अंतर्मन में ये सोचना होगा कि हम अंदर से वाकई उतने खूबसूरत हैं, हम बाहर से भी वाकई उतने खूबसूरत हैं, तो हमारे आचरण में भी वो खूबसूरती झलकनी चाहिए। और यकीन मानिए जब आचरण खूबसूरत होता है तो खुद ब खुद देश कोई राष्ट्र खूबसूरत हो जाता है। तो ये जो कड़ियाँ जोड़ी गई हैं ना आपस में, इसको मत तोड़िएगा, ध्यान रखिए आप भी खूबसूरत हैं। और इस खूबसूरती पर नाज तभी होता है जब हम सब एकता के साथ, यूनिटी के साथ इस काम को अंजाम देंगे।

0: और अब समय है एशियन गेम्स अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की विशेष अपडेट में। घड़ी की सुई में ठीक 5:30 हुए हैं। बताते हैं इस घंटे की खास अपडेट। एशियन गेम 2026 में एथलेटिक्स ट्रैक से भारत के लिए एक और शानदार खबर आई है। पुरुषों की 1500 मीटर में गुलवीर सिंह ने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का परचम लहरा दिया। गुलवीर ने 3:36.72 सेकंड के पर्सनल बेस्ट टाइम के साथ रेस पूरी की। बेहद करीबी मुकाबले में जापान के काजुतो इज़ावा ने 3:36.35 सेकंड से एशियन गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया, जबकि जापान के ही नागिया मोरी ने 3:37.92 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। भारत के एक और धावक यूनुस शाह 3:43.88 सेकंड के साथ नवे स्थान पर है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले एशियन गेम्स में भारत ने इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था और अब गुलवीर सिंह ने उसे सिल्वर मेडल में बदल दिया, यानी पदक का रंग बदल दिया है।
3: And now we have another athletics medal update live coming in from the women's 5000 meters final. Parul Chaudhary has done it again. She has won the bronze medal for India in the women's 5000 meters, adding another medal to what has been a remarkable athletics campaign for the country. She has already stand out among many performers from India in the women's 3000 meters steeplechase medal as well. And you know, there was plenty of attention to Seema as well after bringing home the bronze medal in 10,000 meters. Expectations were high, but Parul Chaudhary has done it again. Another medal from athletics.
2: Hockey की बात कर लेते हैं विदुषी। यहाँ पर भारत

0: शानदार तरीके से एक तरफा अंदाज में बांग्लादेश पे पूरी तरह से हावी है। अंतिम जो क्वार्टर है खत्म होने वाला, 5 मिनट का समय बाकी और भारत ने 8-0 की लीड ले रखी है। यहां पर हरमनप्रीत सिंह जो भारत के जबरदस्त डेक विलकर है उन्होंने कमाल किया है। 27, 40 और 45 ये मैं मिनट बता रहा हूं, 27वें मिनट में 40वें मिनट में 45वें मिनट में 3 गोल स्कोर किया, लेकिन शुरुआत की थी अभिषेक ने 3 तीसरे मिनट में पहला गोल किया था, युवराज सिंह ने 22वें मिनट में गोल किया था, उसके अलावा बात करें सुखजीत सिंह ने 32वें मिनट में गोल किया, शिनालन लाखलाड़े 44वें और 45वें मिनट में लगातार 2 मिनट में 2 गोल स्कोर किया था। अभी इस वक्त भारत 8 बांग्लादेश 0 और खेल खत्म होने में महज 4.5 मिनट का समय बचा है।
1: We also have 2 athletics finals underway right now with plenty of Indian interest. The men's long jump and the men's javelin throw are happening simultaneously. So let's first take a closer look at the live action happening in the long jump and what difference an attempt can make. Let's begin with Murali Sri Shankar, who began with a 7.66 meter jump, which placed him 5th after the opening round. But he came roaring back with his second attempt, producing a superb 8.07 meters and moving straight up to the second position. That position stayed the same after his third attempt, recording 7.56. And there is movement for David Solomon Paturaj as well. He opened with 7.51 meters, which had him in the sixth position after the first attempt. His second jump measured 7.45 meters and that sees him currently in 7th. The position has remained the same after his third attempt recording 7.70, the fourth one recording 7.45. Meanwhile, China's Shi Yang has maintained the first position so far while also hitting the season best with 8.17. Meanwhile, Shahid, what's the latest from the men's javelin throw?
0: Bilkul, Rohit Yadav aur Yashveer Singh, in dono khiladiyon ne Neeraj Chopra ki kami mehsoos अब तक नहीं होने दिए। रमेश पतिराजे पीछे चल रहे हैं, रोहित यादव पहले स्थान पर हैं 84.35 मीटर दूर भाला फेंक कर, वहीं यशवीर सिंह 83.56 मीटर भाला फेंक कर दूसरे स्थान पर, यानी पहले और दूसरे स्थान पर भारतीय खिलाड़ी हैं। अगले घंटे में क्या घटित होता, कहां जाकर ऊंट किस करोड़ बैठता है, अगले घंटे आपको अपडेट में बताएंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को अगले घंटे के बाद आने के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप सुन रहे थे एशियन गेम्स 2026 की अपडेट।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
6: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
7: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
6: अल्फा जेन,
7: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

हाँ जी, ये तो गीतों का सफ़र अगर जारी रहता है तो फिर बेहद खूबसूरत हो जाता है हमारा सफ़र, और इस सफ़र को और खूबसूरत बनाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपने स्पोर्ट्स अपडेट भी सुन लिया और इसके साथ साथ गीतों का सफ़र जारी है, जानकारियों का पिटारा भी हमारे पास लगातार खुलता ही जा रहा है। तो चलिए, जो लोग BBA और BCom प्रोग्राम्स करना चाहते हैं उनके लिए भी एक खबर है जो आपको बता दें कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एजुकेशन के तहत 13 अक्टूबर तक दाखिले के लिए आवेदन जारी कर दिया। तो आप यहां आवेदन कर सकते हैं और जो तारीख है वो 13 अक्टूबर तक है। यूनिवर्सिटी के जो द्वारका कैंपस है उसमें एक प्रोग्राम में, दोनों प्रोग्राम में दाखिले से संबद्ध दाखिला पुस्तिका भी जारी की गई। अगर आप इस पुस्तिका को पढ़ते हैं तो आपको उसमें और भी संबंधित विषयों की जानकारी और डिटेल्स मिल जाएगी, और इन दोनों प्रोग्राम की आपको जो भी फी वगैरह होगी वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो अगर आप BP में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, आप जा सकते हैं और अपने विषय को चुन सकते हैं। 13 अक्टूबर तक की डेट है आपके पास, यानी कि समय समय है। आप इत्मीनान से अपने सारे कागज़ जो है जुटा लीजिए कि क्या क्या वहाँ पर जमा करने हैं, और पहुँच जाइए अपने एम तक, राइट। और गीतों का सफ़र यूं ही जारी रहेगा हमारे साथ, मिलते जुलते हैं। तो भाई, सफर को और थोड़ा सा सोना बनाते हैं, कुछ फास्ट सॉन्ग हो जाए पार्टी वाले, तब फिर सफर बन जाए ना। कहें कि बीट्स होती है तो फिर दिल की धड़कने भी बढ़ती हैं और जो जहां है वहां खुश हो जाता है।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

तो भाई साहब कोशिश यही है कि प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा। सिटी लाइट चल रहा है, रविंद्र के साथ आप यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश में कामयाबी ज़रूर मिलती है और यही कामयाबी तब भी मिलती है जब आप कुछ पढ़ते लिखते हैं भाई साहब। अगर आपको लगता है कि आप सफ़र में हैं और इंतज़ार लंबा हो रहा है तो आपके जो पीछे सीट पर बैठे हैं कुछ पढ़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ हम बात करने जा रहे हैं पढ़ाई की। क्यों आप पूछ रहे होंगे तो मैं बता दूँ आपको कि भाई साहब जो लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं और उनको अगर लगता है कि भाई अभी हमारी फ़्लाइट थोड़ी सी लेट हो गई, तो उनके लिए इतने बढ़िया इंतज़ाम किए गए हैं कि अगर आपको थोड़ी देर हो रही है तो उस इंतज़ार के बीच में आप अपने हिस्से की रोचक किताबें पढ़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। क्योंकि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सफ़र करने वाले यात्री जो हैं उनका ये जो सफ़र है उसको और बढ़िया करने के लिए अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी व्यवस्था की गई है, तो आप उसका QR कोड लेकर बैठकर अपनी जगह पर पढ़ सकते हैं। और अगर आप किताब ही पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके लिए एक लाइब्रेरी भी है जिसको जहाँ पर आप जाके किताब लेकर पढ़ सकते हैं मुफ्त में। तो रीड एट डेल पहल की शुरुआत की गई है और इस पहल के तहत जो है यात्री टर्मिनल पर मुफ्त में किताबें पढ़ सकेंगे और ये सुविधा टर्मिनल एक पर शुरू की गई है। तो आप टर्मिनल एक पर जाकर आराम से लुत्फ उठा सकते हैं। फिजिकल और डिजिटल दोनों रूप में ये उपलब्ध है। डिजिटल माध्यम से जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको फिर से बता दें कि QR कोड स्कैन कीजिए और यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा ऐसी बुक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। इवन आप अगर समाचार पत्रों को भी पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो डिजिटल लाइब्रेरी का आप लुत्फ उठाइए अगर आप सफर में हैं टर्मिनल एक पर, है ना, बढ़िया। लेकिन बस बात भी आती है कि भाई साहब सुविधाएं दी जाती हैं तो उनका ध्यान रखना भी तो हमारा ही काम है ना, अगर नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत होगी। बाकी अगर किताबें आपके साथ हैं और किताबें नहीं हैं तो हम आपके साथ हैं, चिंता किस बात की भाई साहब। जहां हैं जैसे हैं मुस्कुराते रहें, बस हेल्दी वेल्दी बने रहें और चेहरे पर मुस्कुराहट जब आएगी और आप कुछ भी कहेंगे तो बस मजे ही आ जाएगा।

0: हाँ जी, तो सारी चीजें हैं ना, हमने कहा ना कि हम गीत आपको सुनाते रहेंगे, तो इसे एक और गीत के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि जरीन आ गई और जरीन की आवाज जब आप सुनेंगे तो बस कहने क्या, इंतजार कीजिए उनकी आवाज सुनने के लिए। हम फिलहाल आपको यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं एक प्यारे से गीत के साथ, और उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी जानकारी भी हमने आपको दे दी, मौसम का हाल भी बता दिया भाई साहब, जिन रास्तों से होकर आप गुजर रहे हैं उन रास्तों के बारे में भी बता दिया, आपकी सेहत के बारे में बता दिया, सब कुछ तो बता दिया, और गीत भी सुनवा दिया, बढ़िया बढ़िया है ना, और खेल की झलकी हमें मिल गई। तो फिर करते ना, टाटा बाय बाय टेक केयर। आपको जहाँ भी है ज़्यादा टाइम लग रहा है तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, कहते हैं योगा हर जगह ज़रूरी होता है, स्ट्रेचिंग भी कर लेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा तो कहीं भी अगर हल्की फुल्की थकान दर्द होगी तो सब ठीक हो जाएगी। बाय बाय टेक केयर।
1: Now listen.
2: Get up.
1: That's right.

नमस्कार, पेश है इस घंटे की खास खबरें। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। दिल्ली सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य संस्थागत साझेदारी को स्थापित कर सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समय सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने पहली नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाली विध्वंस गतिविधियों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के अंतर्गत काबुल के सरकारी अस्पताल के लिए जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। और आखिर में एशियाई खेलों में अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं। तो ये थी इस घंटे की खास खबरें। और अब प्रोग्राम MMM यानी मैसेज मसाला मिक्स मेरे यानी जरीन के संग।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: तो दोस्तों, आपसे मिलकर बातें कर हमें बहुत खुशी मिलती है, और कैसे बताएं, आपसे मिलकर कितना मज़ा आता है। कल ही मिली थी मैं आपसे, रंगे महफिल, आपकी याद आती रही। तो प्रोग्राम चाहे जो भी हो, मौसम चाहे जो भी हो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सर्दी की दस्तक हो गई है और ऐसा लग रहा है कि माहौल में थोड़ी शीतलता है, तो मौसम कोई भी हो, आप हमारे लिसनर्स जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। और हम ये दुआ करते हैं कि ऊपर वाला आपको सलामत रखे, कामयाब रखे और सबसे बड़ी बात, खुश रखे। तो अभी पूरे एक घंटे खुश रहने की बातें करेंगे और खुश खुद को रखने की बातें करेंगे। फिलहाल खुशी के इस कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और पहला ट्रैक अरिजीत सिंह और नेहा

वेल आप सुन रहे हैं MMM, बोले तो मैसेज मसाला मिक्स और मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। आपको नंबर पता है, व्हाट्सएप धड़ाधड़ हो रहे हैं, तो पहला मैसेज हम ले लेते हैं। जी हाँ, किसका है? मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी मैसेज किया है आपने। कह रहे हैं कि रेडियो सुने बिना रहा नहीं जाता। वेल, आप ही के लिए तो प्रोग्राम लेकर आया जाता है, आप ही के लिए तो गाने हम प्ले करते हैं, सब कुछ आपसे ही है, आपकी महफिल और आपसे ही रौनक। अगला ट्रैक हम जो प्ले करेंगे, उससे पहले आनंद विहार रेलवे कॉलोनी से ये स्वाति जी का मैसेज आया है और साथ में उन्होंने लिखा है, किशन वांजानी नीलम गुड आफ्टरनून कर रही हैं और कह रही हैं शोला जवाब है, प्रोग्राम के गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। वेल, गाने आपके लिए हैं, अगला ट्रैक हम प्ले करेंगे और उसके बाद हमारे जो और लिसनर्स हैं उनके मैसेजेस हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये गाना अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में, हियर वी गो।

वेल, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, आपके साथ मैं आपकी दोस्त जरीन। प्रोग्राम में वक्त हो गया है बाय द स्टूडियो क्लॉक 6:15। आप लगातार हमें मैसेजेस भेजते रहिए, मैसेजेस आपके हम ले रहे हैं बारी बारी से। जी हाँ, बूंदों की सरगमगिरी, मन दीवाना हो गया, पेड़ पंछी गा उठे, दिलकश तराना हो गया, धूप गर्मी और तपिश से बेपनाह राहत मिली, आप आए शो में तो मौसम सुहाना हो गया। जी हाँ, ये कहना है प्रेमचंद्र प्रेमी जी का, धामपुर से मैसेज किया इन्होंने हमें, और चैत्रा धामपुर से बहुत सारे फरमाइश की है, लाखों बहाने मिले हैं आपसे मिलने का और गाने सुनने का मौका मिला है, ये भी कहना है प्रेमचंद प्रेमी जी का। वेल, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, गाने आपके लिए हम प्ले कर रहे हैं। पंकज जी अमरावती महाराष्ट्र से कह रहे हैं, गुड इवनिंग आरजी जी, कैसी हैं आप? वेल, मैं बहुत अच्छी हूँ और आपसे मुलाकात करके और भी दिन बन गया हमारा, हालांकि दिन आधा बीत चुका है। यही सवाल आपसे हम कहना चाहते हैं कि आपका दिन कैसा रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बुरा या फिर 50-50? लाइफ में ना चीज़ें एकदम एक्सट्रीम नहीं होती, तो अगर 50-50 भी कुछ मिल रहा है तो वो भी वेल एंड गुड है। तो आज आपका दिन कैसा रहा, ये सवाल मेरा आपसे, जवाब दीजिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और मैसेज मसाला मिक्स को एंजॉय कर रहे हैं पंकज जी अमरावती से हमें मैसेज कर रहे हैं, मैसेज हमने पढ़ लिया। नरेंद्र सोनी जी देवीगढ़ पटियाला से मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं चुलबुली आवाज की कमी थी जो कि आपने पूरी कर दी आकर, अरे बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात वैसे तो बहुत कम होती है शो में, लेकिन जब भी आई हूँ बहुत सारा प्यार आप लोगों का मिला है, और एक बार फिर से हम मैसेज बार बार पढ़ेंगे, गाने आप तक पहुँचाएंगे। आदिल कमर साहब का गुन्नौर से मैसेज आया है, शुक्रिया कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ अच्छा सा गाना प्ले कर दीजिए। लीजिए जी, मोहित चौहान का ये ट्रैक अगला आप सभी के लिए।

0: गुपचुप गुपचुप गुपचुप होय खुश खुश खुश खुश खुश
1: ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते
0: गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़
1: ओए आंखों ही आंखों में कर बातें
0: गुपचुप गुपचुप गुपचुप होय खुश खुश खुश खुश खुश
1: ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते
0: गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़

वेल प्रोग्राम आपका अपना जाना पहचाना MMM यानी मैसेज मसाला मिक्स। मैं आपके साथ आपकी दोस्त जरीन हूँ। जी हाँ जरीन दीदी, हमको गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। देखा तुमको, जब से देखा तुमको यारा, ये सॉन्ग पसंद आया और बहुत दिनों बाद सुना हमने, बढ़िया गाना। प्रमोद चिंचोलकर अंकोला महाराष्ट्र से ये मैसेज हमें कर रही हैं। वेल अगला मैसेज हमारे पास संदीप का आया नोएडा से, कह रहे हैं प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न से भी जोई का मैसेज आया है, कह रहे हैं कि सॉन्ग्स पसंद आ रहे हैं और फिलहाल जो अगला ट्रैक है वो हमने निकाल के रख दिया है आपके लिए। हम मैसेजेस भी लेंगे दोबारा, लेकिन फिलहाल ये ट्रैक आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ यानी प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में।

0: और अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: वेलकम बैक टू योर एशियन गेम्स अपडेट वेयर द इंडियन फ्लैग इज बैक ऑन द पोडियम। आई एम विदुषी वत्स विद मोहम्मद शाहिद आजमी एंड वी हैव ह्यूज एथलेटिक्स अपडेट कमिंग इन लाइव फ्रॉम द एशियन गेम्स। इंडिया हैज वॉन मोर देन 300 एथलेटिक्स मेडल एट द एशियन गेम्स एंड इट इज मुरली श्री शंकर हु हैज क्रिएटेड दिस लैंडमार्क मोमेंट। श्री शंकर विंस सिल्वर इन द मेन्स लॉन्ग जंप, प्रोड्यूस्ड अ बेस्ट जंप ऑफ 8.07 मीटर्स to finish with the silver medal, successfully defending the silver medal he won at the previous games. A two-time Commonwealth Games silver medalist once again delivers on this big stage. But this final also had a difficult moment for the Indian star. Sri Shankar had to retire from the competition after suffering an injury during his fourth attempt. Still, that 8.07 meter effort that had already done the job, securing another Asian Games silver. But this is not all. The Indian performance from athletics does not pause here. There is more from medals at this moment that we are excited to share.
3: बिल्कुल, भारत को एक ही इवेंट में दोहरी सफलता मिली, दोहरी खुशी मिली है। मेंस जेवलिन थ्रो में भारत ने शानदार डबल पोडियम फिनिश किया। यशवीर सिंह ने सिल्वर तो रोहित यादव ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। यशवीर सिंह ने अपने आखिरी प्रयास में 85.72 मीटर का पर्सनल बेस्ट थ्रो करते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा कर लिया। वहीं रोहित यादव का आखिरी प्रयास फाउल जरूर गया, लेकिन उन्होंने 84.35 मीटर का थ्रो करके ब्रॉन्ज मेडल अपने कब्जे में कर लिया। गोल्ड मेडल की बात करें तो गोल्ड मेडल रुमेश पथिराजा ने जीता। उन्होंने आखिरी प्रयास में 88.55 मीटर का थ्रो करके जो शानदार उनका थ्रो था स्वर्ण पदक दिला गया। हालांकि उन्होंने चौथे अटेम्प्ट में ही 88.33 की दूरी नाप ली थी, वहीं उनका स्वर्ण पदक पक्का हो गया था। लेकिन भारत के लिए यकीनी तौर पर जेवलिन थ्रो में जो उम्मीद की जा रही थी नीरज चोपड़ा की, हालांकि कमी जरूर रही, अगर होते शायद गोल्ड तक जाते, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने दो पदक जीतकर डबल खुशी जरूर दी है विदुषी।
2: Absolutely, the action is unfolding right now. The medals are coming in, records are being broken, and India is making its presence felt across athletics and boxing as well. To take a quick look at some absolutely amazing headlines we have had in the last hour and a half, Parul Chaudhary does it again, bronze for India in the women's 5000 meters. Vithya Ramraj creates history with a bronze medal and a national record in the women's 400 meter hurdles. She has gone past P.T. Usha's 42-year-old national record. Gulveer Singh adds another silver and Kapil Pokhriyal storms into the semi-finals of the men's 90 kilo category. One more update is that Pooja has qualified for the women's 800-meter final after finishing 5th in her heat.
3: बिल्कुल, भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात करते हैं, एक तरफा अंदाज में भारत ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी, 10-0 से हराया। बता देते किसने किसने गोल किया। हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल स्कोर किया 27वें, 40वें और 45वें मिनट में, लेकिन खाता खोला था अभिषेक ने 3रे मिनट में गोल करके। वहीं सुखजीत सिंह ने 32वें, शिलानंद लाकड़ा ने 44वें और 45वें मिनट में, संजय ने 59वें मिनट में, जबकि जो ताबूत में आखिरी कील था उसे ठोका मनदीप सिंह ने 60वें मिनट में। इस तरह बांग्लादेश को चारों खाने चित करते हुए भारत ने जीत दर्ज कर ली हॉकी मुकाबले में।
2: Absolutely, more fantastic news this hour. As we say, these games are with twists and turns. This one comes from India men's 4x400 meter relay team, which has now headed into the final. The Indian quartet of Dharmveer Chaudhary, Rajesh Ramesh, Manu, and Jay Kumar has stormed into the final after clocking 3:01.49 in heat 2. And this is the big headline. That is the fastest time across both heats. So India not only qualifies, but does it with the quickest time of the entire heats. And right now, there is more relay action underway. The women's 4x100 meter relay final has just started. It's just about to take our attention to the track and see how India is doing in this one. India is making its presence felt on the track and the momentum continues.
3: बिल्कुल, उम्मीद करेंगे यहाँ भी भारत को पदक मिले। कुछ लम्हों बाद decide हो जाएगा, फैसला हो जाएगा यहाँ पर किसके खाते में पदक जाता है। फिलहाल हमारा समय समय समाप्त हो रहा है इस घंटे की अपडेट के लिए। अब मिलेंगे आपसे ठीक 7:30 पर, तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
0: तो अभी आप सुन रहे थे एशियन गेम्स 2026 की अपडेट, और फिर एक बार प्रोग्राम MMM यानी मैसेज मसाला मिक्स जरीन के संग बने रहिए हमारे साथ।

वेल, आज के टॉपिक के बारे में मुझसे सवाल किया जा रहा है, तो जवाब एक बार फिर से सुनिए। मैंने सवाल किया था कि आपका आज का दिन लगभग आधा से ज्यादा बीत चुका है, तो दिन कैसा गया? बहुत अच्छा, बहुत बुरा, या फिर 50-50? लाइफ में ना 50-50 की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए, अच्छा रहता है। ये हमारे पास मैसेज आया था हीरामणि वर्मा का, दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। पूछ रहे थे कि मैडम एक बार टॉपिक बता दीजिए। चलिए, मैसेज के माध्यम से जब हमें पता चला कि कुछ जो लिसनर्स हैं वो अभी नहीं समझ पाए हैं कि आज का टॉपिक क्या है, तो हमने बता दिया। अब आप बताइए कि आपका दिन कैसा रहा। दीदी शुभ संध्या, यशवंत आठमुडे, धाराशिव महाराष्ट्र से ये मैसेज आया है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुभ संध्या आपको भी। वेल, संध्या हो चुकी है, लेकिन दिन कैसा बीता ये तो बताइए हमें। जरीन जी, आपकी आवाज़ हमें पसंद आ रही है जी, बहुत शुक्रिया। आपका साथ हमें बहुत पसंद आता है साहब, और जब हमारे मैसेजेस आते हैं तो हमारे जो दिल के तार हैं वो झंझना उठते हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो देश के कोने कोने से, उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, और इनफैक्ट विदेश से भी हमें मैसेज करते हैं। डॉली जी का मैसेज आया, कह रही है वेरी गुड इवनिंग जरीन, कैसी हैं? ब्यूटीफुल ट्रैक्स प्ले कर रही हैं, मेरी पसंद के हैं। वेल, मन की बात हम भी समझ जाते हैं थोड़ा थोड़ा कि आपको से गाने पसंद आएंगे। माहौल ऐसा हो कि जब लगे कि डांसिंग नंबर्स बजने चाहिए। बली मारान से हमारे पास मैसेज आया, नवाब अहमद भारती, बबलू कश्यप का, शबाना भारती, अरहान अहमद का और सूफिया नवाब का। बलीमारान से इन्होंने मैसेज किया और कह रहे हैं कि दिल्ली रेडियो लिसनर क्लब से भी हम जुड़े हुए हैं और जो ट्रैक आप प्ले कर रही हैं हमें बहुत पसंद आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया आप सभी का। मध्य प्रदेश से हर्षवर्धन साहब का मैसेज आया है, उन्होंने मैसेज किया है कि मैसेज मसाला मिक्स कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, गाने भी मज़ेदार हैं, प्ले लिस्ट अच्छी है। अरे जी क्या बात है, सब कुछ आप लोगों को पसंद आता है ना, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वेल, हमारे पास ये जो मैसेज है, सेकंड लास्ट मैसेज के बाद हमने सोचा एक और मैसेज ले लिया जाए, फिर हम गाने प्ले करेंगे। भेरूलाल वाकतरिया धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से ये मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स अच्छा लग रहा है। हालांकि इन्होंने अपने क्षेत्र में सोयाबीन कटाई और खेत हाँकने को लेकर और रबी फसल से संबंधित कई जानकारियाँ हमें दी हैं, लेकिन उनका ये कहना है, मतलब ये सारी बातें वो इसलिए बता रहे हैं कि व्यस्त रहते हुए भी उनका दिन बहुत अच्छा रहा और ये काम इन्होंने किया, यानी कि सोयाबीन की कटाई की, खेत में जानवरों को हाँका, रबी की फसल लगाने के कार्यक्रम को थोड़ा प्रगति दी, और इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद ये हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैसेज मसाला मिक्स को सुन रहे हैं। भाई आपने अपनी दिनचर्या हमें बताई, और भी जो लिसनर्स हैं वो भी हमसे बात कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आज का दिन कैसा रहा। लता मंगेशकर जी को बहुत बहुत प्रेम भेज रहे हैं, हालांकि अब हमारे बीच वो नहीं हैं, लेकिन उनके बर्थडे के ज़रिए पूरा देश उन्हें, पूरा विश्व उन्हें याद करता रहता है, और आज का दिन तो बहुत ही विशेष है। यही बात लिखी है विजेंद्र घटोल साहब ने अंकोला से, कह रहे हैं कि बहुत अच्छे गाने हमें मिल रहे हैं सुनने को, और साथ ही आज का दिन बहुत ही विशेष है, और लता जी के लिए बहुत ही सुंदर शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, और एफएम रेनबो इंडिया को भी बधाई दे रहे हैं कि दिन भर कई सारे गाने लता जी की याद में आज सुनाए गए। वेल, अगला ट्रैक हम अब आप तक पहुंचा रहे हैं, उसके बाद आपके मैसेजेस हम फिर से लेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम है MMM यानी मैसेज मसाला मिक्स, तो बात आप ही की होती है, गाने हम अपनी तरफ से प्ले कर देते हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपको पसंद आते हैं, क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी है ना दिल से दिल तक, FM रेनबो इंडिया की सतरंगी सात रंगों वाली कनेक्टिविटी है ही लाजवाब।

0: जी हाँ, गुड्डू धाकड़ उज्जैन जिला के बेड़ावन गांव से हमें मैसेज कर रहे हैं। कह रहे हैं दिन बहुत ही शानदार गया और सुबह उठकर पोहे और जलेबी बनाई हमने, बहुत मजा आया। इसके अलावा हमारे पास मैसेज आया है सनी बिमला पुहाल सीनियर रेलवे कॉलोनी अंबाला कैंट से। कह रहे हैं आज का दिन अच्छा ही गया, अच्छा जाना भी था, बारिश हो रही थी, असली खुशी तो बारिश में ही होती है। अब सर्दियां भी शुरू हो जाएंगी तो सर्दियों का मौसम मुझे बहुत पसंद है, ऐसा ये कह रहे हैं बिमला पुहाल जी, क्योंकि पंजीरी खाएंगे, पंजीरी बनाएंगे। और आज के गाने ऐसा लग रहा है कि मेरी ही पसंदीदा गीतों की श्रृंखला है, मेरी ही प्लेलिस्ट है। दिल से शुक्रिया भाई, दिल से तो हम शुक्रिया करना चाहते हैं आपको कि आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं। कुछ गाने ऐसे होते हैं ना 80s के 90s के जो दिल से जुड़े होते हैं, और ऐसा ही कुछ रिश्ता है हमारा और आपका जो दिल से जुड़ा होता है। हमारे पास मैसेज आया है चाईबासा झारखंड से, पश्चिमी सिंहभूम जिला में ये पड़ता है, चाईबासा झारखंड से, जहाँ से श्रोताओं के नाम हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप। कह रहे हैं कि मौसम अच्छा रहा और सप्ताह भर की बारिश से आज छुटकारा मिला, आज का दिन खुशहाल था और दिन भी शानदार था। शाम ढली और बस आपसे मुलाकात हो गई, कुछ अच्छे गाने सुनने का मौका मिल गया। वेल, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट मैसेज निमराना से शालजा जी का है, कह रही आज का दिन अच्छा था, वर्क के साथ साथ एंजॉय भी किया और ऑल्सो टुडे इज अ प्लेजेंट वेदर। ऑब्वियसली बात है भाई, मौसम तो बहुत ही शानदार है, दो दिनों से मौसम ने जो करवट बदली है ना, मजा आ गया है, बस मजा आ गया। ऐसा ही कुछ मजा आएगा कुछ अगला ट्रैक जो मैं आप लोगों के लिए प्ले करूंगी उसे सुनकर, लेकिन फिलहाल कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं दोबारा।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप, और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे, प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे।
1: आप ले लो,
2: मुझे दो ट्रैक्स निकालने,
1: लगा लो।
3: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
4: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
3: इम्पॉसिबल
4: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
6: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
7: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं,
8: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
9: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है,
10: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
6: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ।

0: रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
4: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
6: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: देखो, देश के कोने कोने से मैसेजेस आए और उसी कड़ी में मीरा सिंह का मैसेज सिलचर आसम से आया। बोल रही है, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और बाजार में रौनक इन दिनों देखते ही बन रही है। बहुत धूमधाम से तैयारी की जा रही है और बहुत भीड़ है, तो मजा आ गया, आज हम भी बाहर गए। वेल, धामपुर से जो मैसेज आया प्रेमचंद जी का, शुरुआत में भी उन्होंने मैसेज किया था और अभी भी मैसेज किया, और बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। पूजा का मैसेज आया हमारे पास गाजियाबाद से। इसके अलावा अमरावती से मैसेज आया पंकज जी का, और हमारे पास ये सुखलाल बाबा फलकटा वेस्ट बंगाल से मैसेज आया। तो इन सारे मैसेजेस के बाद अब अगला ट्रैक आपके लिए छोड़े जा रही हूँ कुमार सानू की आवाज़ में। वेल, आपसे मुलाकात होगी 1 घंटे के ब्रेक के बाद दोबारा। बने रहिए हमारे साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
4: वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड यू ट्यून टू कंट्री कार्निवल विद मी मनोज चक्रवाल ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज। एंड आवर लिसनर्स एंड फ्रेंड्स आर सेंडिंग इन लॉट्स ऑफ मैसेजेस। टाइम टू टेक अप क्विक 2 more messages, yes, and it says, good evening, RJ Manan Tagral, M. Rajkumar, welcome, gentlemen, and I must tell you all that he calls me Laugh Master, and that's what he writes every time, howdy, Laugh Master, and that brings a very big smile on my face. Thank you so much, Mr. Rajkumar, for joining in, and really glad to catch you on this show as well. Thank you very much. Another message coming in saying, hi, good evening, sir, Shri Ram here, how are you doing? Playing nice track. Rocking show, could you please play Bob Dylan? Thank you so much, Shriram, for joining in. Thank you for liking the music as well. And that is what we have for. But next, what come in is something really special because this is Country Carnival. And sometimes we spend so much time with

0: I have something really important coming your way. So stay tuned to Akashvani Rainbow 102.6 MHz. And my name is Manat Akral. And if you just tune in, to stay tuned, something really special coming your way. It's time for the Asian Games 2026 update.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: वेलकम बैक टू द एशियन गेम्स अपडेट। आई एम विदुषी वत्स विद मोहम्मद शाहिद आजमी। द डे एट द गेम्स टुडे हैज जस्ट एंडेड एंड इट्स टाइम टू सी हाउ द डे हैज बीन फॉर इंडिया टुडे। बट बिफोर दैट, इन आवर लास्ट अपडेट वी टोल्ड यू दैट द वुमेन्स 4x100 meters रिले फाइनल हैड गॉट अंडर वे। वेल, देर इज नो पोडियम फिनिश फॉर इंडिया इन दिस वन। द इंडियन क्वार्टेट ऑफ तमन्ना, स्नेहा, सुदेशना एंड अभिनया हैव फिनिश्ड फोर्थ, clocking a season's best of 43.57 seconds, but India missed the podium by just 0.05 seconds. A difficult baton exchange cost the Indian team valuable ground. But that's not all that we have from this absolutely fascinating day of competition. It has been a day of twists, turns, dramatic finishes, and most importantly, four more silver medals for India. And if we talk about the silver medal story of the day, it was Aisha Singh who set the momentum rolling. Aisha won silver in the women's 25-meter pistol, producing a brilliant score of 38 in an incredibly dramatic final. And this was a final that demanded composure. Five shoot-offs for Aisha. Five moments where the pressure kept rising, but she kept her calm and fought her way to that silver medal. That first silver medal set the tone for what became a remarkable medal run for India today. And then came another one from athletics, Yashveer Singh, the throw that won silver. Yashveer saved his best for the last, producing a personal best of 85.72 meters on his final attempt. Every throw went further than the last. Then came another outstanding performance from Gulveer Singh after his silver in 10,000 meters. Gulveer has now added another silver in the men's 1500 meters, this time with a new personal best.
3: जी बिल्कुल, रजत पदक के बाद कांस्य पदक की बात कर लेते हैं। आज भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में दमदार प्रदर्शन करते हुए चार कांस्य पदक अपने नाम किए। सबसे पहले बात एथलेटिक्स की, पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया। पारुल का इन एशियन गेम्स में यह दूसरा पदक है। पारुल ने इससे पहले 5000 मीटर में 15:14.61 का समय निकालकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं आज पुरुषों के जेवलिन थ्रो में रोहित यादव ने कांस्य पदक अपने नाम किया। रोहित ने 84.35 मीटर का शानदार थ्रो किया। महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स में विद्या रामराज ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने 54.75 का समय निकालते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी कायम कर डाला। और आखिर में कुराश से अच्छी खबर आई। महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में पिंकी बल्हारा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं भारतीय मुक्केबाजों ने आज ऐसा पंच लगाया कि एक ही दिन में तीन मेडल पक्के हो गए। बात तीन मुकाबलों की नहीं बल्कि तीन ऐसे मैच थे जिसने मेडल की न सिर्फ आस बढ़ाई है बल्कि मेडल का रंग भी बदलने की उम्मीद जताई है। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत के लिए पदक पक्के किए हैं।
2: And as we wrap up what today has been a remarkable day for India, let's now look ahead to tomorrow and the action that awaits. There's a pretty good lineup across disciplines with several Indian athletes ready to take center stage. If we look at archery, we have the men's and women's individual round of 32 and 16. We'll be looking at Neeraj Chauhan, Dheeraj, and we'll be looking at Kirti as well. And of course, when it comes to athletics, well, it's another busy day. We have the women's high jump final where expectations will be high from Pooja. We have the women's hammer throw final scheduled with Anushka and Tanya carrying our hopes. Then comes the men's 800 meter final with Mohammad Afzal in action, and we'll also be looking forward to the men's 5000 meter final where all eyes will once again be on Gulveer Singh and Avinash Sable. In boxing as well, some big semi-final bouts coming up for us. The women's 65 kilo semi-final, India's Parveen will take on China's opponent. Men's 80 kilo semi-final, Ankush will face Uzbekistan's opponent, while in men's plus

0: 90 kilogram semi-final, India's Narendra will be up against Kazakhstan's opponent as well.
1: जी बिल्कुल, अब मेडल टैली पे चलते हैं, बताते हैं चाइना ने 132 गोल्ड, 53 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज समेत 230 पदक जीते हैं। 230 पदक के साथ सबसे ऊपर है जापान की बात करें, 41 गोल्ड, 68 सिल्वर, 63 इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल, 172 पदक हैं। दूसरे पायदान पर वही कोरिया की बात करें, 21 गोल्ड मेडल हैं, 26 सिल्वर, 43 ब्रॉन्ज समेत 90 पदक हैं। भारत की बात कर लेते हैं, 4 गोल्ड, 20 सिल्वर, 21 कांस्य समेत कुल 45 पदक जीते। इन 45 पदकों में 19 पदक केवल एथलेटिक्स से आए, जबकि 12 पदक शूटिंग से आए हैं। अब कल का दिन जब नया शुरू होगा वहां देखना होगा भारत किस तरह का प्रदर्शन करता है। लेकिन आज की अंतिम अपडेट में यह बताते हुए, आज रात 10 बजे विशेष हमारी रिपोर्ट जरूर सुनिएगा जो एशियन गेम्स पर आधारित है। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को कहते हुए अनुमति दीजिए, कल सुबह ठीक 9:30 पर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: यू आर लिस्निंग टू द एशियन गेम्स 2026 अपडेट।

योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत कल से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की गई। दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण तथा दिल्ली के मास्टर प्लान एमपीडी और भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ जारी शहरव्यापी प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत आज 29 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाली विध्वंस गतिविधियों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। और एशियाई खेलों में अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिसमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल है। तो ये थी इस घंटे की खास खबरें और अब प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती जरीन के संग।

नमस्कार, पेश है इस घंटे की खास खबरें। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेल दोस्तों, कुछ मुलाकातें बस मुलाकातें नहीं होती हैं, वो हमारी यादों का खूबसूरत हिस्सा बन जाती हैं। तो अगर आपके दिल में भी प्यार का करंट दौड़ रहा है तो आवाज़ बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब माहौल होने वाला है एकदम झक्कास। पहला ट्रैक मोहित चौहान की आवाज़ में, हियर वी गो।

वेल, मैं आपकी दोस्त ज़रीन। प्रोग्राम जारी है बार बार लगातार, और जैसे कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा कि कुछ मुलाकातें बस मुलाकातें नहीं रहती, वो हमारी यादों का खूबसूरत हिस्सा बन जाती हैं। और जब पहली नज़र में ही दिल किसी को अपना मान लेता है तो हर धड़कन में बस उसी का नाम सुनाई देता है। तो चलिए प्यार की इसी खूबसूरत एहसास को महसूस करते हैं एक प्यारे से सॉन्ग ट्रैक के साथ, और इस गाने को लेकर आ रही हैं कविता कृष्णमूर्ति अपनी खनकती आवाज़ में।

वेल बाय द स्टूडियो क्लॉक इट्स 8:11 और आप सुन रहे प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती जरीन के संग। हम आम से इंसान, आम से इंसान जो है ना, दिन को खास बनाने के लिए जाने क्या जतन करते हैं। हाँ, मन नहीं भी करे तो अलार्म लगाकर उठ जाते हैं, मन नहीं भी करे तो भागे भागे ऑफिस पहुंच जाते हैं, ट्रैफिक को झेलते हुए काम करते हैं, प्रेशर में रहते हैं और तिनका तिनका पाई पाई जोड़कर अपने दिन को बेहद खास बनाने की कवायद करते हैं। और ऐसे ही न जाने दिन, महीने, साल कैसे सर से बीत जाते हैं। और अभी जो ये महीना चल रहा है, इसके कुछ एक दो महीने बाद, तीन महीने बाद साल खत्म हो जाएगा और फिर एक नया साल आ जाएगा। और ये जो चक्र है ना जीवन का, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो क्या मानते हैं आप कि हम जो आम से इंसान हैं, अपने दिन को खास बनाने के लिए, अपने साल को खास बनाने के लिए, इनफैक्ट अपनी पूरी जिंदगी को खास बनाने के लिए क्या से क्या नहीं करते करते हैं ना। तो भाई, अगर हम अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन नहीं बना पा रहे हैं इतनी जद्दोजहद के बाद, जो कि अमूमन हम इंसान सोचते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स वाली थ्योरी है ना, डिमांड एंड सप्लाई की, जितनी भी सप्लाई करते हैं ऊपर वाला, डिमांड बनी रहती है, इनफैक्ट बनी भी रहनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी जीने की एक तासीर बनी रहती है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी पूरा करो, वो भी पूरा करो। मतलब एक टारगेट पूरा होते ही हम एक नेक्स्ट टारगेट सेट कर देते हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन हाँ, कोशिश पूरी होनी चाहिए, नाशुक्री नहीं करना चाहिए। और हम जो है ना, यहाँ पर बैठे हुए आरजेस जो आपको गाने सुनाते हैं, आप तक दिल की बातें पहुँचाते हैं, आपके दिल की कुछ सुनते हैं, अगर कुछ नहीं कर पाए तो एक प्यारी सी जादू की झप्पी गाने वाली तो आपको दे ही सकते हैं और दुआएं कर सकते हैं कि आपका दिन बेहतर से बेहतरीन जाए। तो इसी कड़ी में अगला ट्रैक हम क्वीन फिल्म से आपके लिए लेकर आए हैं, ओ गुजरिया। आई होप कि पसंद आएगा आपको।

Well, by the studio clock, it's 8:18. And you are listening 102.6 Mind Blowing Megahertz FM Rainbow India. And मैं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे ज़रीन। हमेशा मैं ये कहती हूँ दोस्तों कि जिंदगी का वॉल्यूम ना थोड़ा अप कीजिए, टेंशन को थोड़ा साइड कीजिए, या इनफैक्ट उसका वॉल्यूम जो है म्यूट ही कर दीजिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि म्यूजिक, मस्ती, पार्टी असली धड़कन है जिंदगी की, अगर आपको खुश रहना है तो। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर जाना पड़ेगा, बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे। हम छोटी छोटी खुशियों को ही संजोकर पार्टीज कर सकते हैं, मस्तीज कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। जैसे कि कुछ अच्छे गाने हम प्ले कर रहे हैं आपके लिए, तो हो रहा है ना एकदम पार्टी वाला माहौल। हर बीट पर दिल डांस कर रहा है, हर गाने के साथ चेहरे पर स्माइल आ रही है और हर पल बन रहा है हैप्पीनेस वाला मोमेंट। तो आप ऐसे ही तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपका एक और फेवरेट गाना भी प्ले करने वाले हैं और ये बजेगा तो धमाल होगा, फुल ऑन मस्ती होगी, हैप्पीनेस का डोज डबल हो जाएगा। मैं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त ज़रीन हूँ इस वक्त प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती लेकर, और ये अगला ट्रैक है अलीशा चिन्नॉय जी की आवाज़ में, इट्स रॉकिंग।

8:25 हो चले हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक, लेकिन ये घड़ी की जो टिक टिक टिक टिक हो रही है उसके बीच में गाना प्ले होते हुए मेरे दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। अरे भाई, एक सवाल ये है, सोच लेती हूँ कि आपसे भी शेयर करना अच्छा रहेगा। सवाल ये है कि अगर जेब में नोट हो लेकिन हंसने वाला कोई ना हो आपके पास, तो क्या आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा? बताइए। और अगर दोस्त साथ हों, घर वाले साथ हों, दिल में सुकून हो, तो चाय के 10 रुपये भी किसी 5-स्टार कॉफ़ी से महंगे लगते हैं। मतलब आप कहीं स्पेंड कर रहे हैं, अब जैसे बड़े बड़े होटलों में, बड़ी बड़ी जगहों पर कॉफ़ीज़ के रेट भी 100-200 हो जाते हैं, तो ये जो मिडिल क्लास दिल है ना, वो क्लिक क्लिक करता है कि इतना पैसा देना पड़ रहा है। लेकिन भाई, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी जगहें, खर्च तो करनी पड़ती है। लेकिन सवाल ये होता है कि पैसा ज़रूरी है? कितना ज़रूरी है? बिल भरने के लिए, सपने पूरे करने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, ऑनलाइन सेल में दिल को बहलाने के लिए कि भाई ये भी ले लो, वो भी ले लो, भले ही वार्डरोब भरा हो, आपको पता नहीं चल पा रहा हो कि कहीं जाने के लिए क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, लेकिन बस ले आओ ले आओ, नए कपड़े ले आओ, क्योंकि दिल है ना मानता ही नहीं है। दिल तो पगला है, बुराहा है, बुरा जाता है चीज़ों को देख कर, संभाल नहीं पाता, चाहता है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और जो महिलाएँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो तो इसमें कई कदम आगे हैं, क्या मानते हैं आप? लेकिन यहाँ बैठे बैठे जब मैं इस सवाल को थोड़ा गहराई से सोच रही थी कि पैसा क्या सब कुछ है, तो फिर दिमाग में एक सोच आई कि सबसे बड़ी बात जो दौलत है ना, वो है आपका अपना परिवार, आपका प्यारा निवेश किसी चेहरे की मुस्कान से, है ना, कि बहुत सारा सोना चांदी पैसा इकट्ठा करने से। क्योंकि बहुत सारी महंगी से महंगी चीज़ें आ जाएंगी तो वो एक वस्तु की तरह, मतलब मैटरलिस्टिक चीज़ों की तरह आपके घर के किसी कोने में या लॉकर में पड़ी होंगी, लेकिन जब मुस्कुराते चेहरे, स्माइल वाले चेहरे आपके इर्द गिर्द घूमेंगे ना, तो तब आपको पता चलेगा कि ये जो रिश्ता मैंने कमाया है ना, ये औसम है, अपने आप में बहुत खूबसूरत है। यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी का हिसाब बड़ा ही सिंपल है, पर्स भरा हो तो सफ़र आसान होता है, और अगर दिल भरा हो तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। इसलिए मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि असली अमीरी वही है जो बांटने से बढ़ती है। और आप सभी के बहाने हम यहाँ पर जो ट्रैक पेश करते हैं ना, उसको हम भी सुन लेते हैं और बहुत मज़ा आता है सुनकर। ऐसा लगता है कि यार, इन्हीं के बहाने इतने औसम औसम गाने हमें सुनने को मिल गया है। अगला ट्रैक अपना सपना मनी मनी से है।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 FM रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH

0: और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

Well, मैं तो अपने हर शो में अपने हर लिसनर्स से इंडिविजुअली ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ज़िंदगी ना बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि बस आप दिल से महसूस कीजिए, पता चल जाएगा कि कितनी खूबसूरत है। कभी ना सुबह की पहली धूप में, कभी बारिश की बूंदों में, कभी दोस्तों की हंसी में, तो कभी अपने चेहरे की मुस्कान में आपको इसकी खूबसूरती का पता चलेगा। जो लोग कहते हैं ना कि क्या खूबसूरती, वही जिंदगी, वही लोग, वही लाइफस्टाइल, वही काम, वही घर का काम, वही बाहर का काम, वही प्रेशर, क्या है ऐसा खास इस जिंदगी में। अरे इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि हर पल ना एक सेलिब्रेशन है, इसे गुजरने मत दीजिए, जी लीजिए, जो दिल कहे वो गुनगुनाइए, जो सपना बुलाए उसकी तरफ कदम बढ़ाइए। क्योंकि खुश रहने के लिए हमेशा एक बड़ी वजह की ज़रूरत नहीं पड़ती बॉस, कभी कभी एक प्यारी सी मुस्कान भी पूरा दिन खूबसूरत बना देती है। कि आप मेट्रो में जा रहे हो, अपनी कार में जा रहे हो, या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो और किसी मम्मी की गोदी में एक छोटी सी बिटिया चिपकी हुई हो और टुकुर टुकुर अपनी आँखियों से वो आसपास के एटमोसफेयर को देख रही हो और टक से उसकी आँखों की बटन आपकी आँखों की बटन से टकराए और वो एक स्माइल फेंक दे, अच्छा लगता है ना ये देख कर, महसूस करके। तो मैं ये कहती हूँ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इसे खुलकर जीना है और पूरी खूबसूरती के साथ, पूरे जश्न के साथ। भाई मेरी खुश रहने वाली जो कैपेसिटी है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सॉर्टेड है। कि जैसे मैंने कानों में ईयरफोन लगाया और मेरा कोई फेवरेट गाना किसी आरजे ने बजा दिया, भाई बन गया मेरा दिन, बहुत ही अच्छा वाला गाना एकदम से आपके कानों में पड़ा और आपको ये पता चला कि अरे ये तो मेरी फेवरेट ट्रैक है, इसे तो मैं हमेशा सुनती हूँ और एकदम से कानों में सुनाई पड़ गया, तो ये तो सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है, बहुत ही हैप्पीनेस देने वाला पल है। जबकि मैं रेडियो में अक्सर गाने चलाती हूँ अपने लिसनर्स के लिए, उनसे बातें करती हूँ, लेकिन बतौर एक आम नागरिक जब मैं ईयरफोन लगाकर किसी स्टेशन को ट्यून इन करके सुनती हूँ और कोई मेरा फेवरेट ट्रैक मेरे कानों में सुनाई पड़ जाता है, तो बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। यही तो छोटी छोटी खुशी है यार, यही तो ज़िंदगी की सेलिब्रेशन है। और आइए आपके बहाने एक मेरा बहुत ही पसंदीदा ट्रैक मैं आप तक पहुंचा रही हूं, और इस दरमियान ऐसा लग रहा है कि स्टूडियो में नाचूं, झूमूं, बस मस्ती करूं, है ये इतना मस्त।

भाई मेरा ये कहना है कि बिल्कुल मूड फ्रेश हो गया है। ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में एक रवानगी सी आ गई, एक झनकार सी आ गई है। मतलब हम यहाँ पर आए थे कुछ और सोचकर और जाएंगे कुछ और सोचकर, क्योंकि अमूमन मैं जो गाने प्ले करती हूँ, जो सॉफ्ट रोमांटिक्स ट्रैक्स प्ले करती हूँ, गज़लों को प्ले करती हूँ, उससे इतर कुछ अच्छे फास्ट बीट वाले ट्रैक मुझे प्ले करने का मौका मिल रहा है। और मतलब कितने वेरिएशंस हैं म्यूज़िक में, संगीत में। ये जो गाने होते हैं ना, ये हमें हर तरह से एक रिफ्रेशमेंट देते हैं। जैसे गज़ल की अपनी तासीर और इस तरह के गानों की अपनी तासीर की झूमने पर, नाचने पर मजबूर कर रहे हैं। और ये जो वाइब बनती है ना गानों को सुनकर, वो वाइब कहीं ना कहीं वॉल्यूम को अप करने के बाद और भी ज़्यादा मतलब कमाल की हो जाती है। क्योंकि यही वो गाने हैं जो दिल को भी रॉक करते हैं, मूड को भी रॉक करते हैं। और अगर आप बोरिंग ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर आप रेडी नहीं हैं झूमने को, नाचने को, तो पता नहीं क्यों ऐसे बीट्स को सुनने के बाद खुद ही पैर थिरकने लगते हैं। खुद ही लगता है कि अरे थोड़ा सा नाचा जाए, झूमा जाए, क्या मतलब ऐसे शांति से बैठे बैठे हैं। ये नहीं है ज़िंदगी। ज़िंदगी जश्न का नाम है, सेलिब्रेशन का नाम है, खुशियाँ बांटने का नाम है और हैप्पी रहने का नाम है ना।

0: bit.
1: Well, आप सुन रहे प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती जरीन के संग और बाय द स्टूडियो क्लॉक इट्स 8:53 और अगले प्रेजेंटर प्रवीण जी दाखिल हो चुके हैं अपना मुस्कुराता चेहरा लेकर स्टूडियो में. प्रोग्राम आपकी याद आती रही पेश करेंगे वो. लेकिन मैं जरीन आपसे ये कहना चाहती हूँ कि उम्मीद है कि आज का जो ट्रैक मैंने प्ले किया और जो बातें आपको समझाई पसंद आई होंगी. आई होप सो. अगर आपके चेहरे पर मुस्कान आई, पैर अपने आप ठहरके, दिल ने कहा एक गाना और प्लीज़ एक गाना और, तो समझिए हमारी मेहनत ना कामयाब हो गई, सफल हो गई. याद रखिए जिंदगी का वॉल्यूम हमेशा हाई रखिए साहब, टेंशन को म्यूट करिए और खुशियों की प्लेलिस्ट कभी बंद मत होने दीजिए, क्योंकि ये जो जिंदगी है ना, जिंदगी भर के लिए मिली नहीं है, जैसी मिली है जितनी मिली है जी लीजिए और शुक्रिया अदा करिए ऊपर वाले का. जा रही हूँ इस खूबसूरत ट्रैक के साथ आपको छोड़कर. नीति मोहन और नीरज श्रीधर की आवाज़, प्रेम रतन धन पायो. बाय, टेक केयर. किसी खूबसूरत मोड़ पर दोबारा मुलाकात होगी आपसे. तब तक के लिए खूब सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, शब खैर.

लीजिए पेश अब तक के एफएम न्यूज़ में मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। विदेश में छिपे भगोड़ों को वापस लाने के लिए नया प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से जुड़ी पहलों को लागू करने पर सहमत। केंद्र सरकार सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में टीमें भेजेगी। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे के 6 किलोमीटर लंबे बारबिल बोलानी खादान रेलखंड दोहरीकरण परियोजना के लिए 122 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार और पोलैंड की राज्य सचिव तथा उपरक्षा मंत्री मागदालेना सोवाको वियाक जार्निका ने आज नई दिल्ली में भारत पोलैंड संयुक्त कार्य समूह

बैठक की सह अध्यक्षता की। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस पाने वाले मतदाताओं से बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत कल से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की समीक्षा, तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक प्रतिबंध। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। और एशियाई खेलों में अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। इंतजार कीजिए अगले कार्यक्रम का।

नमस्कार, हेलो आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आप सुन रहे हैं म्यूजिक रेडियो और आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर सुन रहे हैं। और अब वक्त हो गया है आपके अपने खास हम खास प्रोग्राम का, जिसका नाम है आपकी याद आती रही। और आज आपकी याद आती रही के साथ स्टूडियो में उपस्थित है आपका दोस्त होस्ट प्रवीण शर्मा।

0: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं, तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाश

0: आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
2: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
3: हर चीज जमाने की जहां पर थी वहीं है, हर चीज जमाने की जहां पर थी वहीं है, हसरत नहीं, अरमान नहीं, आस नहीं है, यादों के सिवा कुछ भी मेरे पास नहीं है, यादें भी रहें या न रहें किसको यकीन है।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

दोस्तों, जीवन के सफर में हम यूं तो कई लोगों से मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक चंद लोग ही हमें ऐसे मिलते हैं दोस्तों जो हमें याद रह जाते हैं। शायद उनमें कुछ ऐसी बात होती है जो उन्हें दूसरों से अलग रखती है, जिसके कारण उन्हें कभी नहीं भूल पाते, हमेशा अपने दिल में बसा कर रखते हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं FM Rainbow 102.6, दिल से दिल तक।

रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। उसकी याद आई है, उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, बपन आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप इस वक्त आपकी याद आती रही कि खूबसूरत महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और सुन रहे हैं म्यूजिकल ईयर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप में अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हैं, तो सुनते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम आपकी याद आती रही।

आंधियों के साथ क्या मंजर सुहाने आए हैं, आंधियों के साथ क्या मंजर सुहाने आए हैं, आज मैदानों में बागों के खजाने आए हैं। अब मेरे तलवों के नीचे की जमी आजाद है, आसमानों से मुझे बादल बुलाने आए हैं।

जीवन में हमें हर तरह का अनुभव प्राप्त होता है दोस्तों, लेकिन सुख के लम्हों को हम बार बार जीना चाहते हैं। खुशी के पलों को भला कौन याद नहीं करता। गम की घटाएं छटने के बाद खुशी के बादल छा जाते हैं, जो हमें अपनी आगोश में लेने को बेताब नजर आते हैं।

करेंगे। और दोस्तों फिलहाल प्रवीण शर्मा को दीजिए आपकी याद आती रही से इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात रात 11 बजे, प्रोग्राम होगा रंगे महफिल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन जाते तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, कदमों को बांध न पाएंगी मुसीबत की जंजीरें, रास्तों से जरा कह दो अभी भटका नहीं हूं मैं, जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: खेलों में बड़ी चीज है खेल भावना, लेकिन जो चीज खेलों में रोमांच, उत्तेजना, आह्लाद और उत्साह भरती है वो है जीत की ललक। खिलाड़ी मैदान पर जयघोष का सपना लेकर ही उतरता है और जितना बड़ा मंच उतनी बड़ी भूख, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी। एशिया के सबसे बड़े खेल मेले 20वें एशियाई खेलों में भारतीय रणबांकुरों ने क्या क्या किया, हम दिन भर अपनी लाइव अपडेट्स में आपको बताते ही रहे हैं। और अब समय है विस्तृत लेखे जोखे का। आज के इस हाइलाइट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुपम पाठक। सबसे पहले आज की सुर्खियां। एथलेटिक्स में भाला फेंक में भारत को दोहरे पदक, यशवीर रजत, रोहित यादव कांस्य पदक, गुलवीर और मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीते, पारुल चौधरी और विद्या रामराज को कांस्य। शूटिंग में ईशा सिंह का जलवा, रजत पदक पे निशाना, कुराश में भी पदक, पिंकी बलहारा ने पाया कांस्य पदक। हॉकी में गोलों की बौछार जारी, बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी। क्रिकेट में बिना मैदान पर उतरे ही भारत सेमीफाइनल में, और बॉक्सिंग में 3 और पदक मुक्केबाजों ने पक्के किए। एथलेटिक्स में पदकों के हिसाब से दिन बेहद शानदार रहा, 3 रजत और 3 कांस्य पदक, लेकिन स्वर्ण पदक की तलाश आज भी अधूरी रही, खासकर ये देखते हुए कि 2 डिफेंडिंग चैंपियंस और मुरली श्रीशंकर के रूप में एक बहुत मजबूत उम्मीद मैदान पर थी। लेकिन पहले बात करेंगे जेवलिन की। देश के दुलारे नीरज चोपड़ा के नाम वापस लेने के बाद जिसे भी लगा हो कि स्पर्धा का ग्लैमर और स्तर थोड़ा कम हो जाएगा, उसे गलत साबित किया नीरज के ही पद चिन्हों पर चल रही जोड़ी यशवीर सिंह और रोहित यादव ने। पहले चक्र में यशवीर 83.56 मीटर के साथ टॉप पर, दूसरे में भी वहीं पर, तीसरे चक्र में रोहित 84.05 मीटर के साथ पहले स्थान पर आ गए।

0: लेकिन चौथे थ्रो में रुमेश ने हुंकार भरकर जो भाला फेंका तो वो 88.33 मीटर दूर जा गिरा। लास्ट थ्रो 88.56। तो यशवीर ने भी पूरी ताकत भर के अपना कैरियर बेस्ट थ्रो किया 85.72 मीटर और रजत पदक पक्का कर दिया। तो रोहित तीसरे स्थान पर रहे, यानी भारत को दोहरी पदक सफलता। लंबी कूद में मुरली शिशंकर दूसरे प्रयास में 8.07 मीटर की दूरी फलांग कर दूसरे स्थान पर आ गए थे। चीन के युहाओ शी 8.17 मीटर के साथ सबसे आगे चल रहे थे। पिछले हंगचाओ खेलों की 5000 मीटर की चैंपियन मेरठ की पारुल चौधरी से एक बार फिर एक सुनहरी दौड़ की उम्मीद थी। उन्होंने दम तो बहुत लगाया लेकिन 15:14.16 के साथ कांस्य पदक तक ही आ सकी। इन खेलों में उनका दूसरा कांस्य पदक। लेकिन जो एथलीट इस साल लगातार उम्मीदों पर खरा उतर रहा है वो है डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह। भारतीय फौज के इस खिलाड़ी ने एक और शानदार दौड़ पूरी की 1500 मीटर में 3:37.92 सेकंड के साथ एक और रजत पदक। यूनुस शाह 9वें स्थान पर रहे। 400 मीटर हर्डल में विद्या रामराज ने 54.75 सेकंड के साथ कांस्य पदक पाया, लेकिन याद इसलिए किया जाएगा कि उन्होंने और अनु राघवन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपना अब तक का बेस्ट समय निकाला। लेकिन दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन रहा 3000 मीटर स्टीपल चेज में डिफेंडिंग चैंपियन और गेम्स के रिकॉर्डधारी अविनाश साबले का। चौथे स्थान पर पिछड़ गए, वो भी खासे अंतर से 8:21.67 सेकंड समय लिया। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में संतोष टी के 7वें स्थान पर रहे। तो डिस्कस में सीमा ने पर्सनल बेस्ट निकाला 59.88 मीटर, लेकिन पदक नहीं ले पाई। चौथे स्थान पर रही तो सानिया यादव अंतिम स्थान पर आई। 4x100 महिला रिले में भारती चौकली चौथे स्थान पर रही तो 4x100 मिश्रित रिले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुरुषों की 4x400 मीटर में भारतीय टीम दोनों हिट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकाल कर फाइनल में पहुंच गई, लेकिन 800 मीटर महिला में पूजा ने क्वालिफाई किया पर गौतमी बाहर हार गई। शूटिंग में पदक तो आए हैं लेकिन इन खेलों में दूसरे स्वर्ण पदक की तलाश जारी है। विश्व रिकॉर्डधारी ईशा सिंह से आस थी तो मनु भाकर के पास अपनी ख्याति को साबित करने का अंतिम मौका था। 25 मीटर पिस्टल के अलावा ट्रैप स्पर्धा भी थी। ये निशाना साध रहे हैं हमारे साथी शाहिद आजमी।
1: शूटिंग रेंज में भारत ने रोमांच की प्रकाष्ठा तक पहुंचे मुकाबले में रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हां, स्टार शूटर ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। ईशा ने बेहद दबाव भरे फाइनल में गजब का धैर्य दिखाया और एक के बाद एक 5 शूट आउट का सामना करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। निर्धारित सीरीज के बाद ईशा और चीन की जियारुख सुआन जियाओ 38-38 के स्कोर पर बराबर पर थी। इसके बाद आया निर्णायक शूट आउट जहां चीन की खिलाड़ी ने 3-2 से बाजी मार ली। गोल्ड का फैसला भले ही आखिरी शूट आउट में हुआ लेकिन ईशा का प्रदर्शन किसी चैंपियन से कम नहीं रहा। लगातार दबाव के बीच 5 शूट आउट तक मुकाबले में बने रहना और भारत के लिए सिल्वर हासिल करना ईशा की बड़ी उपलब्धि है। ईशा के इस शानदार प्रदर्शन के बीच पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। मनु 579 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रही जबकि अनुभवी राही सरनोबत 30वें स्थान पर रही। टीम इवेंट में ईशा, मनु और राही की तिकड़ी 1727 के कुल स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रही। रैपिड सीरीज में राही का एक शॉट मिस होना भारतीय टीम के लिए भारी पड़ा। इस स्पर्धा का गोल्ड चीन ने जीता। हालांकि शूटिंग रेंज में भारत के पदक की उम्मीदें यहीं खत्म नहीं होती। महिला ट्रैप में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 राउंड और 100 शॉट के बाद 95 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। मनीषा कीर 84 अंकों के साथ 21वें और आशमा अहलावत 84 अंकों के साथ 23वें स्थान पर रही। भारतीय महिला टीम फिलहाल तीसरे स्थान पर है। पुरुषों के ट्रैप में भी शपथ भारद्वाज 95 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है और फाइनल की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। काइनन चेनाई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर हैं। भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान पर है। लेकिन आज शूटिंग की रेंज से सबसे बड़ी कहानी ईशा सिंह का शानदार सिल्वर है। इसके साथ ही भारतीय शूटिंग दल के खाते में अब 1 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 12 पदक हो चुके हैं।
0: मध्य एशिया में करीब 3500 साल पहले पनपे कॉम्बैट खेल कुराश में कुछ भारतीय भी माहिर हैं। फिलहाल सबसे आगे रही पिंकी, जिन्होंने आज एशियाई खेलों में अपना अब तक का दूसरा पदक हासिल किया। बता रही हैं विदुषी वत्स।
2: गोइंग टू द कुराश एरिना वेयर पिंकी बलहारा हैज सिक्योर्ड ब्रॉन्ज इन द वुमेन्स अंडर 78 किलोग्राम कैटेगरी। पिंकी वॉज इन एक्शन इन द सेमी फाइनल टुडे अगेंस्ट साउथ कोरियाज मू सुमिन एंड द बाउट एंडेड 5-0 इन द फेवर ऑफ द Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarterfinal, booking her place in the semifinals and securing the medal for India. This is also a significant moment for Indian Kurash. Pinky's medal is only India's third ever Asian Games medal in the sport. And it is particularly special for Pinky herself. She won silver at 2018 Asian Games, while at the 2022 Games, her campaign ended in the quarterfinals. She has now returned to the Asian Games podium with another medal. It is also important to remember that just yesterday, four of our other Indian Kurash athletes saw their campaigns come to an end. So today, Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the Kurash Arena.
0: भारतीय बॉक्सर्स के मुक्कों में दम तो है, बार बार ये बात वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साबित करते ही रहे हैं और यहाँ आईची नगोया में भी कर रहे हैं। कल तीन ने पदक पक्के कर दिए थे तो आज भी तीन मुक्केबाज रिंग में थे पदक पक्का करने के लिए। बॉक्सिंग की बात शाहिद आजमी से।
1: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने आज ऐसा पंच लगाया कि एक ही दिन में तीन मेडल पक्के हो गए। जी हां, बॉक्सिंग रिंग में भारत के लिए एक के बाद एक तीन मुक्केबाजों लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत के लिए पदक पक्के कर दिए। सबसे पहले बात ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन की, जिन्होंने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में दक्षिण कोरिया की स्वांग सुयान को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। इस जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और साथ ही अपना पदक भी पक्का कर लिया। इसके बाद महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ताजिकिस्तान की मिस गोना समादोवा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रिया की इस जीत के साथ भारत का एक और पदक सुनिश्चित हो गया। इसी तरह पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने कमाल कर दिया। कपिल ने दक्षिण कोरिया के किम गिचाए को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए तीसरा पदक पक्का कर दिया। आपको ये भी बता दे, बीते कल भी तीन मुक्केबाजों पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश पंघाल, 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र और महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर पदक पक्का किया। यानी एशियन गेम्स के बॉक्सिंग रिंग से दो दिन में भारत के लिए पदकों की दो हैट्रिक लगी। अब ये सभी छह मुक्केबाज अपने अपने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में कदम रखने की जद्दोजहद करेंगे।
0: तीरंदाजी यानी आर्चरी में आज कंपाउंड के मुकाबले थे। भारतीय आर्चर्स का दुनिया में बड़ा नाम है। आज चार धनुर्धर लक्ष्य भेदने मैदान में थे। ड्रॉ कुछ ऐसा निकला कि दो आर्चर 1/8 एलिमिनेशन में ही आमने सामने आ गए। एक को तो हारना ही था। पूरे विवरण के साथ विदुषी वत्स।
2: एक्शन कमिंग इन फ्रॉम आर्चरी टुडे। फर्स्ट फ्रॉम द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट, गणेश मणिरत्नम हैज बुक्ड हिज प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स, डिफीटिंग फेलो इंडियन आर्चर साहिल जाधव इन अ थ्रिलिंग pre-quarter-final encounter. It was an extremely close contest with Ganesh edging past Sahil 149-148, winning the All-Indian battle by just one point. Let's now turn our attention to the women's compound individual event. We began with a round of 32 and Jyoti Surekha Venom got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. Jyoti produced a strong performance to take the match 148-145 and move into the round of 16. But the next challenge was a tough one in the round of 16. Jyoti came up against Korea's Kang Yoon Seo. It was a high scoring contest, but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150. That brings her individual campaign to an end here. Now the focus shifts to Chikita Taniparthi. She began her round of 32 match against Bhutan and she came through that contest comfortably, winning 149-140. Then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were locked at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shoot off. She survived this shoot off and she's through to the quarter finals.
0: क्रिकेट में भारतीय टीम का अफगानिस्तान के साथ मैच वर्षा की भेंट चढ़ गया, लेकिन रैंकिंग में ऊपर होने के नाते भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया और अब सेमीफाइनल में श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले मैच के विजेता से उनका मैच होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। पिछले चार मैचों में 39 गोल कर चुकी है। पूल ए में बांग्लादेश के विरुद्ध भी हॉकी प्रेमियों को यही उम्मीद थी और टीम ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एकता थामी से सुनिए आज का हाल।
3: हॉकी के मैदान से आज एक खुश करने वाली खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश की टीम को 10-0 से हराकर जीत दर्ज की। बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में भारतीय खिलाड़ी शुरू से ही टूट पड़े। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की सेना ने बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच के पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। पिछले मैच में भारत ने मेजबान जापान को 2-0 से मात दी थी। भारत की तरफ से शुरुआती गोल 3rd मिनट में हुआ।

0: और उसके बाद नियमित अंतराल पर गोल होते चले गए। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल किए और शिलानंद लाकरा ने एक के बाद एक 2 गोल दागकर भारतीय हॉकी के पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। बांग्लादेश की टीम ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन गेंद को लंबे समय तक अपने कब्जे में रखने के बावजूद वह गोल करने में सफल नहीं हो सके। भारत को 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले और उनमें से 4 को गोल में बदला गया।
1: टेनिस में भारत हेडलाइंस बनाया करता था और उसी दौर की पुनर्वापसी में लगी है हालिया पौध। टेनिस में आज की रिपोर्ट एकता थामी से।
0: महिलाओं की युगल स्पर्धा में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। अंकिता रैना और ऋतुजा की जोड़ी को कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनसेवा और अन्ना डानिलिया ने पहले राउंड के मुकाबले में 7-5, 3-6 और 5-10 से हरा दिया। भारत की लड़कियों ने विरोधी टीम को कड़ी टक्कर दी और तीसरा सेट टाई ब्रेकर तक पहुंचा दिया, लेकिन कजाकिस्तान की ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों के एकल मुकाबले में भारत के सुमित नागल का मुकाबला दक्षिण कोरिया के होंग सियोंग चान से हो रहा था। पहले सेट में सुमित नागल 3-2 से बढ़त बनाए हुए थे, जब वर्षा के कारण मैच रोक देना पड़ा। अब यह मैच कल खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में डेविस कप मुकाबलों में नागल अपने दोनों एकल मैच कोरियाई खिलाड़ियों के हाथों हारे थे। उम्मीद करनी चाहिए कि एशियाई खेलों में वह हार का यह सिलसिला तोड़ने में कामयाब होंगे।
1: स्क्वाश में पोडियम फिनिश भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्वाभाविक सी बात है। इन्हीं खेलों में 3 बार हम देख चुके हैं। आज के अभियान का आकलन एक बार फिर एकता धामी से।
0: सूरज कुमार चांद ने चीन के दू शाओकेन को 11-4, 11-2 और 12-10 से हराया, जबकि वीर चौटरानी ने ली हेईझेन को 11-5, 11-5 और 11-3 के एक तरफा मुकाबले में हराकर भारत की स्थिति मजबूत की। तीसरे मैच में वेलावन सेंती कुमार ने पेंगलिन झोंग को 11-3, 11-2 और 11-4 से धो डाला और इस तरह तीनों मैच में भारत एक भी सेट नहीं हारा और पूल ए से अगले दौर में पहुंचा। महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने ग्रुप सी में चीन के खिलाफ 2-1 से विजय दर्ज करके अच्छी शुरुआत की। तन्वी खन्ना और जोशना चिनप्पा ने जीत दर्ज की, जबकि शमीमा को हार का मुंह देखना पड़ा। जापान के खिलाफ अपने अगले मैच में भी भारत की लड़कियों ने टीम स्पर्धा में कमाल का खेल दिखाया और मेजबान जापान को 2-1 से मात देने में कामयाब रही। जोशना चिनप्पा ने शुरुआती मुकाबले में जापान की एरिसा सानो को हराकर शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन उसके बाद अनाहत सिंह की हार ने भारत की मुश्किलें कुछ बढ़ा दी। तीसरे और अंतिम मुकाबले में तन्वी खन्ना ने आकारी मिदोरिकावा को 12-10, 11-9, 4-11, 12-10 से हराकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। पूल ए के मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।
1: सिपक टाकरा में महिला युगल टीम एरिना में क्या कर पाई, जानते हैं विदुषी वत्स से।
2: फ्रॉम वुमेन्स सेपक टाकरा, इंडिया हैज गॉन डाउन टू जापान इन देयर लेटेस्ट ग्रुप बी एनकाउंटर। इंडिया फॉट हार्ड इन अ क्लोजली कंटेस्टेड मैच, बट जापान केम थ्रू टू 1। जापान टुक द ओपनिंग सेट 15-11, बट इंडिया रिस्पॉन्डेड स्ट्रॉन्गली इन द सेकेंड, विनिंग इट 15-9 टू लेवल द मैच। द डिसाइडिंग थर्ड सेट वेंट राइट डाउन टू द वायर, बट जापान एज्ड इट 15-13 टू सील द विक्ट्री। So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan.
1: और अब चलते हैं समंदर की लहरों से अटखेलियां करने। सर्फिंग में किशोर कुमार एकला चलो रे की तर्ज पर समंदर के सीने पर डटे हुए हैं, तो सेलिंग में आज स्किफ और डिंगी 470 क्लास के मुकाबले थे। 8 सेलर्स नौका लेकर उतरे, कितने पार लगे, दोनों खेलों का विवरण एकता धामी से।
0: पुरुषों की सर्फिंग स्पर्धा में भारत के किशोर कुमार अनबरासो ने पुरुषों के शॉर्टबोर्ड राउंड 3 मुकाबले में चीन के तगड़े खिलाड़ी मा वेनसांग को कड़े मुकाबले में मात देकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है। किशोर कुमार ने चीन के खिलाड़ी के 8.80 के स्कोर के मुकाबले 9.86 अंक अर्जित करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। राउंड 3 के दूसरे मुकाबले का नतीजा भारत के हक में नहीं रहा। शिवराज बाबू को फिलीपींस के खिलाड़ी अलसियो जेवआर ने 7.83 के मुकाबले 11.50 से मात दी। पानी के एक अन्य खेल सेलिंग में भी आज का दिन व्यस्तता से भरा रहा। पुरुषों की स्किफ में भारत के प्रिंस खुर्शीद नोबल और मनु फ्रांसिस ने अच्छी शुरुआत की और ओमान के बाद दूसरे स्थान पर रहे। पुरुष डिंगी में विष्णु सरवनन ने निराश किया, वह क्वालिफिकेशन की पहली और दूसरी रेस में 9वें स्थान पर रहे। महिला वर्ग में हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा महिला स्किफ की पहली रेस में 4थे स्थान पर रही। महिला डिंगी में नेत्र नुमानन पहली क्वालिफिकेशन रेस में 6थे स्थान पर रही। मिश्रित डिंगी में श्रद्धा वर्मा और रविन्द्र शर्मा शुरुआती

0: श्रृंखला की तीसरी रेस में 8वें स्थान पर रहे। वर्षा के कारण कल और आज बहुत सी रेस समय पर पूरी नहीं हो सकी।
1: आज की स्पर्धाओं का अंत अच्छी खबर के साथ। वॉलीबॉल के कोर्ट में भारत की एक और धमाकेदार जीत, एकता थामी।
0: वॉलीबॉल में आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा। भारत ने पूल सी के दूसरे मैच में हांगकांग चाइना को 3-0 से हराकर देश के खेल प्रेमियों को मुस्कुराने की एक वजह दे दी। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने दोनों मैचों में 3-0 से जीत दर्ज करके उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालांकि हांगकांग चाइना के खिलाफ मैच के तीसरे सेट में बेहतर तालमेल का प्रदर्शन करके मैच अपने नाम कर लिया।
1: और अब पदक तालिका पर एक निगाह।
2: At this stage of the Asian Games, China continues to lead the standings with 230 medals, including 132 gold, 53 silver and 45 bronze. Japan is in second with 172 medals, while the Republic of Korea is third with 90 medals, and India is currently in 12th position with a total of 45 medals, 4 gold, 20 silver and 21 bronze.
1: कल शूटिंग में ट्रैप स्पर्धा का अंतिम दिन है। महिला और पुरुष दोनों में तीन तीन भारतीय शूटर्स हैं। कल से साइकिलिंग की स्प्रिंट स्पर्धाएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें कई भारतीय दिखेंगे। स्क्वाश में महिला टीम अपना विजय अभियान आगे ले जाने का प्रयास करेगी। टेनिस में पुरुष एकल युगल और मिश्रित युगल के मुकाबले होंगे। सेलिंग में कई भारतीय हैं स्किफ और डिंगी स्पर्धा में, तो सर्फिंग में अकेले किशोर कुमार होंगे। आर्चरी में रिकर्व में धीरज बोमदेवरा, नीरज चौहान, कुमकुम और कीर्ति शर्मा रहेंगी। कुराश में विपिन कुमार होंगे। एथलेटिक्स में 19 पदक आ चुके हैं और ज्यादा की उम्मीद होगी कल। पोल वॉल्ट महिला ऊंची कूद, हैमर थ्रो महिला और पुरुष 800 मीटर, 5000 मीटर में गुलबीर सिंह एक बार फिर मैदान पर होंगे, और साथ में होगी मिक्स 4x100 मीटर और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले। तो आज बस यहीं तक। एडिटर विशाल, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, और अब मुझे अनुपम पाठक को दे आज्ञा, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

प्रस्तुत अब तक के एफएम मिलेनियम में मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। विदेश में छिपे भगोड़ों को वापस लाने के लिए नया प्रत्यार्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से जुड़ी पहलों को लागू करने पर सहमत। केंद्र सरकार सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में टीमें भेजेगी। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे के 6 किलोमीटर लंबे बारबिल बोलानी खादान रेलखंड दोहरीकरण परियोजना के लिए 122 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार और पोलैंड की राज्य सचिव तथा उप रक्षा मंत्री मागदालेना सोवाकोवियाक जार्निका ने आज नई दिल्ली में भारत पोलैंड संयुक्त कार्य समूह की बैठक की सह अध्यक्षता की। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस पाने वाले मतदाताओं से बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है और एशियाई खेलों में अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। तो ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

दूसरी बार पुनः आपका स्वागत है। इस्तकबाले खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं म्यूजिकल यूर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हैं दोस्तों। और अब वक्त हो गया है आपके अपने खास प्रोग्राम का, यानी गजलों से सचे सवरे प्रोग्राम का, जिसका नाम है रंगे महफिल। और आज रंगे महफिल में आपका साथ देने स्टूडियो में हाजिर है आपका दोस्त रोस्ट प्रवीण शर्मा। तो कबूल फरमाइए हमारा प्यार भरा आदाब, और आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक बेहद खूबसूरत नगमे के साथ।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।
2: तू मेरे पास न थी, फिर भी सहर होने तक तेरा हर सांस मेरे जिस्म को छूकर गुजरा। कतरा कतरा तेरे दीदार की शबनम टपकी, लम्हा लम्हा तेरी खुशबू से मुअत्तर गुजरा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

कभी कभी हम अपने दिलबर के नजदीक होकर भी उनसे दूर होते हैं दोस्तों, और दूसरी तरफ उनसे दूर होकर भी उनके बेहद करीब। अब आप सोचेंगे कि भला ये मुमकिन कैसे हो सकता है? तो जनाब, ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है, क्योंकि जब हम दिल से किसी के पास होते हैं ना, तो फिर भले ही जिस्म से हम दूर ही क्यों ना हो, पर रहेंगे हमेशा उनके करीब ही।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
2: अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें, हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दें, चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दें।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किस्म

किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, सुबह पुनः आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, खैर मकदम है। आप इस वक्त रंगे महफिल की खूबसूरत महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और लुत्फ उठा रहे हैं बेहतरीन गजलों का। तो सुनते रहिए अपना खास प्रोग्राम रंगे महफिल, आकाशवाणी FM रेनबो पर।

दोस्तों, इतनी बड़ी कायनात में हम सिर्फ उस शख्स की तलाश करते हैं जो हमारा सच्चा हमसफर बन सकता है, जो हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है और हमारे जज्बात की कद्र करे। हम उस शख्स के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं दोस्तों, और जब हमें अपनी कोशिश में कामयाबी मिलती है तो यकीनन उस वक्त हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता।

दोस्तों आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं, आप अपने सुझाव शिकायत हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ईमेल आईडी नोट करें, हमारा ईमेल आईडी है feedback@fmrainbow@gmail.com। जी हाँ, feedback@fmrainbow@gmail.com। और सुनना ना भूले हर महीने के तीसरे शुक्रवार को दोपहर 1 बजे प्रोग्राम बिंदास बोल। फिलहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल आकाशवाणी FM रेनबो पर।

0: दोस्तों आप इस वक्त रंग की महफिल की खूबसूरत और हसीन महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और लुत्फ उठा रहे हैं बेहतरीन खूबसूरत गजलों का। कहीं मत जाइए, हम हाजिर हो रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।

रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा, तारीख बदल जाएगी। वक्त नदियों को उछाले के उड़ाए पर्वत, वक्त नदियों को उछाले के उड़ाए पर्वत, उम्र का काम गुजरना है, गुजर जाएगी।

और दोस्तों फिलहाल प्रवीण शर्मा आपसे लेता है रंगे महफिल से इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन आप कहीं जाइए, सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, शब खैर, शुभ रात्रि।

रात्रि के 12 बजे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। विदेश छिपे भगोड़ों को वापस लाने के लिए नया प्रत्यार्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से जुड़ी पहलों को लागू करने पर सहमत। केंद्र सरकार सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में टीमें भेजेगी। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे के 6 किलोमीटर लंबे बारबिल बोलानी खादन रेलखंड दोहरीकरण परियोजना के लिए 122 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सरकार ने कल नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार और पोलैंड की राज्य सचिव तथा उप रक्षा मंत्री बागदलेना सोपकोवियाक जोनेका ने कल नई दिल्ली में भारत पोलैंड संयुक्त कार्य समूह की बैठक की से अध्यक्षता की। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस पाने वाले मतदाताओं से बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। और एशियाई खेलों में अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एथलीटों को बधाई दी है। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। 12:03 हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो। मैं हूं एसएम शरीफ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और जिस शौक से आप आजादी का जश्न मनाने यहां आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आजादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसात अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा यह वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय,
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: वेलकम फ्रेंड्स टू द शो दैट नेवर एंड्स। आई हैव टेकन द चांस टू मेक यू डांस। You will move your feet and groove to the beat. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karenge aap? Rumba?
5: No!
6: No!
4: Samba?
6: No! No!
4: Rumba?
6: No!
4: Samba?
6: No!
4: Tequila?
6: No!
4: Tango?
6: No!
4: Charleston?
6: No!
4: Polka?
6: No!
4: No?
6: No!
4: Toh phir kya ho?
6: One,

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

रात्रि का 1 बजा है। प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। विदेश में छिपे भगोड़ों को वापस लाने के लिए नया प्रत्यार्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से जुड़ी पहलों को लागू करने पर सहमत। केंद्र सरकार सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में टीमें भेजेगी। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे के 6 किलोमीटर लंबे बारबिल बोलानी खादन रेलखंड दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए 122 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सरकार ने कल नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार और पोलैंड की राज्य सचिव तथा उप रक्षा मंत्री मागदालेना सबकोवियाक जानेका ने कल नई दिल्ली में भारत पोलैंड संयुक्त कार्य समूह की बैठक की सह अध्यक्षता की। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण के अंतर्गत नोटिस पाने वाले मतदाताओं से बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। और एशियाई खेलों में अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एथलीटों को बधाई दी है। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। 1:03 और 17 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम सुहानी रात।

0: सगरे गाँव की गोरिया
1: जिया जिया
0: कुछ कुछ
1: मैं छोड़ रहा।

इसीलिए तो कहता हूं, यही तो था एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो। बाकी

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु
1: हाय
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। विदेश में छिपे भगोड़ों को वापस लाने के लिए नया प्रत्यार्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से जुड़ी पहलों को लागू करने पर सहमत। केंद्र सरकार सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में टीमें भेजेगी। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे के 6 किलोमीटर लंबे बारबील बोलानी खादन रेलखंड दोहरीकरण परियोजना के लिए 122 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सरकार ने कल नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार और पोलैंड की राज्य सचिव तथा उपरक्षा मंत्री मागदालेना सोपकोवियाक जानेका ने कल नई दिल्ली में भारत पोलैंड संयुक्त कार्य समूह की बैठक की सह अध्यक्षता की। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण के अंतर्गत नोटिस पाने वाले मतदाताओं से बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। और एशियाई खेलों में अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एथलीटों को बधाई दी है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: हुस्न का साया, पढ़ने न पाए हुस्न का साया, देखो बजाना।
1: वाह वाह मेरे शागिर्द।
0: थैंक यू।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: गारे गारे
1: जरा बड़ा जी
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: गारे गारे
1: ये हमको बटवा
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह जी ये सूर ये इन्ना आया है तो

0: चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा।
1: एक चतुर नार करके सिंगार,
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार,
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात,
2: अपने ही जाल में फंसत जात।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमान मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा, जा।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये साहब ने मुझे रिहर्सल के लिए बोला, मैं

करता हूँ। जब उन्होंने गाने की रिहर्सल दी तो मैं चुप हो गई। मैंने बोला बाप रे ये कैसे होगा अब मुझसे, क्योंकि उस चीज़ की आदत ही नहीं थी हमको। उन्होंने कहा रिहर्सल की जगह नहीं होता तो बदल देता हूँ। उन्होंने कहा बदल देता हूँ और मेरे एकदम गुस्सा आ गया, क्योंकि बदल देना ये हमारे स्वभाव में नहीं है कि कोई कहे कि आप गाइए और हम गा नहीं सकते हैं तो हम प्लेबैक सिंगर का है कि। मैंने कहा नहीं मैं गाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी, मैं 15 दिन रिहर्सल करूंगी। और मैं वो गाना गाने के लिए गई और वाकई उस गाने के बाद मुझे 100 का नोट हाथ में रख के RD बर्मन साहब ने कहा कि वाह क्या गाया आपने।

बिलों को लागू करने पर सहमत। केंद्र सरकार सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में टीम भेजेगी। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को रखा है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे के 6 किलोमीटर लंबे बारबिल बोलानी खदान रेलखंड दोहरीकरण परियोजना के लिए 122 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सरकार ने कल नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार और पोलैंड की राज्य सचिव तथा उप रक्षा मंत्री मागदालेना सोपकोवियाक जानेरका ने कल नई दिल्ली में भारत पोलैंड संयुक्त कार्य समूह की बैठक की सह अध्यक्षता की। दिल्ली में मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस पाने वाले मतदाताओं से बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। और एशियाई खेलों में अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एथलीटों को बधाई दी है। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन सभी का स्वागत करता हूं मिडनाइट मेलोडी कार्यक्रम में।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण

0: सी तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: दुश्मन

पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। विदेश में छिपे भगोड़ों को वापस लाने के लिए नया प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों की एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से जुड़ी पहलों को लागू करने पर सहमत।

गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस पाने वाले मतदाताओं से बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर से दस्तावेज एकत्र करेंगे। और एशियाई खेलों में अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एथलीटों को बधाई दी है। ये थे अभी तक के प्रमुख समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं सारेगा मापा प्रोग्राम में। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत कुमार सानू की आवाज में, फिल्म आरजू से।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
0: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
1: आज की रात मजा,
0: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
5: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बबल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। विदेश में छिपे भगोड़ों को वापस लाने के लिए नया प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से जुड़ी पहलों को लागू करने पर सहमत। केंद्र सरकार सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में टीमें भेजेगी। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे बुधवार से शुरू होने वाले 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे।

चाकी। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस पाने वाले मतदाताओं से बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर से दस्तावेज एकत्र करेंगे। और एशियाई खेलों में अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एथलीटों को बधाई दी है। ये थे अभी तक के प्रमुख समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम आराधना।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप,